मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, भाद्रपद माह की 12वीं तिथि। तदनुसार 3 सितंबर 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण साफ बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है।

0: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रभु तेरी महिमा अपरम पार, जाको मिलत नहीं कोई पारा, सकल जगत को आप रचावे सबका पालनहारा।

प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सो होए, उत्तम प्रीति सो जानिए हरि नाम से जो होए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करते याद, कहे कबीर दादास की, कौन सुने फरियाद।

मन दाता मन लाल जी, मन राजा मन रंग, जो ये मन हरिसो मिले तो हरि मिले निसंग। हम बात कर रहे हैं प्रभु की। कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं और आप सुन रहे हैं आराधना।

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तीन प्रमुख प्रवक्ता थे लाल, बाल और पाल। लाल से बोधन था लाला लाजपत राय के लिए, जिन्होंने जलियांवाला बाग की नृशंस बर्बरता को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम कील कहा था। बाल थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार की घोषणा की थी। और पाल के रूप में याद किए जाते थे विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने स्वराज्य चरित्र के उद्घाटन के लिए देश को ललकारा था। राष्ट्रीय जागृत के साथ साथ जीवन की समस्याओं के विश्लेषक और वैश्विक संकल्पनाओं के उद्गाता के रूप में लाला लाजपत राय के विचार आज भी हमारे लिए दिव्य आलोक प्रदान करते हैं। मृत्यु, धर्म, युद्ध, श्रम, शिक्षा, क्रांति, शांति आदि सभी मसलों पर उनकी दृष्टि थी। उनकी दृष्टि में धर्म चिंतन मात्र नहीं है, अपितु चिंतन और आचरण है। इसी परिप्रेक्ष्य में लाला लाजपत राय ने कहा था, किसी भी धर्म मत को आदर्श और निर्दोष बनने के लिए मानव स्वभाव के उन सभी पक्षों के सामंजस्यपूर्ण विकास की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए जो उसके भौतिक जीवन के आधार का निर्माण करते हैं। सामाजिक पक्ष की उपेक्षा तो वो कर नहीं सकता। वास्तव में मनुष्य को समग्रता में समझने का उनका प्रयास था। धर्म को मानव के स्वभाव, उसकी भौतिक आवश्यकता को समझने और उसके परिष्करण का कार्य करना पड़ता है। जो धर्म जीवन की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करके चलता है, उसके आचरण की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। जीवन और मृत्यु की पहेली मानव को भटकाती रही है। मृत्यु की भयावहता मानव को आशंकित और उद्वेलित करती रहती है। मानव जीवन की नियति और परिणत का शाश्वत प्रश्न सही जीवन दृष्टि की मांग करता है। लाला लाजपत राय ने इस संबंध में कहा था, गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए मनुष्य को पहले गरिमापूर्ण ढंग से जीना सीखना चाहिए। वही मृत्यु भव्य है जो भली प्रकार जिए गए जीवन अर्थात सिद्धांतों के लिए, मातृभूमि के लिए और मानवता के लिए जिए गए जीवन के प्रासाद का शिखर बनती है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अर्थ है पर हित में रत होना, पर पीड़ा से बचना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि से अपने को बचाना, देश, समाज और मानवता के हित चिंतन का अनुदिन स्मरण और तदनुरूप आचरण। ऐसे आचरण वाला व्यक्ति उस गरिमापूर्ण मृत्यु का वर्णन कर सकता है जिसकी वो आकांक्षा करता है। लाला जी ने कहा था, मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, न कि दूसरों की कृपा से। उनका संदेश है कि मुसीबतों को हौसले से झेलो, इनसे घबराना अपने काम को बिगाड़ना है। संकट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में सुनिए लाला लाजपत राय के विचार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए मत्स्य पालन हेतु आवश्यक जानकारी, डॉक्टर अवधेश सिंह से की गई बातचीत।

0: किसान भाई, आप सब गांव में रह के खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ अन्य रोजगार भी करत है, और अन्य रोजगारन में देखे में आवत है कुछ किसान भाई मछली पालन के काम करत हैं। लेकिन जे किसान भाई मछली पालन के काम शुरू करे चाहत बाटे या कहला कि नए मत्स्य पालक के रूप में अपन आगे प्रगत करे चाहत बाटे, उनका कौने कौने बातन पे मत्स्य पालन के लिए जानकारी हो चाहे जौने से मत्स्य पालन का एक अच्छा लाभ कमा सके, देखा यही विषय पर जानकारी देख लिया। आज मेरे साथे बाटे डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह भैया, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ में। भैया आपके बहुत बहुत स्वागत बा। और जानना चाहब भैया कि जौन मत्स्य पालक भाई बाटे वो मछली पालन के काम करे चाहत बाटे अगर, तो का कुछ सावधानी का कुछ जानकारी रखें जौने से उनका अच्छा फायदा मिल सके, बताएं।
1: जी बिल्कुल। सबसे पहले तो किसान भाइयों को नमस्कार, और मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो मछली पालन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनको ये ध्यान देना होगा कि हमें मछली पालन की कौन सी विधि अपनानी चाहिए।
0: जी
1: मछली पालन की जो सबसे बेहतर विधि है वो तालाब विधि है। तालाब में ही मछली पालन करें जिससे कि उन्हें फ़ायदा होगा।
0: जी
1: कई सारी और विधियाँ हैं, जैसे बायोफ्लॉक है, RS सिस्टम है, केज कल्चर है। ये अभी अपने उत्तर प्रदेश में और इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सफल नहीं है, तो इसलिए तालाब में मछली पालना ही सबसे बेहतर माना जाता है।
0: जी
1: अगर तालाब में मछली पालना है तो ये सबसे बेहतर समय है। इसी टाइम पे किसान भाई तालाब में मछली डाल सकते हैं। तालाब में मछली डालने के लिए उन्हें तालाब को लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर के आसपास खुदवाना होगा,
0: जी
1: और तालाब का जो साइज होगा वो लगभग मान के चलिए 1 एकड़ से लेकर के 2.5 एकड़ के बीच का तालाब हो, जो कि सबसे बेहतर माना जाता है।
0: जी
1: ये तालाब में आप इसी समय पानी भर करके, उसमें क्या करना है आपको, जब आप पानी भर लें तो पानी भरने के बाद उसमें चूने का प्रयोग करिए। चूना लगभग 200 किलोग्राम आप उसमें डाल सकते हैं। और चूना डालने से पहले जब आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो मिट्टी की जांच में pH लेवल आपको देखना होता है। अगर pH लेवल 6.5 से 8.5 के बीच है तब 200 ग्राम डालिए,
0: जी
1: सबसे उचित होता है। उसके बाद उसमें लगभग 1.5 से 2 क्विंटल के आसपास सरसों की खली आप डाल करके उसमें पानी भर दें।
0: जी
1: उसके बाद उसमें बीज संचयन करें। बीज संचयन करने के लिए आप बेहतर तरीके से जो उसमें बीज डालना है उसको बेहतर नर्सरी से, जो आपके यहाँ सर्टिफाइड नर्सरी हो वहाँ से बीज के बच्चे लेके आने हैं आपको, और वो बच्चे जो होने चाहिए लगभग 1.5 से 2 इंच के बच्चे होने चाहिए जो कि अपने तालाब में डालने होंगे
0: डॉक्टर
1: आपको।
0: साहब, एक चीज़ जानने चाहत बाटी, जैसे आप मछलियों के बच्चन के डाले की बात करते बाटे तालाब में, तो भैया ये अलग अलग प्रजाति के भी बच्चा हो तो ही ना, तो
1: जी
0: कौन
1: बिल्कुल।
0: कितने अनुपात में बच्चन के डाले हुए कौन प्रजाति के, एक विषय में थोड़ा मेरे मत्स्य पालक भाई को बताएं।
1: जी बिल्कुल। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए तालाब जो होता है वो लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर की गहराई लिए होता है पानी, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि अगर बेहतर हमें उसका उपज लेना है पूरे तालाब का, तो उसमें कई तरह की मछलियाँ हमें डालनी होती हैं।
0: जी
1: सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पानी में 3 लेयर हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले लेयर जो ऊपरी सतह होता है जिसमें रोहू के अलावा कतला रहता है और सिल्वर रहता है,
0: जी
1: बीच वाले लेयर में रोहू रहता है और ग्रास रहता है, नीचे वाले लेयर में कॉमन कार्प रहती है और नयन रहती है।
0: जी
1: तो इस अगर इन 6 मछलियों की प्रजातियों को हमें रखना है तो ऊपर वाले लेयर में कतला को 15% और सिल्वर को 15% रखना है, 20% बीच वाले में रोहू रखना है और ग्रास रखना है 20%,
0: जी
1: 15% आपको नयन रखना है और 15% कॉमन रखना है। अगर ये 6 तरीके की लेनी है तो किसान भाइयों को इसी तरह इसी प्रतिशत के हिसाब से रखना है। लेकिन अगर किसान भाई 6 तरीके के नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ 3 तरीके के लेना चाहते हैं,
0: जी
1: तो उनको यह ध्यान देना है कि अगर वो IMC पाल रहे हैं, मतलब इंडियन मेजर कार्प पाल रहे हैं, तो उसमें कतला उनको 30% ऊपर रखना है,
0: जी
1: रोहू उनको 40% बीच वाले में रखना है और 30% उनको नयन रखना है। अगर किसान भाई कार्प मछली पालना चाह रहे हैं
0: जी
1: तो ऊपर वाले सतह में सिल्वर रहती है जो कि 30% रखना है, और ग्रास कार्प को 40% रखना है जो कि बीच वाली सतह पर रहती है, कॉमन कार्प को निचली वाली सतह पर रखना है जो कि 30% उसमें रखना है। अगर इस कम्बिनेशन के साथ हम मछली को रखते हैं तो तालाब की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता हमें प्राप्त होती है।
0: डॉक्टर साहब, अब

0: बतावत है कि आहार की व्यवस्था कैसे करें, कैसे आहार दें, कौन कौन आहार दें, कौने समय पे दें जोने से उनका अच्छा लाभ मिल सके।
1: देखिए, आहार के लिए किसान भाइयों को तालाब में मछली डालने से पहले ही व्यवस्था करनी होती है।
0: जी
1: तो मैंने पहले ही बताया आपको कि चूने का प्रयोग आप करते हैं तालाब में, तो चूना क्या करता है, जब चूना पानी के साथ और मिट्टी के साथ मिलता है तो चूने का एक अपना गुण होता है। उस वो तो एक काम करता है कि पानी की सफाई कर देता है, पानी में जितने भी दूषित चीज़ें होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं।
0: जी
1: दूसरा, वो पानी में बहुत छोटे छोटे प्लैंकटॉन डेवलप करता है जिनको प्लवक कहते हैं, वो प्लवक भी डेवलप कर देता है
0: ये भोजन हुए मछली के।
1: और ये मछली का भोजन होता है
0: जी
1: प्लवक पैदा करना।
0: जी
1: तो तालाब जब आप पहली बार आप बच्चा डाल रहे हैं तो चूने का प्रयोग करेंगे, और जो सरसों की खली मैंने पहले बताई थी वो सरसों की खली भी जाती है तो भी प्लवक को डेवलप करती है। तो एक तो ये आप किसान भाई कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी
1: खाद के इस्तेमाल में उनको मैं ये सलाह दूंगा कि सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें जब तालाब में पानी भर रहे हों तो, और भरने के बाद भी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। ये 1 एकड़ में लगभग 1 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट की डाल सकते हैं, 50 किलोग्राम की बोरी होगी।
0: जी
1: वो क्या करेगा कि वो भी प्लवक ही डेवलप करेगा। प्लवक दो तरीके के होते हैं, एक होता है पादप प्लवक, दूसरा होता है जंतु प्लवक। तो मछलियाँ पादप प्लवक जो होता है वो तालाब में जब जाता है तो वो तालाब के ऑक्सीजन को भी मेंटेन करता है, और वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि मछलियाँ जब पानी से सांस लेती हैं तो वो पानी पहले पीती हैं, फिर अपने गल्फड़ से पानी को निकाल देती हैं, पानी में उपलब्ध जो ऑक्सीजन होती है उसको वो ग्रहण कर लेती हैं।
0: जी
1: तो इसी प्रक्रिया में जो छोटे छोटे प्लवक होते हैं वो भी उनकी गल्फड़ों में फंस करके उनके पेट में चले जाते हैं, तो उनको इनडायरेक्ट रूप में भोजन मिलता रहता है। तो
0: जी
1: जिससे क्या होता है कि किसान भाई को ज़्यादा बढ़वार मिलती है। तीसरा तरीका ये है कि वो अपने तालाब में फीड का इस्तेमाल करें। फीड दो तरीके के होते हैं, एक तो चाहे तो वो अपने घर पे खुद बनाएं, घर पे अगर उनको बनाना है तो सबसे बेहतर फीड अपने यहाँ पे मौजूद है, चोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
0: जी
1: राइस की पॉलिश इस्तेमाल कर सकते हैं और सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो खरीद के दाना देना चाहते हैं तो आप, नवजात बच्चा है अगर मछली का, तो 32% प्रोटीन का आपको उन्हें खाना देना है,
0: जी
1: और जब वो 2 से 3 महीने का हो जा रहा है तो 26% प्रोटीन का खाना देना है, और जब वो 6 महीने की मछली हो जा रही है तो 24% प्रोटीन का उन्हें खाना देना है। और ये जो दाना होता है, दाना दो तरीके का होता है, एक फ्लोटिंग फीड कहते हैं और एक जो नीचे जा करके ज़मीन में बैठ
0: जी
1: जाता है।
0: जी
1: तो जो मछलियां हम डाल रहे हैं मछलियों के बिहेवियर या व्यवहार के अनुसार ही हमें उन्हें दाना देना होता है। तो जो मछलियां ऊपर आके दाना खाती हैं तो उन्हें फ्लोटिंग फीड देना ज़्यादा बेहतर होता है।
0: जी का मतलब कि आहार के एक तरह से अगर प्राकृतिक आहार और जोन भाई ऊपर से आहार देत बाटे ओकर व्यवस्था करें तो उनके मछली की बढ़वार अच्छी होए।
1: जी बिल्कुल,
0: डॉक्टर साहब एक चीज़ बताऊँ, जैसे भाई मछलियन में भी कुछ बीमारी होत हुई लागत हुई
1: जी
0: तो उनसे बीमारी से मुक्त रखने के लिए का कुछ करे की जरूरत है।
1: देखिए, मछली पालन में एक सीधा सा फंडा है। मछली पालन में एक कहावत है कि आपने पानी पाल लिया तो मछली पाल लिया। इसलिए आपको पानी को स्वच्छ रखना है। पानी को स्वच्छ रखने के लिए 2-3 पैरामीटर होते हैं जो कि मेंटेन आपको करना है। सबसे पहले पैरामीटर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करनी है आपको, अमोनिया का मेंटेन करना है
0: हाँ
1: और नाइट्रेट नाइट्राइड मेंटेन करना है, पीएच लेवल भी मेंटेन करना है। अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं तो कोई भी रोग और बीमारी नहीं आती है।
0: तो डॉक्टर साहब आप आए और मछली पालन के विषय में का कुछ सावधानी बरते कि वह का कुछ जरूरत बाटे एक विषय में जानकारी दें। आपके सब जानकारी देख ले बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह से इंद्रजीत यादव की बातचीत। विषय था मत्स्य पालन हेतु आवश्यक जानकारी। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर युगांतर।

0: पांडे को। विषय है बच्चों में निमोनिया, कारण, लक्षण और उपचार।
1: निमोनिया हम लोग सामान्यतः खांसी और जुकाम और बुखार के साथ आने वाली समस्या को हम लोग निमोनिया कहते हैं। पूरे विश्व में बच्चों शिशुओं की मृत्यु का सबसे बड़े कारणों में से एक है ये निमोनिया। और WHO के हिसाब से लगभग 987,000 डेथ सिर्फ हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष बच्चों की निमोनिया की वजह से हो जाती है। निमोनिया दो तरह की सबसे कॉमन है, या तो बैक्टीरियल होते हैं या वायरल होते हैं। वायरल बैक्टीरिया और इनके जो फैलने का तरीका है इसको एयरबॉर्न रूट कहा जाता है। ये सांस के द्वारा या हवा के द्वारा हमारे शरीर में पहुँचते हैं और ये एक व्यक्ति से संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से ही इन्फेक्ट से फैला जाता है। हालांकि ये वायरस और बैक्टीरिया बड़े नाजुक होते हैं, ये सामान्य वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, मगर किंतु ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क में लगातार आने के बने रहते हैं, इसलिए वातावरण में इनकी प्रेजेंस हमेशा बनी रहती है। इसलिए जो इन्फेक्टेड आदमी हो, जिनको सर्दी जुकाम हो, अगर इनको इसीलिए थोड़ा अलग रखा जाना चाहिए और इन लोगों से छोटे बच्चों को, शिशुओं को बचा के रखना चाहिए ताकि ये फैलने ना पाएँ। हमें देखना चाहिए कि अगर खांसी जुकाम या होना शुरू हुआ तो हमें करना क्या है। सामान्य बच्चे की नाक बहनी शुरू हुई, खांसी आनी शुरू हुई तो हम एक कफ सिरप बाज़ार से खरीद के ले लेते हैं, लेकिन ये करना काफ़ी ख़तरनाक होता है क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं कि अभी कारण क्या है तो हमेशा अगर बच्चे को खांसी आ रही है और उसके साथ उसको बुखार है तो हमेशा ये लक्षण इस बात के होते हैं कि कहीं उसको निमोनिया तो नहीं डेवलप हो रहा है। और उसके लक्षण की सीवियरिटी या उसकी गंभीरता असेस करने के दो तीन तरीके आप हैं। अगर आप उसकी सांस लेने की गतियों को नापें, अगर छोटा बच्चा है, 2 महीने से छोटा बच्चा है और अगर 60 बार से ज़्यादा उसकी सांस चल रही है, और अगर 2 साल से 2 महीने से 1 साल का बच्चा है और 50 बार से ज़्यादा उसकी सांस चल रही है, या 2 साल से बड़ा और 5 साल से छोटा है और उसकी 40 बार से ज़्यादा सांस चल रही है, तो इसको गंभीर लक्षण माना जाता है। और एक पसली चलना जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, जब बच्चा सांस लेता है तो उसका जो चेस्ट वॉल है उसकी, अगर वो सांस लेते समय उसकी पेट और उसकी मांसपेशियां अंदर की तरफ धंसती हुई दिखाई पड़ें तो इसको चेस्ट इंड्रॉइंग या कहते हैं, जिसको पसली चलना हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, ये एक गंभीर इन्फेक्शन का लक्षण है। तीसरी चीज़ होती है स्ट्राइडर, कि गले से एक आवाज़ आती है जो गले के सूजन का, कि हमारे सांस की नलियों के अंदर सूजन की अगर तीव्रता बहुत ज़्यादा है तो एक गले में आवाज़ आती है, इसको स्ट्राइडर कहते हैं। ये भी एक गंभीर बीमारी का लक्षण है। चौथी चीज़ होती है वीजिंग। वीजिंग जैसे हम कहते हैं, जैसे एक पाइप के अंदर से हवा जाती है तो सीटी बजना, जैसे कभी कभी कहते हैं, जैसे हम लोग बड़े लोग महसूस कर पाते हैं कि हम रात में सोते हैं तो मेरे सीटी बजती है, इसी तरह बच्चों को भी सीटी बजती की आवाज़ आती है, जैसे एक छोटे से पाइप से हवा जोर से जा रही है, इसको वीजिंग कहते हैं। ये भी लक्षण एक गंभीर बीमारी का लक्षण है। पाँचवीं चीज़ अलर्टनेस, कि बच्चा कितना चैतन्य है। अगर बच्चा खांसी जुकाम बुखार आते आते सुस्त पड़ता जा रहा है, रोज़मर्रा की एक्टिविटी उसने बंद कर दी है और सुस्त पड़ा है, ना बोल रहा है ना बात कर रहा है, तो ये एक गंभीर बीमारी की तरफ का लक्षण है। साथ में तेज बुखार होना और कुपोषण होना, ये एक छोटे से वायरल निमोनिया इन्फेक्शन को भी गंभीर बीमारी की तरफ ले जा सकता है। सबसे गंभीर चीज़ इसमें होती है, आखिरी चीज़ है, वो है साइनोसिस। साइनोसिस माने हाथों का, नाखून का, ओंठों का नीला पड़ना। अगर ये नीले पड़ रहे हैं तो ये अति गंभीर अवस्था के लक्षण है। इसलिए हमेशा इन लक्षणों पे ध्यान रखें कि अगर ये हो रहा है, इनमें से कोई भी लक्षण हो, सांस तेज चल रही हो, पसली चल रही हो, चेस्ट में गड्ढे पड़ रहे हो, गले से आवाज़ आ रही हो, सीटी बजने की आवाज़ आ रही हो, बच्चा सुस्त पड़ रहा हो, तेज बुखार हो, या बच्चे को कुपोषण है, या उसके हाथ पाँव नीले पड़ रहे हैं, तो तुरंत अस्पताल आपको भागना चाहिए। घर की दवाओं से काम नहीं चलाना है। हम इसको बच कैसे सकते हैं? सबसे ज़्यादा बचने का तरीका है बच्चे को और परिवार के सभी सदस्यों को खुली जगहों पर रखना, जहाँ रोशनी और हवा का आदान प्रदान अच्छे से होता हो। खाने पीने में पोषण का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि जो अगर स्वस्थ शरीर में बीमारियों के लगने की संभावना बहुत कम होती जाती है। पोल्यूशन से बचना बहुत ज़रूरी है, धुआं, धूल, धक्कड़, इन चीज़ों से जितना बच सकेंगे उतना ही आप सांस की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। सबसे और उसके बाद ज़रूरी है टीकाकरण। अब कई सारे वैक्सीन ऐसी आती हैं जो कि गंभीर निमोनिया से आपकी बचत करती हैं, जैसे मीज़ल्स है, नीमोकोकल है, हिब का टीका है या DPT का टीका है। और सबसे अंत में जो मैंने गंभीर लक्षण बताए, इनकी जानकारी, इन गंभीर लक्षणों में से कोई भी लक्षण हो तो घर पे कदापि इलाज न कराएं, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और अपने पास के अस्पताल में जाके बच्चे को दिखलाएं।
0: बच्चों में निमोनिया, कारण, लक्षण और उपचार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर युगांतर पांडे से स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 7:31 पर सुनिए भारत और हांगकांग के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल खेल की समाप्ति तक। अब से कुछ देर बाद 7 बजे सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन और 12:15 पर गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन।

8:45 पर सुनिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। प्रस्तुति होगी अभयकांत तिवारी की। 9:50 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। 10:30 पर लोकगीत के कार्यक्रम में सुनिए हरिनाथ सुमन मौर्य के गाए लोकगीत, एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00। 11:30 पर होगा कार्यक्रम बोलते नगमे में।

आपकी पसंद। ये कार्यक्रम सुनेगा 12:30 पर, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में सुने शैल सिंह के गाये लोकगीत के साथ शोभा शुक्ला की वार्ता। विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT दोपहर 2:30 पर। 4:00 सैनिकों की शौर्य गाथा पर आधारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। 5:15 पर युवजन सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में लोकगीत के साथ सुनेगा किसान चर्चा। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए गए भजन। ये पहली रचना हमने ली है

हरी दर्शन फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज, बोल प्रदीप की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: वीर, सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पड़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
1: हम हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे।

0: जीव, सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पढ़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
1: हम हरि भजन करेंगे,
2: हरि कीर्तन करेंगे।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से लिए गए भजन का कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंत में सुनिए एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज में इंदिवर के बोल, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम।

0: लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत भजन के साथ ही फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ, कहा नई व्यवस्था से आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा उनका अधिकार। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर H1N1 और सीजनल इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा की, प्रभावित जिलों में निगरानी बढ़ाने और आवश्यक इंतजाम के दिए निर्देश। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक के लिए दी भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आउटसोर्स कर्मियों को उनका अधिकार मिलेगा।
1: अब इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हम इस बात को मानते हैं कि अधिकार अब किसी व्यक्ति की कृपा पर नहीं मिलेंगे, बल्कि आपकी मेहनत पे प्राप्त। व्यवस्था अब बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेगी और जानकारी अस्पष्ट नहीं होगी, यानी पूरी जानकारी का एक पोर्टल उपलब्ध होगा, कोई भी कर्मचारी जानना चाहेगा उस पर उपलब्ध होगा। और मैं मानता हूं इसमें हमारा कर्मचारी अब अकेला नहीं होगा, आपके पास आउटसोर्स सेवा निगम आपके साथ होगा।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मी हैं। इस नई व्यवस्था में उन्हें 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, साथ ही आकस्मिक इलाज के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ दिया है।
1: डबल इंजन की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लागू, उसे तकनीक दिया, उसे बाजार दिया और उसे मार्केट के साथ जोड़ने का काम आज परिणाम हमारे सामने है। कारीगर के हाथ में जो कला थी, जब उसे बाजार दिया गया, बाजार मिला तो उसका हुनर प्रदेश में रोजगार बना, रोजगार बढ़ा तो वही कारीगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बन।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में H1N1 और सीजनल इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इन्फ्लुएंजा ए की जांच सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी और मेडिकल कॉलेजों में जांच, दवा और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने अधिक मामले वाले जिलों में निगरानी बढ़ाने और गंभीर मरीजों के लिए अलग आईसीयू वार्ड तैयार रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 2 सितंबर तक प्रदेश में H1N1 के 685 प्रयोगशाला पुष्ट मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य लक्षण वाले मरीज चिकित्सकीय सलाह के अनुसार घर पर आराम और सेल्फ आइसोलेशन करें, जबकि गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संक्रमण से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने पर भी जोर दिया, ताकि अनावश्यक घबराहट न फैले। समाचार कक्ष से अरुण।
0: सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए प्रदेश भर में आज से विशेष HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। यह 17 सितंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान 14 से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग की लगभग 10 लाख पात्र बच्चियों को HPV से बचाव का टीका लगाने का लक्ष्य है। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह ने पात्र बच्चियों के टीकाकरण की अपील की।
3: 14 से 15 साल के बीच की बच्चियों को HPV वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। ए जो टीका है उनके CA सर्विक्स या बच्चेदानी के कैंसर का बचाव का एकमात्र तरीका है। HPV वैक्सीन का टीका लगवा के अपनी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रखें।
0: उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्र केंद्र के तौर पर विकसित करने के उद्देश्य से आगामी 8 और 9 सितंबर को लखनऊ में यूपी टैक्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आज नोएडा में यूपी टैक्स 2026 का कट एंड रेजर एवं रोड शो आयोजित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास

0: के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोप

0: मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी पर्व को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। वहां जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। पर्व को देखते हुए कल वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर से श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा के लिए उपहार सामग्री और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर से वहां मंगल सामग्री भेजी गई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा जिले के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री वहां लगभग 1,051 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा तथा तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की तरफ से बाढ़ राहत को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
2: जहाँ जहाँ बाढ़ का प्रकोप है उसे निपटने के लिए हमारी सरकार ने SDRF, NDRF और जिला प्रशासन को सक्रिय कर रखा है। चित्रकूट मंडल में लगातार मंदाकिनी नदी का प्रवाह बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, वहाँ सतर्क रहने कहा गया है और सभी जो भी जहाँ बाढ़ आई थी सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और बाढ़ राहत कार्यक्रम लगातार चल रहा है।
1: प्रदेश में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए चित्रकूट और चंदौली जिले में कक्षा 12वीं तक, जबकि पीलीभीत और वाराणसी जिले में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। चित्रकूट जिले में भारत कौशल प्रतियोगिता 2026-27 के लिए युवाओं का पंजीकरण शुरू हो गया है। हमारे चित्रकूट प्रतिनिधि ने बताया कि प्रतियोगिता में 63 विभिन्न कौशलों में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण केंद्रों और संस्थानों में पंजीकृत अथवा पास आउट 16 से 23 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी स्किल इंडिया डिजिटल हब पर 15 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से संपर्क किया जा सकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ। कहा, नई व्यवस्था से आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा उनका अधिकार। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर H1N1 और सीजनल इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा की। प्रभावित जिलों में निगरानी बढ़ाने और आवश्यक इंतजाम के दिए निर्देश। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक के लिए दी भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन राग ललित।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खा का शहनाई वादन राग ललित। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डा वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय

0: मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर ए माइनस किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update rahe, aage rahe. X par at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
1: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
2: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। ICC ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्यूंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
4: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग

0: में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
2: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़ैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा छठी और नवीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices. Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart, Bart de Wever, in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने और आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकाकार से सीखने पर जोर दिया। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हमनसब बार्ट दे वेवर के साथ बातचीत करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अर्जियाती मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-05 खला में भेजेगा। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आबादी में इजाफे और मुस्तकबिल में पानी की जरूरियात समेत शहरकारी से पैदा होने वाले चैलेंजेस के बारे में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों को हसास और बाखबर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने शहरी मकामी

0: EOS-05 एक जदीद तरीन अर्थ ऑब्जर्वेशन खलाई जहाज है और ये भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे जियो सिंक्रोनस मदार में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन से भारत की ज़मीन से मुतालिक मुशाहिदे की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होगा और अर्थ ऑब्जर्वेशन खिदमात की फराहमी बेहतर होगी। इसरो के चेयरपर्सन ने यह बात कल तिरुमला में वाक़े श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। इससे पहले जनाब नारायणन ने GSLV-F17 रॉकेट के मॉडल को भगवान वेंकटेश्वर के कदमों में रखा। उन्होंने कहा कि श्री हरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जापान की कर्जे की दर्जाबंदी करने से मुतालिक एजेंसी JCR ने भारत की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी और मकामी करेंसी जारी करने से मुतालिक दर्जाबंदी को एक दर्जा बढ़ाकर BBA+ से A- कर दिया है। JCR ने भारत की कंट्री सीलिंग को भी एक दर्जा बढ़ाकर A कर दिया है। वजारत खजाना ने कहा कि दर्जाबंदी बढ़ाए जाने से भारत की मजबूत मुआशी तरक्की की बुनियाद को मजबूत करने से मुतालिक मुआशी पॉलिसियों की इफादियत और मुआशी निज़ाम की बेहतर हालत की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ारत ख़जाना ने कहा है कि दर्जाबंदी से मुतालिक ये इजाफा चैलेंजिंग आलमी सूरतेहाल के तनाजुर में पेश आया है और इससे पायदार तरक्की, मौसर मुआशी पॉलिसियों, बेहतर मुआशी मेयार और एक मजबूत तर मुआशी निज़ाम के जरिए भारत की मुसलसल मजबूत होती मुआशी बुनियाद की अक्कासी होती है। एक बयान में JCR ने कहा कि भारतीय मईशत ने बढ़ती निजी खपत और अवामी सरमायाकारी के जरिए ऊंची शरह तरक्की को कायम रखा है। एजेंसी ने यह भी उजागर किया कि भारतीय हुकूमत ने डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और अशिया और खिदमत टैक्स के नफाज समेत मुसलसल पॉलिसियां नाफिज की हैं जिनसे भारत की मुआशी बुनियाद मजबूत हुई है। JCR ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत का मुआशी खसारा मुआशी साल 2025 में 4.7% से कम होकर मुआशी साल 2026 में 4.4% रहा। आकाशवाणी न्यूज से जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मुजाफाती इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हो गई थी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दिशा सालियान मौत के मामले में जस्टिस सारंग वी कोतवाल और जस्टिस रंजीत सिन्हा आर भोंसले पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कल उनके वालिद सतीश सालियान की तरफ से दाखिल करदा शिकायत की बुनियाद पर CBI को FIR दर्ज करने की हिदायत दी। अदालत ने मजीद वाजे किया कि FIR दर्ज करने की हिदायत का मतलब ये नहीं है किसी के खिलाफ जुर्म साबित हो गया है। बेंच ने कहा कि किसी भी शख्स को उस वक्त तक मुलजिम नहीं समझा जाएगा जब तक तफ्तीशी अफसर की राय में तफ्तीश के दौरान जमा किए गए शवाहिद की बुनियाद पर उस शख्स के खिलाफ माकूल शुबा पैदा करने के लिए काफी वजूहात मौजूद ना हो। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: उत्तर प्रदेश में आज से इस माह की 17 तारीख तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक खसूसी HPV टीकाकारी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। ये मुहिम रियासत के तमाम 75 अजला में मुनक़िद की जाएगी। 14 साल की उम्र के ग्रुप में शामिल तकरीबन 10 लाख अहल नौ उम्र लड़कियों को इस मुहिम के तहत HPV वैक्सीन लगाने का निशाना रखा गया है। लखनऊ के आला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर NB सिंह ने अहल लड़कियों और उनके वालिदैन से अपील की है कि वो आगे आएं और मुहिम के दौरान वैक्सीन लगवाएं। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक अहम हिफाजती इकदाम है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,250 हो गई है। इमदादी कारकुन बारिश और मलबे का मुकाबला करते हुए उन अफराद को तलाश कर रहे हैं जिनके बारे में ख्याल है कि वो भोटेकोशी दरिया के रास्ते में मौजूद सुरंगों और नेपाल में जेर ज़मीन बिजली घरों में फंसे हुए हैं। वज़ीर आज़म बालेंद्र शाह ने कहा कि आलमी बिरादरी के सामने इस कुदरती आफत के आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक को भरपूर अंदाज में उठाया जाना चाहिए। इस दौरान पिछले हफ्ते आने वाले सैलाब के बाद लापता मकामी अफराद के अहले खाना ने अलामती तौर पर उनकी आखिरी रसूम अदा की। लापता अफराद में 583 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी अहलकारों, जिनमें नेपाल की फौज भी शामिल है, कि मुश्तरका फोर्सेस ने अब तक हेलीकॉप्टरों और जमीनी रास्तों के जरिए 11,993 अफराद को बचाया है। तलाश और बचाव कार्रवाइयों के लिए तकरीबन 21,314 सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरी जानब चीन की जानब नेपाल की

प्रयागराज। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नीलम सिंह। इमारतें सिर्फ ईंट और शीशे का ढांचा नहीं होती, ये तो जमीन से उड़कर आसमान छूने का ख्वाब होती हैं। श्रोताओं, आज हमारे साथ हवाओं में एक अलग ही खुमारी है। हमारा विषय आज जरा बुलंदी वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गगनचुंबी इमारतों की। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। जहां कभी इंसान बादलों को जमीन से देखा करता था, आज वो बादलों के बीच अपनी बालकनी में खड़े होकर सुबह की चाय पीता है। और जब बात इतनी ऊंचाइयों की हो तो दुनिया की सबसे बुलंद इमारत का जिक्र तो सबसे पहले आएगा। तो चलिए सुबह की सुस्ती को कहिए अलविदा और थिरकिए इस गगनचुंबी बीट पर।

श्रोताओं, आज है गगनचुंबी इमारत दिवस, जिसे हम प्रतिवर्ष 3 सितंबर को मनाते हैं। यह दिन आधुनिक वास्तुकला, ऊंची इमारतों और उनके निर्माण में काम करने वाले इंजीनियरों और वास्तुकारों के योगदान को समर्पित है। यह दिन लुईस एच सुलिवन के जन्मदिवस की याद दिलाता है, जिन्होंने आधुनिक ऊंची इमारतों की नींव रखी। आज के समय में गगनचुंबी इमारत की परिभाषा काफी विस्तार हो चुकी है। आधुनिक गगनचुंबी इमारतों को आम तौर पर कम से कम 40 मंजिलों वाली इमारतों के रूप में किया जाता है। यह बदलाव इंजीनियरिंग और निर्माण तकनीकों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जिससे हम और भी ऊंची संरचनाएं बना पा रहे हैं, जो हमारे शहरों के क्षितिज को नया रूप देती है और सीमित शहरी स्थान का अधिकतम उपयोग करती है। ऊंची इमारतों ने लोगों को एक दूसरे के करीब रहने में सक्षम बनाया है और विकास के लिए भूमि की बचत भी की है। गगनचुंबी इमारत दिवस हमें हर साल 3 सितंबर को आसमान की ओर देखने और उन विशाल वस्तु शिल्प चमत्कारों की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे शहरी परिदृश्य को परिभाषित करते हैं। इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने नया रूप देते हैं, सड़कों से काफी ऊपर घर और कार्यालय उपलब्ध कराते हैं, शहर को अपनी पहचान और अनूठी व्यक्ति का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। गगनचुंबी इमारत का होना वास्तव में शहर की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है।

इमारतें जितनी ऊंची होती हैं उनकी नींव उतनी ही गहरी होती है। ज़िंदगी में हम चाहे जितना भी बुलंदियों को छू लें, हमारे कदम हमेशा अपनी मिट्टी और तहजीब से जुड़े रहने चाहिए। चलते चलते श्रोताओं, कार्यक्रम में हम यही कहेंगे कि अपने हौसलों को गगनचुंबी रखिए, मगर अपनों के लिए दिल में हमेशा ज़मीन बनाए रखिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुस्कुराते रहिए, इस सुबह को हसीन बनाइए और सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
4: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जाँच लें।
5: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
6: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं।

0: अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
1: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
0: RBI कहता है जानकार बनिए,
1: सतर्क रहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
4: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
5: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
4: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
5: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
6: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज से, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत सचिन जिगर का, फिल्म का नाम भेड़िया।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, अरिजीत सिंह की आवाज में, संगीत शंकर एहसान लाय का, आवाज शंकर एहसान लाय की, और फिल्म का नाम टू स्टेट्स।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए MS धोनी फिल्म का ये गीत, अरमान मलिक की आवाज़, बोल मनोज मुंतशिर के और संगीत अमल मलिक का।

0: एमएस धोनी फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: केंद्र है प्रस्तुत है जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजीपुर और मेरठ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
3: जनपद गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पिछले दिनों गाजीपुर में निर्माणाधीन सहायक संभागीय परिवहन विभाग आरटीओ भवन एवं महिला शरणालय भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि नवंबर माह तक आरटीओ भवन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। पिछले दिनों तिरंगा यात्रा के दौरान गाजीपुर जनपद में विशेष उत्साह दिखाई दिया। मेरा युवा भारत एवं राज्य महिला पीजी कॉलेज गाजीपुर के संयुक्त तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में विभिन्न इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 150 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आयाम सह संयोजक अद्वितेश आराध्य राय ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम हजारों विद्यार्थियों को एक साथ राष्ट्र प्रथम का संदेश दे रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में पिछले दिनों गाजीपुर में राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत की उपस्थिति में कृषि विभाग के चयनित 78 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसमें 17 महिला अभ्यर्थी भी शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में इतने अधिक मात्रा में प्राविधिक सहायकों की नियुक्ति के बाद जनपद के किसानों की समस्याओं का निराकरण आसानी से संभव हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार मातृशक्ति के उत्कर्ष के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
4: कृषि विज्ञान में ग्रुप सी के चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिया है और गाजीपुर जनपद में भी 78 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिनको विकास भवन में कृषि विज्ञान के सौजन्य से उन्हें सम्मानित करने का प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्य किया गया।
3: इसी कड़ी में पिछले दिनों लखनऊ में कैबिनेट द्वारा पारित लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में किया गया। जिलाधिकारी गाजीपुर अनुपम शुक्ला ने बताया कि जनपद गाजीपुर में भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से ऊपर की मातृशक्ति को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। माता अहिल्याबाई के नाम पर प्रारंभ इस योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं को जनपद में कहीं भी यात्रा करने में सुगमता होगी। एक ओर इस योजना से जहां उन्हें आर्थिक बचत होगी, वहीं यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक भी है।
5: एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार द्वारा दी गई है, उसमें स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा और उसके माध्यम से वो अपना मूवमेंट कर सकती है। क्योंकि महिलाओं को रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन भी प्रयत्नशील है और जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, विभिन्न योजनाएं गवर्नमेंट की आती है उसके माध्यम से अभी हम लोगों ने पंचायत सहायकों की भी नियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं।
3: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में आगामी 12 सितंबर को गाजीपुर जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा नोडल अधिकारी लोक अदालत शक्ति सिंह ने बताया कि आगामी 12 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सभी समनीय आपराधिक मामले, सिविल एवं पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना तथा बैंकिंग से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। सिंह ने कहा कि बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि एनपीए खाता धारकों को मूलधन में भी न्यूनतम 10% की छूट प्रदान की जाए। उन्होंने जनपद गाजीपुर के निवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निपटारा करें। जनपद गाजीपुर में बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा द्वारा बाढ़ प्रभावित विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जमानिया क्षेत्र के पक्का बलुआ घाट का निरीक्षण करने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री एवं बाढ़ से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बाढ़ चौकियां बना ली गई हैं एवं कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ प्रभावित किसानों का तत्काल सर्वे कर मुआवजा के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गाजीपुर के मिशन फ्यूचर के तहत परिवहन विभाग द्वारा निरंतर सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों 12 स्कूली वाहनों को सीज किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अधिकारी धनवीर यादव ने बताया कि जनपद गाजीपुर के अभियान के तहत अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की जांच की जा रही है और पिछले दिनों 12 स्कूली वाहन सीज कर दिए गए हैं तथा 40 वाहनों का चालान किया गया है एवं 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालकों को किसी भी स्थिति में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। वाराणसी परिक्षेत्र के DIG वैभव कृष्ण ने पिछले दिनों एक नेक पहल की। जनपद गाजीपुर के एडिशनल SP तथा यातायात भवन कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने एक मजदूर के हाथों कराकर एक मिसाल पेश की। वैभव कृष्ण ने कहा कि आगामी जनता आम जनता के कल्याण के लिए बनाए जा रहे इस कार्यालय का उद्घाटन एवं शिलान्यास आम नागरिक द्वारा किया जाना एक अच्छा संदेश देता है।
2: गाजीपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
6: मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मेरा युवा भारत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को साझा करना और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के निर्माण के लिए उनके विचारों का योगदान प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों को प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम 2036 ओलंपिक की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस आज से ही खिलाड़ी तैयार करने पर है जो 2036 से अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाइड करेंगे और खेलेंगे।
7: मेरा नाम साक्षी जौहरी है, मैं एक इंटरनेशनल

0: वुशु प्लेयर हूँ, रानी लक्ष्मीबाई अवार्डी हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो खिलाड़ियों को इतना सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। प्रधानमंत्री जी हमारे एक मित्र की तरह हमें मेडल आने पे बधाई देते हैं, हमसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, हमसे खेलों के बारे में और रुचि दिखाते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 5 से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया गया है। इसमें बच्चे की किस खेल में रुचि है ये देखने के साथ ही यह भी जानना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है, उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। मेरठ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस लाइन में स्थापित कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर होगा। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा स्क्रीनिंग सेंटर है जहां कई तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने बताया कि इस सेंटर को सिर्फ पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी प्राथमिक स्वास्थ्य और कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। यह अलग अलग तरह के कैंसर की शुरुआती जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी मरीज के कैंसर के लक्षण या बीमारी की आशंका होती है तो उसे आगे के इलाज की सुविधा जिला अस्पताल और मेरठ मेडिकल कॉलेज में मिलेगी और वहां से जोड़ा जाएगा। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय आयुक्त हथकरघा के अधीन बुनकर सेवा केंद्र द्वारा 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को भव्य आयोजन किया गया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने हथकरघा को भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रतीक बताते हुए बुनकरों से गुणवत्ता, नवाचार और आधुनिक तकनीक को अपनाकर उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने तथा शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में मेरठ की सड़कों पर राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उत्साह और जोश देखने को मिला। हाथों में लहराता तिरंगा भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी जयघोष से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के जागृति विहार स्थित मनसा देवी मंदिर से हुआ। बेगमपुर स्थित भारत माता के चौक पहुंची, जहां राष्ट्रभक्ति के जयघोष के बीच यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। हजारों कार्यकर्ताओं का हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल होना राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मेरठ की धरती का स्वतंत्रता संग्राम से गौरवशाली और ऐतिहासिक संबंध रहा है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: पन घट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाए। सामिन, लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अदब का वो गहवारा है जहां पर न जाने कितने अदीबों ने जन्म लिया, न जाने कितने शोरा ने यहां अपनी जिंदगी को परवान चढ़ाया है। उन्हीं शोरा में आज हम एक ऐसे शायर का जिक्र करते हैं जिन्हें आज भी दुनिया इरफान लखनवी के नाम से जानती है। आज उन्हीं की खास पेशकश, उन्हीं की गजलें, उन्हीं की नात हम यहाँ पर आप सुनाएंगे। एक शेर उनका है कि वो ख्वाहिशात के लश्कर समेट लेता है, वो ख्वाहिशात के लश्कर समेट लेता है, अजान होते ही बिस्तर समेट लेता है। आइए सुनते हैं उनकी ये खूबसूरत सी एक नात।
2: नात पाक का मतला हाजिर करता हूँ। एक एक पल गुजरे बा

ऐसी शब मदीने में काश मुझको मिल जाए, ऐसी शब मदीने में एक एक पल गुजरे। और ये भी शेर हाजिर है। दिन गुजरते रहते हैं उम्र

जान कब मदीने में वो मुझे बुलाएंगे, जान कब मदीने में एक एक पल गुजरे। और बतौर खास शेर, जिंदगी की वादी में

हाथ क्या उठाऊं मैं और दुआ में क्या मांगूं, हाथ

सब कुछ बेतलब मदीने में एक एक पल गुजरे। और ये सरे मक्ता शेर

आप शहर मक्का से आए जब मदीने में, आप शहर मक्का से आए जब मदीने में, एक एक पल गुजरे। और ये मक्ता भी हाजिर है। बस वही तो है इरफान, जिंदगी का सरमाया, बस वही।

0: गुफ्तगु भी मत कीजिए बेसबब मदीने में, गुफ्तगु भी मत कीजिए।
1: क्या खूबसूरत नात अभी आप सुन रहे थे शायर मोहतरम जनाब इरफान लखनवी, जिनके मुतरन्निम लबो लहजे से न जाने कितने लोग मुस्तफीज होते रहते हैं।

0: सिर्फ नात ही नहीं, आइए उनकी एक गजल भी आपके सामने पेश करते हैं जिससे आप लुत्फ अंदोज हो सकते हैं।
1: आइए सामीन, गजल का मतला पेश है।
2: दुनिया को हम राह दिखाना भूल गए,

यानी हम खुद अपना रास्ता भूल गए, यानी हम खुद अपना रास्ता भूल गए। और ये मतलब पूछ

बस तेरा घर याद है अपना भूल गए, बस तेरा घर याद है अपना भूल गए, बस्ती बस्ती गुलशन गुलशन फिरते हो, बस्ती बस्ती गुलशन गुलशन फिरते हो, बस्ती।

गए। और ये भी शेर बतौर खास, तेरे हाथ से बस एक जाम की हसरत में, तेरे हाथ से बस एक जाम

0: बस तेरा घर याद है अपना भूल गए।
1: गजल का मतलब हाजिर
0: तुम कुछ नहीं हो प्यार की जागीर के बगैर, तुम कुछ नहीं हो प्यार की जागीर के बगैर, तुम कुछ नहीं हो प्यार की जागीर के बगैर, जैसे हो आईना कोई तस्वीर के बगैर, जैसे हो आईना कोई तस्वीर के बगैर।
1: शेर हाजिर है।
0: नोके कलम बताब उसे क्या जवाब दूं, नोके कलम बताब उसे क्या जवाब दूं, नोके कलम बताब उसे क्या जवाब दूं, सारे खतूत आए हैं तहरीर के बगैर, सारे खतूत आए हैं तहरीर के।

गए। उसने लिखा है तेरे बिना यूं है जिंदगी, उसने लिखा है तेरे बिना यूं है जिंदगी, उसने लिखा है तेरे बिना यूं है जिंदगी, जैसे हो सूनी सूनी गजल मीर के बगैर, जैसे हो सूनी सूनी गजल मीर के बगैर। दुनिया मेरे खुलूस को पहचानती है खूब, दुनिया मेरे खुलूस को पहचान

0: मैं जंग जीत लेता हूँ शमशीर के बगैर, मैं जंग जीत लेता हूँ शमशीर के बगैर, मैं जंग जीत लेता हूँ शमशीर के बगैर। महसूस हो रहा है ये तुझसे बिछड़ के आज, महसूस हो रहा है ये तुझसे बिछड़ के आज, महसूस हो रहा है ये तुझसे बिछड़ के आज, जैसे मैं एक चराग हूँ तनवीर के बगैर, जैसे मैं एक चराग हूँ तनवीर के बगैर। कितनी उदास है मेरी आंखों की तितलियां, कितनी उदास है मेरी आंखों की तितलियां, कितनी उदास है मेरी आंखों की तितलियां, इरफान उस गुलाब की तस्वीर के बगैर, इरफान उस गुलाब की तस्वीर के बगैर।
1: सामईन, आप हजरात इरफान लखनवी साहब के खूबसूरत अशार से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कबल इससे कि हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम करें, आइए सुनते हैं एक अहम इत्तला।
2: एक जरूरी सूचना सुनिए। जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा 2026-27 दिनांक 8, 9 और 10 दिसंबर 2026 को संपादित होगी। अर्हता समस्त राजकीय तथा नियमों से स्थानीय निकायों से अधिकारी कर्मचारी। एक, हाई स्कूल स्तर या समकक्ष अथवा उच्च स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के रूप में न लिया गया हो वे ही अभ्यर्थी हाई स्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। दो, जूनियर हाई स्कूल स्तर या समकक्ष अथवा उच्च स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के रूप में न लिया हो वे ही अभ्यर्थी जूनियर हाई स्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। परीक्षा केंद्र, एक, राजकीय इंटर कॉलेज निषादगंज लखनऊ। दो, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद। तीन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज। चार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सादे आवेदन पत्र एवं नियम आदि उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों के पास प्रेषित किए जा रहे हैं तथा इस कार्यालय की वेबसाइट www.examregularityauthorityup.in। इसे फिर से सुन लीजिए, www.examregularityauthorityup.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र जनपद के जिला सूचना अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए आवेदन पत्र उनके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित होकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्यालय में अनिवार्य रूप से दिनांक 2 नवंबर 2026 तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। हाई स्कूल स्तर के उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्रमशः ₹1400, ₹1000

0: 1,000 और रुपए 800 नगद पुरस्कार तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर के उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्रमशः रुपए 600, रुपए 400, रुपए 200 का नगद पुरस्कार तथा साथ में दक्षता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अधिकारियों कर्मचारियों का यात्रा भत्ता नियमानुसार उनके विभाग कार्यालय से देय होगा। सूचना समाप्त हुई।
1: इस इत्तला के बाद अब इजाजत चाहते हैं, लेकिन रुकिए, आपके तासुरात भी हम जानना चाहते हैं। अपने तासुरात अगर मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। और अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7991778157। एक बार फिर सुने, 7991778157। सामईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेजबान शम्सुल आरिफीन को दें इजाजत। आदाब।
0: उर्दू कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र,
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: खाने में मसालों के नाम पर कुछ भी मत डाले, डाले भोला इंडिश। छोला सब्जी और पनीर मसाले, भोला इंडिश हर तरह से परफेक्ट, स्वाद, सेहत और शुद्धता से भरपूर। खाने में मसालों के नाम पर कुछ भी मत डाले, डाले भोला इंडिश। छोला सब्जी और पनीर मसाले, भोला इंडिश हर तरह से परफेक्ट, स्वाद, सेहत और शुद्धता से भरपूर।
0: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं विनीता मिश्रा। इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये भजन।

0: विनीता मिश्रा के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज के इंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट ड वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता

0: और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन यह भी साफ किया कि जांच के दौरान किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा, कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इन नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 180 दिन बाद लागू होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा, किसी सच्ची प्रतिभा को जब सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण में विकसित किया जाए तो वो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रनों से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विरासत फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल और संगीत, अनु मलिक का

अगला गीत सुनिए, फिल्म बाहर आने तक से, आवाज पंकज उदास की, बोल इब्राहिम अस्की और संगीत राजेश रोशन का।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में बाजीगर फिल्म से विनोद राठौर की आवाज, रानी मलिक के बोल और संगीत अनु मलिक का।

बाजीगर फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम। लोकगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं हरिनाथ सुमन मौर्य, सुशीला सिंह, सूरज कुशवाहा। सबसे पहले सुनिए हरिनाथ सुमन मौर्य के स्वर में ये देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुशीला सिंह के गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए सूरज कुशवाहा का ये गाया लोकगीत, जिसमें आप सुनेंगे दादरा।

0: लोकगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना सूरज कुशवाहा का ये दादरा लोकगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में पूर्वी।
1: हे भैया।

सूरज कुशवाहा के गाए इस पूर्वी गीत के साथ ही लोकगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियो वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के हमारे कलाकार हैं मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए सुनते हैं उनका ये प्यारा सा नगमा।

आग और शोला, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में। गीत लिखा था मोहम्मद आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए, आप सुनिए अग्निपथ फिल्म से गीत, सुदेश भोसले की, सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लोकप्रिय भारतीय संगीतकार की जोड़ी है। लक्ष्मीकांत शांता को राम कुंदलकर और प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा से मिलकर ये जोड़ी बनी है। उन्होंने 1976 से लेकर 1998 तक 635 हिंदी फिल्मों में काम किया और इस समय के लगभग सभी उल्लेखनीय फिल्म निर्माताओं और निर्देशक के साथ

साथ वो काम कर चुके हैं, जिसमें सम्मिलित हैं राज कपूर, देवानंद, बी आर चोपड़ा, शक्ति सामंत, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा, सुभाष घई और मनोज कुमार।

निगाहें, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज़ में। गीत और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लक्ष्मीकांत ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत एक बाल अभिनेता के रूप में हिंदी फिल्म भक्त पुंडलिक 1950 में और आंखें भी 1950 में ही आई। उन्होंने कुछ गुजराती फिल्मों में भी काम किया। इनके प्रसिद्ध गीत थे राही मनवा, दुख की चिंता, दोस्ती फिल्म से, मिलन फिल्म से, सावन का महीना, शागिर्द से, दिलविल प्यार व्यार, इंतकाम से, कैसे रहूं चुप, दो रास्ते, बिंदिया चमकेगी, मन चली, हे मन चली, मन चली कहाँ चली। ये इनके कुछ प्रसिद्ध गीत हैं। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

फिल्म का नाम है क्रांति, आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है संतोष आनंद ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी के साथ आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के हमारे कलाकार थे मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम बोलते नगमे, आवाज़ है वंदना राठौर और नेहा गुप्ता की।

0: بولتے نغمے श्रोताओं नमस्कार, वंदना जी नमस्कार।
1: नमस्कार नेहा जी, और सभी सुनने वाले दोस्तों को भी हमारा नमस्कार।
0: वंदना जी
1: जी,
0: देखिए जरा, ये जो हमारे रिश्ते होते हैं वो एहसासों के आधार पर बुनते चले जाते हैं ना।
1: जी बिल्कुल।
0: कई बार ये जो रिश्ता होता है, वो चाहे अपनेपन का हो, इश्क का हो, उसमें होता ये है कि उस रिश्ते में एक व्यक्ति बहुत संजीदा होता है और एक व्यक्ति उस तरह से उस संजीदगी को महसूस नहीं कर रहा होता है। ऐसा हुआ कभी आपको लगा?
1: नेहा जी, जब हम प्रेम के एहसास में हों, उस दौरान जब कभी ऐसी बात आती है कि जब सामने वाले की निगाह में अजनबीपन, हम उसका एक कण भी देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो इतने लंबे अरसे का साथ था वो क्या बेमानी था।
0: अब जरा देखिए इस सुंदर से वाक्य को, जब कत्ल शफाई देखते हैं इसी वाक्य को
1: जी,
0: इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने एक गजल लिख डाली है। किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह।
1: क्या बात है नेहा जी, देखिए मुझे तो ये लगा था कि आप बताएंगे नहीं, पहले सुना देंगे, लेकिन आपने तो रहस्य पर से ही पर्दा उठा दिया है। तो आप क्या कुछ और भी कहेंगे कि किस सीधे गजल पर चले हम लोग?
0: गजल पे पहले चलते हैं, तब बातें करेंगे।
1: चलिए

0: सम्मान और वो मनमुटाव का भाव नहीं है। ये इस बात पर मुझे हमेशा ताज्जुब होता है कि ऊपर वाले ने किसी को ऐसा भी हृदय दिया है।
1: जब कोई व्यक्ति ये बात तो कह रहा है कि किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, तो जब किसी ने जिंदगी की तरह किसी को प्यार किया हो तो वो कितना हसास दिल होगा, वो ज्यादा गहराई से उस रिश्ते को महसूस कर रहा होता है, और जिससे हम प्यार कर रहे होते हैं उसने शायद इतने गहरेपन में हमारे इस रिश्ते को नहीं लिया होता है। लेकिन हाँ, कि जब कभी दोनों आमने सामने आते होंगे तो शर्मिंदगी की एक झलक सामने वाले की निगाहों में जरूर गुजर कर जाती होगी।
0: जी, तो आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए।

0: बहुत सुंदर है ना
1: जी।
0: जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी की आवाज इसको और सुकून प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि जब कतल शफाई जिन्हें इस गज़ल को लिखा होगा और शेर दर शेर इसको लिखते चले गए होंगे, कैसे सामने वाले के प्रति भी एक

0: जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी जब इस गज़ल को गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो जब वो कहते हैं कि वो आशना भी मिला अजनबी की तरह। आशना से यहाँ पे मतलब है एक प्रेमी जो मिलता है, जिसको आपने चाहा होता है, वो जब अजनबी की तरह मिलता है, माय गॉड बहुत सुंदर। ये जो हल्के से वाद्य यंत्र इस गज़ल के पीछे बज रहे हैं और ये जो बांसुरी है, मुझे लगता है कि और सुकून और एहसास, जो जुदाई का मखमली एहसास है, उसको और उभार रही है।
1: ऐसा होता है अमूमन दोस्तों कि कभी कभी प्यार साथ होकर भी साथ नहीं होता, हाथों में हाथ होता है लेकिन दिल कहीं और पर, उसका ध्यान जो दिल का होता है वो कहीं और होता है। दिल यही कहता होगा कि तू पास है फिर भी फासला सा क्यों है, ये कैसा अजनबीपन तेरी आंखों में छुपा है।

और जिस तरह से ये गज़ल आगे की ओर बढ़ रही है, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे उद्गार हमारे भी इसके साथ जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि ये गज़ल नदी की तरह से प्रतीत हो रही है, जिसमें हमारे भी जो विचार हैं मन के, वो एक तरंग की तरह से उठते हैं, लहरों की तरह से, और इस गज़ल रूपी नदी में समा जाने के लिए आतुर व्याकुल से प्रतीत हो रहे हैं। इतना शानदार पूरा वातावरण तैयार कर रही है ये गज़ल

0: कि जहाँ पर बहुत सारा दर्द है और एक मलाल का रंग भी है, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम कर रहे होते हैं, उस प्रेम के आँखों में या उसके भावों में या उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है उसमें, अगर ज़रा सा भी कुछ अलगाव वाली जो बात होती है या अजनबियत वाली जो एक बात होती है उसका अगर छोटा सा भी कतरा दिखाई पड़ता है तो मन विचलित सा हो जाता है और ये लगता है कि अरे क्या चाहा था और ये क्या हो रहा है, जिसको मैंने एक जीवन की तरह से प्यार किया है वो प्रेम शायद अब कोई दूसरा रुख अपना रहा है, कोई दूसरा रास्ता अपना रहा है, तो ये एक तरह से पीड़ादायक भी बात होती है।
1: आप कह रही हैं कि अगज़ल रूपी नदी या भावनाओं की नदी जब हम लोग सुन रहे होते हैं तो शायद इस नदी में हम लोग भी उस उतार चढ़ाव के साथ बहे चले जाते हैं और कुछ शब्द इन गज़ल से, शेर से, नज़्म से ले लेते हैं ना। यहाँ पर कितनी सुंदर और बात उन्होंने कही है अख़तल शफाई जी ने कि हमने सारे जो गम हैं खुशी की तरह लिया है। वो जो आप कह रही हैं कि ये एहसास की गहराई और बड़प्पन, और जब सामने वाले को इसका भान होता है तो जो शर्म का एहसास है वो भी उभर आता है।

0: क्या बात है नेहा जी। देखिए ये गजल जब अभी हम सुन रहे थे, इतने खूबसूरत भाव हमारे भी मिले जुले, जितने भी हमारे श्रोता होंगे जो भी इस भावना से गुजर रहे होंगे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस गजल को उसी तरह से अपना समझकर इसे महसूस किया होगा, बड़े अपनायत के साथ लिया होगा। लेकिन हाँ, अभी मेरे मन में ख्याल आ गया कि नेहा जी आप तो ऐसे ना थे।
1: मैं ऐसी नहीं थी। मतलब गजल पहले नहीं सुनती थी?
0: गजल तो आपने बहुत सुना है, खासतौर पर इस प्रोग्राम के साथ तो हम लोगों ने गजल को बहुत ज्यादा शेयर किया है, तो बहुत उससे राबता रहा है हमारा। लेकिन अगर हमारे जो लिसनर्स हैं वो जरूर समझ गए होंगे जब मैंने ये बोला कि आप तो ऐसे ना थे,
1: आप तो ऐसे ना थे,
0: क्या आपको कोई क्लू मिला इससे?
1: अच्छा, आप जो है ना मुझे उसको कहते ना भरमा देना, या पहेली जो होती है ना वो वहाँ से शुरू होती है,
0: चकरा देना
1: चकरा दे।
0: तो देखिए हमारे दोस्तों ने भी समझा होगा जरूर नेहा जी आपकी ही तरह कि ये उस फिल्म का शीर्षक है जिसका एक बहुत ही बेहतरीन उत्कृष्ट गीत हम लेकर आए हैं। ये तीन आवाजों में है लेकिन पहली आवाज
1: पहले मनहर उदास जी वाला

0: नेहा जी
1: जी,
0: अब बताइए ये जो आवाज मनहर साहब की आ रही थी तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। अभी बात हो रही थी किया है प्यार हमने जिसे जिंदगी की तरह, लेकिन कितने खूबसूरत रूप में यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई जब जीवन में प्रवेश करता है, हमारी जिंदगी बनकर आ जाता है, तो हमारी जिंदगी जीने की जो लालसा है वो कितनी बढ़ जाती है।
1: बहुत सुंदर ये जो आप बात कह रही हैं कि असल में उससे पहले ऐसा नहीं होता है, उस एहसास

0: कि जगने से पहले
1: जी
0: कि कोई भी व्यक्ति जिंदगी नहीं जी रहा होता है, लेकिन जब अगर आप किसी दिए को देखें जलते हुए तो उसमें खास तरह की रोशनी होती है, कुछ पीली भी होती है, हल्की सी नीली होती है, बीच में कुछ लालिमा लिए हुए सी होती है। तो वैसे ही जब शायद दिल के अरमा जगते हैं, मैं कहूँ लौ की तरह जलने लगते हैं, कई रंग व्यक्तित्व में और जिंदगी में नजर आने लगते हैं,
1: बिल्कुल।
0: है
1: और
0: ना?
1: देखिए कितने सारे रंग अभी और नजर आएंगे जब हम इसकी अगली लाइन की तरफ चलेंगे
0: जी
1: और जब हम सुनेंगे, तब जिन्होंने इसे लिखा है वो गीतकार तो है ही हैं इस गीत के, लेकिन वो एक बहुत बड़े शायर भी रहे हैं उर्दू अदब के, नेहा जी
0: कैसे बोल सकते हैं,
1: है ना। तो पहले हम सुन लेते हैं,
0: जी
1: फिर
0: जी
1: हम आते हैं शायर साहब पर।
0: मैं बोलूंगी नहीं दोस्तों, मुझे पता है इस कार्यक्रम के अदब के बारे में
1: तो चलिए अदब से सुनते हैं इस खूबसूरत पंक्तियों को।

0: वंदना जी, अब आप कहिए तो थोड़े सा राज में खोल दूं?
1: नहीं, बिल्कुल
0: अब रहा नहीं जा रहा है।
1: अरे इजाजत है नेहा जी।
0: दोस्तों, निदा फाजली साहब जब कोई बात कहते हैं, लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी कलम की जो स्याही है ना, उस बूंद बूंद में शायद प्यार भरा रहा होगा। और ज़िंदगी को जब वो शब्दों में ढाल करके लिखते होंगे तो एक अलग एहसास जगते होंगे, तभी शायद इस तरह का गाना बन पड़ता है। और जब आप इसको सुनते हैं, बहुत सारा सुकून है, इत्मीनान है। और मुझे लगता है कि इस खायनात का हर शख्स ज़रूर चाहता होगा कि उसे इस तरह के मोहब्बत का एहसास हो, है ना?
1: सच कह रही हैं। और जब आप गीतकार निदा फाजली साहब की बात कर रही हैं, तो हम संगीतकार की बात नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इस पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, जहाँ पर एक से बढ़कर एक संगीतकार हुए हैं, वहाँ पर उषा खन्ना ने अपनी खास जगह बनाई है और संगीत का वो जादू जगाया है। आप उनके किसी भी गीत को उठाकर देख लीजिए, वो एक जो खूबसूरत रिदम होता है, जो लय है, ताल है, उसकी समझ, उसकी पकड़ इतनी बेहतरीन तरीके से उनके अंदर भीतर समाई हुई है। और बहुत हद तक ओपी नैयर के संगीत से और शंकर जयकिशन के संगीत से उनका काफ़ी जुड़ाव दिखाई पड़ता है, जब जब हम उषा खन्ना जी के गीत को या संगीत को सुनते हैं। तो देखिए, अभी हम मनहर दास जी को सुन रहे थे, लेकिन इसी गीत को जब हेमलता अपनी आवाज़ देती तो उसमें भी जो आवाज़ की जो कशिश होती है, जो देसीपन है उनका, वो आपके दिल को छू जाएगा, आपकी आत्मा को छू जाएगा।
0: तो चलिए, देर किस बात की,

0: दुख दे रहा है, क्योंकि जिससे हमको साथ मिला, जिससे हमें प्यार मिला है, वही वही छाया होता है हमारे पूरे व्यक्तित्व पर। आसपास का जो पूरा वातावरण होता है उसके घेरे में, उस प्रेम के घेरे में हम होते हैं, तो बाहरी कोई भी चीज़ हमको छू नहीं सकती है।
1: इसका मतलब है कि इंसान वही होता है, अगर एक खास तरह के जो जज्बात हैं वो जग जाए तो उसे शिकायत नहीं होगी।
0: बिल्कुल नहीं होगी, वो इंसान बन जाएगा। ओह माँ,
1: मतलब कई बार ऊपर वाले की जो ये कलाकारी है उसको देख के ताज्जुब होता है कि चीज़ वही है, सब कुछ वही है ठिकाने पर, लेकिन कुछ बदल सा जाता है भाई, और ये बदलाव बहुत सुंदर होता है।
0: बिल्कुल
1: ना?
0: और यहाँ पे सामने जो नजर आ रही हैं वो रंजीता हैं, खूबसूरत सी।
1: अच्छा,
0: और
1: ये
0: राज
1: वही,
0: बब्बर
1: ये
0: यहाँ
1: वही
0: पर
1: है ना
0: है,
1: जो अखियों के झरोखों में वाली हीरोइन है,
0: वही वही अभिनेत्री है। लेकिन ये दो वर्जन जब हमने सुने हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि रफी साहब की आवाज का जो जादू इस गीत में, यानी जो अभी हम गीत सुन रहे हैं, जब रफी साहब ने इसे गाया था और ये दीपक पराशर पर ये फिल्माया गया था, तब वो जो एक बहाव, एक गति जो होती है वो जब नजर आती है तो ये गीत अलग रंग में ढलकर नजर आता है, इसके रौ में हम बहते चले जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इसकी एक थोड़ी सी झलक।

0: ये झलक मुझे याद दिला गई है फलक के बारे में।
1: आहा, क्या बात है, झलक से फलक, क्या बात है। तो फलक तक चल साथ मेरे,
0: साथ में चलिए।

0: ओह माय गॉड, ये हाथ में हाथ थामे और फलक तक चलने की बात। मुझे लगता है कि कौशर मुनीर जी जब लिख रहे थे इस गीत को तो जरूर आसमां के नीचे बैठे थे।
1: सच, चांद सितारों की छांव तले बैठे थे, ये कहिए नेहा जी।
0: हाँ, और तब वो इतना सुंदर लिख डालते हैं। अच्छा वंदना जी, दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि हम शायद दसियों साल पहले उस गाने को देखे होते हैं सिनेमा घरों में या टेलीविज़न पे, और वो गाने कई बार जब हम कुछ इंटरवल्स पे सुनते हैं तो भी जीवंत से लगते हैं,
1: क्योंकि ये गाना जब बनाया जा रहा होता है उस समय किस तरह के जज्बात उसमें डाले गए हैं और किस तन्मयता के साथ गीत को गढ़ा गया है, वो बहुत मायने रखती है बात। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि विशाल शेखर का संगीत तो वो तो जादू रचते हैं, उनके संगीत में सच में वो बिल्कुल तिलिस्म सा होता है कि जिसमें हम कैद हो जाते हैं। और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़, उदित साहब का कोई जवाब नहीं है, और फिल्म का नाम है टशन।

0: जरा देखिए, जब ये गाना 2008 में
1: जी
0: रिलीज होता है, जश्न फिल्म में ये गीत है और यशराज बैनर तले ये फिल्म बनी थी
1: जी।
0: मुझे लगता है कि सिनेमा घर से जब लोग निकल रहे थे तो बात सिर्फ गाने की हो रही थी। कई बार ऐसा होता है कि गाने जो हैं सुपरसीड कर जाते हैं
1: जी।
0: और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें चांद को अड़ने की बात है और बिगड़ने की बात है, और धीरे धीरे चंदा जो है आंखों में जब समाने लगे, बहुत सुंदर कल्पना है। ऐसा लगता है कि इतने ठहराव के साथ ये जो चीज़ें ठिकाने पर हैं, निदा फाजली साहब कहते हैं
1: जी।
0: उन लोगों ने कितने सुंदर रूप में इस एहसास को देखा ना।
1: सच कह रही हूँ। और देखिए, हमारे दोस्तों ने भी जब ये सुना होगा ये गीत, तो वो भी इसमें डूब जरूर गए होंगे।
0: हाँ।
1: और बहुत सारे एहसास उनके हृदय के भीतर भी जन्म ले रहे होंगे
0: जी।
1: वो एहसास कौन कौन से उभर कर आए हैं वो तो श्रोता बताएंगे हमें अपने संदेश के द्वारा।
0: हाँ श्रोताओ, कैसा लगा आपको आज का हमारा कार्यक्रम? लिख भेजिए अपना संदेश, हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए। व्हाट्सएप नंबर है
1: 8004926250। तो नेहा जी
0: जी,
1: अब विदा लेने का मन तो नहीं हो रहा है क्योंकि फलक तक चले आए हैं, तो अब जमीन पर उतरने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन उतरना है क्योंकि अगली बार फिर से आना है।
0: हाँ।
1: और किसी और दुनिया में लेकर जाना है अपने दोस्तों को।
0: बहुत सुंदर सा कारवां होता है ये, जब आपसे मिलना होता है तो बहुत सारी तैयारी करनी होती है। तो ठीक है, हम चलते हैं तैयारी के लिए और आप लिखिए पत्र। तो अब हम कहते हैं
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बोलते नगमे। स्वर थे नेहा गुप्ता वंदना राठौर के, प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो के घड़ी में दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले साल फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया है। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने यह बात कल एक

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। जो 12:15 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गोपाल दास का क्लैरिनेट वादन। 12:30 पर कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट, इसके अंतर्गत सुनिए सैल सिंह का गाया लोकगीत। दोपहर 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT की ओर से उमंग। शाम 4:00 फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, जो कि हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, इसके अंतर्गत सुनिए त्रिभुवन नाथ गौड़ के गाए लोकगीत। 7:31 पर भारत और हांगकांग के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम अपने दिल्ली केंद्र से सुनवाएंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विवरण।

लीजिए, अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। सबसे पहली सूचना है रामबाबू सोनी की। सूचना के अनुसार प्रीति सोनी, आयु 15 वर्ष, शरीर सामान्य है, चेहरा गोल है, आंखें काली हैं, इनकी जन्मतिथि 15 वर्ष है, ऊंचाई 5 फीट है, रंग सांवला है, बाल काले हैं, इन्होंने सफ़ेद लाइनिंगदार सलवार सूट पहन रखा है। ये 27 जून 2026 से लापता है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दें। ग्राम फकीराबाद, चिरारी कॉलोनी, थाना सराय अकिल, जिला कौसम्बी। मोबाइल नंबर है 9421697081।

लीजिए एक और सूचना सुनिए। सोनू वर्मा के सूचना के अनुसार आंचल वर्मा, आयु 19 वर्ष है, गहरा बदन है, चेहरा गोल है, सामान्य आंखें हैं, ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है, बाल काले हैं, इन्होंने सलवार सूट पहन रखा है। ये 2 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दें। पिपरताली भगवक पूर्वा थाना मंडाता जनपद प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर है 9238320223।

मोबाइल नंबर फिर से एक बार सुन लीजिए, 9238320223। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए आप सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गोपाल दास का क्लैरोनेट वादन, राग है शुद्ध सारंग।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गोपाल दास का क्लैरोनेट वादन, राग था शुद्ध सारंग, तबला पे तत्संगत की थी अनूप कुमार बैनर्जी ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो के घड़ी में दिन के 12:30 हो रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति है मधु कुमार की।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। अर्ज किया है, हकीकत से रूबरू हो चुके हैं, अब कोई ख्वाब सजाना नहीं है। बहुत की है गलतियां पहले, अब उन्हें दोहराना नहीं है। दोस्त बने चाहे दुश्मन, अब किसी से घबराना नहीं है। जो समझे मुझे वो ठीक, अब किसी को भी समझाना नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने कार्यक्रम के पहले गीत की तरफ। और ये जो गीत है आ रहा है, फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और इस गीत की फरमाइश हमें की है दादनपुर प्रयागराज से विकास, नीतीश और प्रतापगढ़ से राजेंद्र और प्रभाकर तिवारी, हंडिया से प्रेमचंद, महेंद्र यादव, रेखा यादव और इनके परिवार के अन्य सदस्य, नरसिंहगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। तो आइए सुनते हैं दूसरा आदमी फिल्म का ये गीत।

इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और इस कार्यक्रम में अगर आप अपनी पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं एक फोन नंबर, उस पर आप मैसेज करके अपने गीतों के बोल और फिल्म का नाम हमें लिख सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 800-492-6250। तो इस नंबर पर आपको सिर्फ संदेश भेजने हैं, कॉल नहीं करना है। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, और ये गीत है, फिल्म का नाम है जवानी दीवानी, आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की। इस गीत को सुनने की फरमाइश आई है सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि, कोहका से मोरस जंघेल, अनिल, आयुष और नंदनी। इसी गीत की फरमाइश की है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना ने। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का जवानी दीवानी फिल्म का ये गाना।

किसी ने कितना सुंदर लिखा है कि सबकी अपनी कहानी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना भी किसी की जिंदगी में झांका ना करो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह रखकर आंका करो। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया करो, जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया करो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी और सबकी अपनी अपनी कहानी है। किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं और ऐसा ही एक गीत आ रहा है जिसकी फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने। तो पहले सुनिए उनके नाम, फिर हम आपको सुनवाएंगे गीत। और जो गीत है वो है फिल्म पिया का घर और आवाज है किशोर कुमार की और फरमाइश की है आप सबने। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विनी, मंगला बेन शाह। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। मेरठ से दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति टिया, जया और दर्शन भाई। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

और अब कार्यक्रम में आ रहा है शेरशाह फिल्म का ये गाना, जिसकी फरमाइश आई है मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, बरका काना से शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी सहानी, अफजल खान और इनके परिवार के अन्य सदस्य, करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा, डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो आइए सुनते हैं शेरशाह फिल्म का ये गाना।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब हम आ पहुंचे हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत की तरफ, और आवाज है श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज, और इस गीत की फरमाइश की है हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। संजय नगर ऐशबाग से फारिस अली खान और शहनाज खान। मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और पिट्टा बजाज। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का कृष्णा कॉटेज फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति थी मधु कुमार की मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही।
1: The world is witnessing a time of great...
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। श्री रूबियो ने यह बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का

इस्तेमाल बढ़ा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,588 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर रहा। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। महिला एशिया कप 2023 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 94 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: According to ED officials, the company had availed loans from banks for setting up a 66-megawatt power plant in Jharkhand, which was siphoned off to other group entities and diverted for personal purposes. The ED is conducting massive search actions in simultaneously at 30 premises across all zones of southern regions in different narcotics-related cases. ED said the searches are being conducted under the mandate of Nasha Mukt Bharat. In Kerala, former Devaswam Board President P.S. Prashant, the 17th accused in the Sabarimala gold misappropriation case, has been granted bail. The Kollam Vigilance Court granted bail on health grounds after his earlier bail application was rejected. In badminton, India's Kidambi Srikanth stunned Victor Lai of Canada 21-18, 21-19 to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters tournament in Shenzhen today. Srikanth will face Hong Kong's Lee Teo-kyu in his next match. Meanwhile, in women's singles, India's Tanvi Sharma went down to world number 9 Tomoka Miyazaki of Japan in the second round. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काशी से मेंबर पार्लियामेंट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात की और जिले में सैलाब की सूरत हाल के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। वजीर आजम ने दरिया के पानी के सतह और सैलाब से मुतासर अफराद को रिलीफ कैंपों में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी मालूमात हासिल की। वजीर आजम ने हिदायत दी कि सैलाब से मुतासर अफराद को इमदादी और जरूरी सहूलियात जंगी बुनियादों पर फराहम की जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि उन्हें कम से कम तकालीफ का सामना करना पड़े। उन्होंने हिदायत की कि जरूरियात वाले इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की फौरी इंतजाम करके इमदादी कामों को तेज किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कामों की मुसलसल निगरानी की जाए और मुतासर अफराद को फौरी इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया कि इमदादी कैंपों में रहने वाले बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की खसूसी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम किए जाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज फरकाबाद में सैलाब से मुतासर 1000 खानदानों में इमदादी सामान तकसीम करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में डबल इंजन की हुकूमत आपके साथ है।
2: आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं हैं। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार आपके साथ खड़ी है और आपके लिए वह हर मदद आप तक पहुंचाने का कार्य करेगी जो आपकी जरूरत होगी।
1: वजीर आला ने पुलिस लाइन में सैलाब से मुतालिक इमदादी सामान तकसीम किया। उन्होंने 96 सैलाब मुतासरीन में 1,20,000 के चेक तकसीम किए। 66 सैलाब मुतासरीन को जमीन के कागजात और 1,000 रुपये मालियत के फ्लड रिलीफ किट्स दिए। इससे कबल उन्होंने सैलाब मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा भी किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी सरकारी रिहायशगाह पर एक आला सतही और मौसमी इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल का जायजा लिया। एक H1N1 मीटिंग में वजीर आला ने हिदायत दी कि इन्फ्लुएंजा H1 के जांच रियासत के तमाम सरकारी सेहत के इदारों मुफ्त करवाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि जिला अस्पताल, CHCs, PHCs और मेडिकल कॉलेजों में मुनासिब टेस्टिंग, अदव्यात और इलाज को यकीनी बनाया जाए। जनाब योगी ने ज्यादा केस वाले अजला में निगरानी बढ़ाने और नाजुक मरीजों के लिए एक अलग ICU वार्ड्स की दस्तियाबी की हिदायत दी। मीटिंग में बताया गया कि 2 सितंबर तक रियासत में 685 लेबोरेटरी से तस्दीक शुदा केस रिपोर्ट हुए हैं। वजीर आला ने H1N1 में हिदायत की कि हल्की अलामत वाले मरीज तिब्बी मशवरे के मुताबिक आराम करें और घर में खुद को अलग थलग करें, जबकि शदीद मरीजों का फौरी इलाज किया जाए। उन्होंने बच्चों, हमला खवातीन, बूढ़ों और पहले से मौजूद तिब्बी हालात मुब्तला अफराद पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। वजीर आला ने गैर जरूरी घबराहट से बचने के लिए एक जामे अवामी बेदारी मुहिम शुरू करने और दुरुस्त मालूमात फैलाने की जरूरत पर भी जोर दिया। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए आज से रियासत भर में एक खसूसी HPV वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो रही है। ये 17 सितंबर तक चलेगी। इस मुहिम के दौरान 14 से 15 साल की तकरीबन 10 लाख अहल लड़कियों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। लखनऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर NB सिंह ने अहल लड़कियों को HPV टीके लगाने की अपील की। 14 से 15 साल की उम्र की लड़कियों को वैक्सीनेशन जरूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन बच्चादानी के कैंसर से बचने का वाहिद तरीका है। अपनी बेटियों को HPV वैक्सीन

0: के टीके लगवाकर उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। साबिक एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। यह ऐलान कल ट्रस्ट के सदर महंत नित्य गोपाल दास की सदारत में हुई मीटिंग के बाद किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भगवान कृष्ण के जाय पैदाइश मथुरा में जन्माष्टमी त्यौहार को एक अजीमुशान और इलाही रंग देने के लिए तैयारियां जोरों पर है। पहली बार जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण की पैदाइश और मुख्तलिफ तफरीहात को आसमान पर जिंदा करने के लिए 500 ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। दरियास्ता वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा जिले का दौरा करेंगे। वह तकरीबन 1,051 करोड़ रुपये के 229 तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में 6 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। दरियासता बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत की कई नदियां तुगयानी पर हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 126 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट।

0: कमला, अरे ए कमला बहनी, तनी हमरे ओरिया देखा, हम कहा तो उसे राम राम।
1: राम राम जमुना बहनी, राम राम। और पनघट सुने वाली सब बहनी अरन का भी राम राम, राम।
0: अरे कमला, तू तो है आज कुछ ज्यादा ही खुश जौन बटे दिखा था। इतना बड़ा जौन झोरवा लेके आई हुई मैं का बा बहनी, एकदम ऐसा इतना भारी बा कि लागत जिसे कोनो बहुत भारी सामान भरे हो।
1: अरे बहनी का बताई जब ना,
0: हाँ
1: कि हमार छुटकी बिटिवा जौनिया है,
0: हाँ हाँ
1: अब की मार हमका परेशान कई दिए, 15 दिन से लगाए है,
0: हाँ हाँ
1: कि अम्मा अब की हम जौन है झांकी जन्माष्टमी पर सजाओ,
0: अच्छा
1: घरे में सजाओ, सब जने सजावत ही हम सजाओ
0: सजाओ, देख देख के
1: हाँ मार।
0: हाँ
1: तो वही बहनी वह सामान के सूची बनाए के दिए रही कि हमका ई चाही चाही,
0: हाँ
1: कुल
0: हाँ
1: सामान दिए रही।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: आज बाजारों रहा,
0: अच्छा
1: तो हम कहे चलते एक दाई सब रही ले ले,
0: हाँ हाँ हाँ
1: ताकि ये जो है जब बहनी अरन से बतियाए के जाबे तो जल्दी से पहुंच जाब, तो सजाए लेंगे
0: हाँ माने
1: नहीं।
0: सबेर हर गऊ तो बाजारे में भीड़ भी कम रही।
1: हाँ अरे
0: और
1: बहनी
0: हाँ
1: मान लो सब पहुंचत के देर हो जाए ना,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हमारा जीव खाई जाई है कि इतनी देर हो गई हम कब सजाऊ।
0: सही कहत हो। और
1: हाँ
0: देखा जौन बटे कमला, कि जौन बा हमार कहे के मतलब कि जब अगर तू सामान वामान सब लेके जाबू ना, तब बिट्टी जौन बाटी बहुत ज्यादा खुश हो जाए,
1: बिल्कुल
0: है
1: बहनी,
0: ना। हाँ
1: ये तो है बा।
0: मुला कमला देखा, जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है
1: हाँ बहनी
0: जेमा अलग तरीका के उत्साह रहत है। हाँ अस लागत है कि जैसे पूरी सृष्टि श्री कृष्ण के जन्मदिन मनावता है ना।
1: हाँ बहनी एकदम सही कहू हुआ। और खास तौर पे बहनी प्रभु श्री कृष्ण के बाल रूप का सोचा, उनके किस्सा सुने में मन ऐसे खोए जाता, ऐसे लागत था जैसे सब कुछ सामने घटता है कि
0: बिल्कुल
1: नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और उनकर जाना थू ई मोहक रूप याद कर, एक तो माखन चुराए के खात रहे रंगे
1: हाँ
0: हाथों जौन बा पकड़ा जाते हैं।
1: हाँ

0: और पूरे मुंह में जोन माखन जोन बा चपोड़े रहे थे और तब जब मैया जब उनसे कहथिन तो कहथिन मैया मैं तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
1: बहनी ये तो है ही है। हाँ। ओकरे ऊपर सोने पर सुहागा बहनी। हाँ। कहा उमक इल्जामों का लगा हुआ थी कि ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बर बस मुखे लपटायो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लेकिन
0: और कमला हाँ उनकर ये मीठी मुस्कान ऐसा मन मोहे वाली है कि केवल रूठा भी रहे ना तो वो बिना जौन बाटे उनके मनाए रह नहीं सकत।
1: अरे बहनी
0: और बांसुरी का धुन तो उनकर ऐसी बाटे कि मनाई थोड़ी देर के बदे आपन सब कुछ दुख सुख भूल जाते है ना।
1: एकदम सही बात यह है जमुना। अच्छा जमुना ऐसे नहीं लगते कि हम सब एक बात करे थे तो जैसे मन में चिड़िया की हल्की हल्की चहचहाट और बांसुरी के हल्की हल्की धुन सुनाती है।
0: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल,
1: है कि नहीं।
0: हाँ, हाँ, हाँ.
1: वही तरीका महसूस होता है जैसे कहीं यही आसपास कदम केदार पे बैठ के भगवान जो ना है
0: बांसुरी
1: बजा होता है।
0: बिल्कुल कमला सही कहा था। और कृष्ण ऐसे आए कि अपने प्रेम में सबका बांध लेते हैं। वो जोन उनकर मधुर बांसुरी के जोन उनकर तान निकलत है वो बरबस होके अपने ओरी जोन बाटे खींचे चली आवत है ना।
1: और जब बहनी कथा उनके कभो सुना
0: हाँ
1: तो इस लागत है कि ऐसे आँखी मूंद के बैठे रहा और कथा
0: हाँ।
1: सुना तो एक एक घटना दिखा थी और भगवान के जब याद करा तो भगवान हमेशा एक प्रेम के रूप में
0: हाँ दिखाई पड़े थे।
1: हाँ मतलब जौन प्रेम के वो संदेश दिए मतलब कितने रूप में
0: हाँ, हाँ,
1: भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लेके उनके जब तक वो रहें
0: हाँ, हाँ,
1: मनुष्य रूप में रहे के रहें ओकरे अलावा कितने रूप में हर तरीका के रूप बदलें
0: बदले
1: बाल रूप में गदेला के तरीका बदमाशी नटखट मक्खनो चुराए नहीं
0: सब कुछ है।
1: और वही रूप में देखा गेंद खेलत खेलत खेल खेल में कालिया नाग के बध कई दिहेन
0: कई दिहेन
1: है कि नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इतना बड़ा बड़ा जो है राक्षसन के मार गिराएन
0: कमला की वो इतना नटखट रहें कि देखा वो यशोदा मैया उनकी जौन बौखली में बांध दी वो घसीट के उठा ले।
1: हाँ बहनी अगला समझ ला कि अब बड़वार भयन तो प्रेम के जौन संदेश संसार का दिहन
0: हाँ और जौन गीता का उपदेश दें
1: सब
0: ओकर
1: कुछ
0: अलग ही कहानी है ना।
1: हाँ
0: तो देखा
1: बहनी
0: जब हम सब
1: इतना भगवान का याद ही
0: करत
1: करते
0: है तो कुछ चला आज उनके विषय में जौन बा आज की बतकही में बतिया लिया जाए।
1: बिल्कुल बहनी नेकी और पूछ पूछ
0: देखा कमला कि जब जब होई धर्म की हानि
1: हाँ
0: बाढ़ ही मधुर अधम अभिमानी
1: तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा।
0: बिल्कुल भारत की पावन धरती त्योहारों और धार्मिक परंपराओं की भूमि रही है ना कमला।
1: बिल्कुल
0: और इन्हीं पवित्र पर्वों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष स्थान है। यह केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव नहीं होत कमला बल्कि धर्म सत्य प्रेम करुणा कर्म और मानवता का विषय का प्रतीक है। हा?
1: हाँ बिल्कुल जमुना बहिनी सही कहो।
0: हाँ।
1: अब भादो के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि कर भगवान श्री कृष्ण का जन्म भवा रहा।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: देखा उनके जन्म जेल में भवा रहा
0: हाँ।
1: काहे से कि कंस का आकाशवाणी भरी कि
0: हाँ।
1: उनके जो ना है
0: आठवां पुत्र
1: देव
0: के द्वारा
1: के आठवां पुत्र उनके वध करी। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा के वही वसुदेव के देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिये और उस समय अत्याचारी कंस के आतंक से मथुरा के प्रजा भयभीत रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: श्री कृष्ण के जन्म अधर्म और अत्याचार के अंत तथा धर्म के स्थापना के संदेश के लेके भवा बहनी।
0: बिल्कुल कमला। और कहा जाता है ना कि जब आदमी जब आधी रात के समय भगवान का जन्म भवा तब प्रकृति भी जैसे आनंद से भरी उठी। वसुदेव जी उन्हें जब लय के यमुना पार करत रहें तो वह समय यमुना अपने रौद्र रूप में रहें मूल जैसे ही भगवान का पैर का स्पर्श भवा
1: हाँ बहनी
0: वैसे ही जौन बार जौन यमुना जी घटे लगिन उनके लय के वसुदेव गोकुल पहुँचें और उनकर पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा के स्नेह में भवा। बाल कृष्ण का लीलाएँ उनकर नटखट शरारते माखन चोरी और गोप गोपियों के साथ उनकर प्रेम आज भी लोगों के हृदय में आनंद भर देते।
1: बिल्कुल सही बात कहो बहनी। और देखा कहा जैसे तू बतावत रहो कि जमुना जी बाढ़ी रही
0: हाँ हाँ
1: यो कहा जाता कि वो दिन बहुत

0: तेज मूसलाधार
1: बारिश होत
0: रही।
1: हाँ
0: और जमुना जी बाढ़ीन जान बुझ के कि श्री कृष्ण के हम पैर छुई
1: छू ले हाँ।
0: ताकि भगवान धरती पे आए आए तो हम उनके नमन कई ले
1: नमन कई ले। और देखा जब पानी बहुत घनघोर वर्षा होत रही तो वहाँ समय देखा जौन बा नाग
0: का हाँ
1: ना देखे उनके छत्र
0: विष्णु जी के जौन
1: हाँ
0: नाग रहे
1: रहे तो छत्र छाया
0: किए रहे
1: ताकि
0: ताकि भीजे ना भगवान
1: भीगे ना
0: हाँ।
1: और जमुना जी ई बिना बढ़ी ताकि बढ़ जाए और उनका पैर का स्पर्श कर ले
0: कई ले ही वही नहीं
1: हाँ।
0: देखा श्री कृष्ण के जीवन से हमें केवल भक्ति के संदेश नहीं मिलते
1: हाँ हाँ
0: बल्कि जीवन जिए के कला भी सीखे के मिला था बहनी
1: बिल्कुल।
0: देखा वो भगवत गीता के माध्यम से संसार में कर्म के महान संदेश दिए
1: बिल्कुल।
0: उन कहें कि कर्मंदे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब मनई का कर्म करे के सोचे के चाही खाली
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ओकरे फल के चिंता ना करे के चाही। जैसे हम कर्म करब ओकरे अनुसार फल दे के बरे भगवान खुद बैठा है
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: अपने कर्म के फल हमका अपने आप मिलत रहे
1: बिल्कुल।
0: बस हमका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से का करे के है कि अपन कर्म
1: करे
0: के है बिल्कुल
1: हाँ। और परिणाम की चिंता ईश्वर के ऊपर छोड़ दे के
0: बिल्कुल
1: है ना। और देखा कमला श्री कृष्ण अपने जीवन में प्रेम और मित्रता का भी अद्भुत मिसाल प्रस्तुत किए हैं। सुदामा के साथ उनका मित्रता यह सिखावत है कि सच्चा रिश्ता धर्म दौलत से नहीं होता, निष्काम प्रेम सच्ची मित्रता और समानता का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। श्री कृष्ण का जीवन अनेक रंगों से भरा है कमला हाँ। वे कभी यशोदा के नटखट कन्हैया हैं तो कभी ग्वाल बालों के प्रिय सखा, वे राधा के प्रेम में समर्पित दिखाई देते हैं तो वहीं महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर उन्हें जीवन का महान ज्ञान भी दिए हैं है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बहनी श्री कृष्ण अर्जुन के कर्म का महत्व समझावत भय बताएं कि मनुष्य का अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे के चाहिए
1: बिल्कुल
0: चाहे एके परिणाम में के हमारे सामने केहू भी खड़ा हो,
1: हाँ हाँ हाँ
0: बल्कि
1: हाँ
0: पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपन कर्तव्य निभावे के चाहिए। आज के समय में श्री कृष्ण के ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता
1: जी जी जी
0: आधुनिक जीवन में मनुष्य अनेक प्रकार के चिंताओं और तनाव और प्रतिस्पर्धा और परेशानियों से घिरा बाटे
1: बिल्कुल सही कहा था। और ऐसे समय में कमला श्री कृष्ण हमें सिखावत हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो काहे न हो हमें आपन संतुलन बनाए के रखे के चाहे और सत्य तथा धर्म के साथ कभी भी न
0: छोड़े के चाहे। और वही नहीं देखा एक और चीज यहाँ कहे चाहे कि देखा गोवर्धन पर्वत उठावे के माध्यम से
1: हाँ हाँ
0: भगवान हमका ई समझाएं कि हमरे बड़े पहली चीज कौन महत्वपूर्ण है।
1: जी जी जी
0: पूजा के अर्थ ही ना ही होते कि हम फूल चढ़ाई दिया जलाई हाँ, आरती
1: हाँ,
0: गई उन गीता में भी कहे हैं उन इंद्र से भी यही बात कहें कि देखा पूजा करे के ई मतलब ना ही बा कि फूल चढ़ाए दिए दिया जलाए दिए
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सच्ची पूजा उ होता जब मनई भाव से करे था
1: जी,
0: भक्ति
1: जी।
0: से करे था मनई मनई के प्रति प्रेम रखा था और जो मनुष्य मनुष्य से न प्रेम कर सके ओके पूजा के कोनो मतलब नहीं
1: नहीं
0: बहनी।
1: बटे
0: तो इस तरीका से अगर हम देखें तो उनके पूरा जीवन उनके जीवन की एक एक घटना हमका कुछ न कुछ सिखावत थी
1: बिल्कुल बहनी।
0: भगवत गीता ओ समय जितनी प्रासंगिक रही भगवान बहनी उतनी ही प्रासंगिक आज भी है
1: आज भी है।
0: और देखा आज भी हमका श्री कृष्ण के जरूरत यह है आज के समय में भी हमका चाहिए भगवान हमारे पास आवे। तो हम तो इतना ही कहा बहनी कि कही क्या का कैसे का कही कि है कहा बट

0: अब देखा
1: हाँ
0: बहनी, यही बात पे श्री कृष्ण के जन्म के अवसर है ये है,
1: हाँ
0: तो चला जूही मिश्रा बहनी से
1: एक
0: एक
1: सोहर
0: बढ़िया सोहर
1: सोहर
0: सुन
1: सुना
0: लेन
1: जाए।
0: जाए।

0: हाँ
1: बहनी
0: कमला
1: कितना बढ़िया सोहर रहा।
0: देखो मन एकदम खुश हो गया ना।
1: हाँ
0: एकदम जैसे पूरा रोम रोम एकदम से
1: भाई, सोहर
0: जैसे
1: सुना तो ऐसे लगबे करा था ना,
0: हाँ
1: सोहर आए भी आ गई था, ये सब
0: हाँ
1: सुना तो अंदर से जो है पूरा रोआ खड़ा हो
0: रोआ
1: जाता।
0: खड़ा हो गया था ना।
1: हाँ
0: हाँ
1: बहनी।
0: तो देखा अभी हम सब देखा श्री कृष्ण जी के बारे में बात करते रहे ना,
1: हाँ
0: तो देखा इन्हीं से संबंधित एक वार्ता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व, और वार्ताकार हैं शोभा शुक्ला। तो चला हम वो सब सुन लिया जाओ, बहनी अरे भी सुने।
1: बिल्कुल बहनी।
2: श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। यह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा के कारागार में रात के समय देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। उस समय चारों ओर अत्याचार और अधर्म का वातावरण था। मथुरा का राजा कंस अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था और उसे आकाशवाणी से यह ज्ञात हो चुका था कि देवकी का आठवां पुत्र उसके अंत का

कारण बनेगा। इसी भय के कारण उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक दिव्य घटना नहीं बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह संदेश दिया कि जब अन्याय बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ता है तब सत्य और न्याय की शक्ति अवश्य सामने आती है। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप अत्यंत मनोहारी माना जाता है। नन्हे कृष्ण की माखन चोरी, ग्वाल बालों के साथ खेलना, गायों को चराना और गोपियों के साथ उनकी मधुर लीलाएं आज भी आनंद से भर देती हैं। कृष्ण की माखन चोरी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर के प्रति औपचारिकता दिखावा नहीं होना चाहिए बल्कि निष्कपट भाव और आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण जी के चेहरे की मुस्कान, हाथ में मुरली और सिर पर मोर पंख वाली छवि आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में बसी हुई है। राधा कृष्ण का प्रेम, राधा कृष्ण की कथा हमें यह बताती है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता बल्कि त्याग, विश्वास और समर्पण सिखाता है। यही कारण है कि आज भी राधा कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण और भगवद गीता का भी आपस में बहुत ही संबंध है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश हमें महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेश में मिलता है। जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित और दुखी हो गए थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और जीवन का गहरा ज्ञान दिया था। उन्होंने समझाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए और कर्म के फल की चिंता में अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। आधुनिक जीवन में भी मनुष्य जब तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा और असमंजस से घिरा हुआ है तब गीता का संदेश उसे धैर्य, आत्मविश्वास और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, मित्रता और भक्ति की प्रेरणा हमें देता है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मध्य रात्रि में कृष्ण जी के जन्म का उत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी हमें कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, धर्म और सदाचार पर चलने की प्रेरणा देता है। जन्माष्टमी का उत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों और घरों में विशेष सजावट की जाती है। भक्त उपवास रखते हैं और दिन भर भजन कीर्तन करते हैं। रात के समय जैसे ही 12 बजते हैं मंदिरों में घंटियां और शंख की आवाज़ गूंजने लगती है तथा भक्त नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगाकर श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। कई स्थानों पर दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। ऊंचाई पर लटकी मटकी को युवाओं की टोली मिलकर फोड़ती है और साथ ही एकता, सहयोग और सामूहिक प्रयास का संदेश भी देती है। आज हमारा समाज तेजी से बदल रहा है। जीवन में सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और आपसी दूरी भी बढ़ती दिखाई देती है। ऐसे समय में श्री कृष्ण के विचार हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते हुए साहस से कठिन समय का सामना करना चाहिए। उन्होंने प्रेम सिखाया लेकिन अन्याय के सामने झुकना नहीं सिखाया। श्री कृष्ण का जीवन हमें बताता है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही समय पर सही कार्य करना भी होता है। जन्माष्टमी का परिवार को जोड़ने का भी अवसर है। इस दिन बच्चों को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन से जुड़ी प्रेरक कथाएं सुनानी चाहिए। उन्हें यह सब समझाना चाहिए कि श्री कृष्ण केवल

0: माखन चुराने वाले नटखट कान्हा ही नहीं थे, बल्कि वो महान मित्र, कुशल मार्गदर्शक, न्यायप्रिय योद्धा और जीवन का गहरा ज्ञान देने वाले गुरु भी थे। यदि हम उनके जीवन से प्रेम, सत्य, मित्रता, कर्तव्य, साहस और मानवता जैसे गुणों को अपने जीवन में उतार लें, तो यही जन्माष्टमी मनाने की सबसे सार्थक भावना होगी। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन की प्राकृतिक सुंदरता के बीच बीता। वे गायों से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए जन्माष्टमी हमें प्रकृति, पशु पक्षियों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने की प्रेरणा भी देती है। आज जब पर्यावरण, प्रदूषण और प्रकृति का असंतुलन बड़ी चुनौती बन चुका है, तब श्री कृष्ण के प्रेम से प्रेरणा लेकर हमें पेड़ पौधों, नदियों और जीव जंतुओं की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। आइए इस जन्माष्टमी पर हम केवल मंदिर में जाकर पूजा न करें, बल्कि श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने रिश्तों में प्रेम बढ़ाएं, परिवार में संवाद बनाए रखें, जरूरतमंद की सहायता करें, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। श्री कृष्ण जी को सच्ची श्रद्धांजलि केवल उनके नाम का जाप करने में नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने में ही है। हम सभी जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर पूरे हृदय से कह सकते हैं, जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया लाल की, राधे राधे।
1: हाँ जमुना बहनी,
2: हाँ बहनी,
1: देखा अब एक ठीक बढ़िया से गौने ही सुनाए था, क्योंकि बहनी इतनी बढ़िया बढ़िया बातचीत बताई
2: ना,
1: हाँ।
2: तो चला तो के हम ओके बाटे
1: नीक के गौने ही सुने के
2: अमर प्रेम फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये जौन गीत सुनवावत है, तो हूँ सुनो बहनी हरन भी सुने।

0: कमला
1: हाँ वही,
0: कितना अच्छा ज्ञान रहा ना,
1: हाँ
0: मन एकदम खुश हो
1: भगवान श्री कृष्ण के बचपन के लीला में मन ही खोए जाए कि कैसे
0: गए।
1: मैया यशोदा उनके
0: हाँ
1: पीछे पीछे
0: बड़ा
1: दौड़न भागत
0: नटखट है कृष्ण
1: रहे
0: कन्हैया, का करे यशोदा मैया। वास्तव में बहुत नटखट कृष्ण जी रहे यशोदा
1: सबई
0: जी उनके
1: लड़का
0: पीछे
1: नटखट
0: पीछे
1: होती,
0: दौड़त रहती।
1: बिल्कुल।
0: हाँ तो ये बताओ
1: हाँ
0: कि जौनपा गीत तो हम सुनवाए दिया, और कल देखा जन्माष्टमी के त्योहार हुए, व्रत हुए, तो यही बताओ हमारे बहनी हरण के व्रत के बारे में कौनो व्यंजन उजन लेके आई हो कि नहीं, बताओ इसलिए।
1: बिल्कुल, हमका पता रहा कि कल जन्माष्टमी आए, तो बहनी हरण के आज रसोई घर से में कुछ ऐसा बताई कि जो आराम से बनाए लें, पौष्टिक भी होए और जल्दी से
0: बन
1: बन
0: भी
1: भी
0: जाए
1: जाए।
0: तो बताओ का
1: तो
0: बताओ
1: एक
0: हमारे
1: चीज़
0: बहन के,
1: मीठी ले आई बताओ बहनी हरण का, और एक चीज़
0: नमकीन।
1: नमकीन।
0: अच्छा तो का बताओ तो फटाफट बताओ जल्दी से। तो
1: तो देखा बहनी हरे, आजकल तो कस्टर्ड हमार सब बहनी हरे बनावा थी, गांव
0: हाँ
1: से
0: हाँ हाँ हाँ
1: शहर का चीज है।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: आज बहनी हरन के व्रत वाला बताओ कैसे
0: अच्छा अच्छा
1: बने।
0: अच्छा हाँ
1: ओकरे बड़े बहनी हरे 50 ग्राम मखाना ले लें,
0: हाँ
1: चीनी या मिश्री जितना अपने हिसाब से ले लें, खाए
0: हाँ
1: थोए
0: जितना
1: स्वाद के
0: मीठा
1: हिसाब से।
0: जैसे
1: हाँ
0: खात हुए।
1: हाँ
0: हाँ
1: और 10-15 ठे काजू ले लें, है
0: अच्छा
1: ना, आधा लीटर दूध ले लें, और जौन जौन फल उनके खाए के, जैसे केला है, सेब है, अनार है, पपीता है,
0: हाँ हाँ
1: ले
0: हाँ
1: सकते थे,
0: हाँ हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना। ओकरे बाद विधि का करे क्या है,
0: कैसे बहनी।
1: मखाना और काजू का
0: हाँ
1: गुनगुना दूध में
0: अच्छा
1: 2 घंटा बदे भिगोए दे के आए।
0: अच्छा गुनगुने दूध में
1: हाँ
0: 2 घंटे के लिए भिगो दे।
1: भिगोए दे के आए।
0: अच्छा
1: ओकरे
0: हाँ
1: बाद बहनी ओका बढ़िया से पीस ले के आए
0: अच्छा
1: महीन।
0: पीस दे।
1: हाँ जब 2 घंटा भी फूल जाए बढ़िया से,
0: हाँ हाँ
1: तो ओका पीस ले के आए दूध
0: अच्छा
1: एक साथ है,
0: अच्छा
1: वही मिश्री डाल दे, मिश्री चीनी भी डाल दे साथ में।
0: अच्छा तो संग अलग पिसाई
1: हाँ
0: जाए।
1: पिसाए जाए
0: हाँ
1: बढ़िया
0: हाँ
1: से।
0: हाँ हाँ
1: ओकरे बाद जौन भी फल खाए के होए ओका महीन महीन ओमा काट के डाल लें,
0: अच्छा
1: और देखा तो हार
0: पीसे के
1: व्रत के।
0: बाद।
1: हाँ पीसे के बाद
0: हाँ
1: महीन महीन फल काट के डाल लें, और ओका चाहे ठंडा कहीं के खाएं, भाई फ्रिज होए तो फ्रिज में ठंडा कहीं के खाएं, और नहीं तो ऐसे भी खाएं, बढ़िया तुरंत है थोड़ी देर में तैयार हो
0: और
1: जाए।
0: जो मखाना तू बतावत रहू।
1: वही मखनवा जो ना है दूध में भिगाए रहे ना,
0: अच्छा
1: मखाना
0: अच्छा
1: काजू
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: पीसे
0: मज़ा।
1: के
0: हाँ
1: आए।
0: मखाना काजू ठीक। हाँ
1: हाँ
0: हाँ हाँ
1: वही तो बताए हैं।
0: अच्छा। तो
1: हाँ
0: ये तो बड़ा बढ़िया जो बताओ, बहुत जल्दी बन भी जाए और सेहत के लिए कितने फायदेमंद है।
1: फायदेमंद है। ओकरे अलावा बहनी अरे साबूदाना की टिक्की बनावा थी हम।

0: आई थी साबुदाना के पराठा,
1: कैसे बनी?
0: काहे उमा तेलो कम लागत है
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: घी कम लागत, घी तेल जो भी इस्तेमाल करें
1: हाँ हाँ
0: तो साब उमा चाहिए भी। देखा सामग्री चाहिए, साबुदाना 1 कटोरी ले किया
1: हाँ हाँ
0: है ना, 2 बड़ा उबला आलू ले किया है, आधी कटोरी भुनी मूंगफली ले किया है, ठीक, धनिया, हरी मिर्च और नमक, सेंधा नमक
1: हाँ
0: अपने स्वाद
1: चलेगा।
0: के हिसाब से
1: हाँ
0: ले
1: भाई
0: लें
1: व्रत
0: जो
1: में तो सेंधा नमक खाया जाता है।
0: खावा जाता है।
1: हाँ
0: तो करे के क्या है कि मूंगफली भुनिया है, ओका पीस ले के आया
1: हाँ
0: है ना,
1: हाँ
0: और साबुदाना का कढ़ैया में सूखा भून ले के आया,
1: अच्छा
0: और तब तक भुने के आए जब तक भुनत भुनत होके रंग थोड़ा से बदल के सफ़ेद हो जाता है
1: अच्छा
0: एकदम,
1: अच्छा अच्छा
0: ऐसे देखा तो हल्का से पारदर्शी होता है ना
1: हाँ हाँ हाँ
0: साबुदाना, और
1: साबुदाना।
0: जब ओका भूना भुना भुना तो थोड़ा से सफ़ेद हो जाए, हल्का से चटके
1: हाँ
0: लगे,
1: चटके लगे और उनमें जैसे जैसे लगा था जैसे आर पार दिखाई पड़े लगा था, है
0: नहीं
1: ना।
0: उस
1: हाँ
0: तरीका ना होए,
1: हाँ हाँ
0: सूखा भुने के है
1: अच्छा
0: ना,
1: सूखा भुने गया। ठीक
0: हाँ
1: ठीक ठीक
0: भे के ना ही,
1: हाँ
0: सूखा
1: सूखा
0: भुने क्या
1: भुने
0: है,
1: गया। अच्छा
0: तो जो ना है सूखा भुने में जैसे एकदम दूध जैसे सफ़ेद हो
1: दूध
0: जाए
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और थोड़ा से हल्का से बड़ा हो जाता है ना, तब ओका उतार लेके आए,
1: अच्छा
0: ओका ठंडा करके पीस लेके आए, ओकरे बाद आलू के साथ है, वही आलू धनिया हरी मिर्ची और हल्का सा नमक डाल के
1: हाँ
0: वही आलू के सहारे से
1: ओके
0: साबुदाना
1: सानी
0: मूंगफली
1: सानी
0: आटा तरीका
1: गुथ ले।
0: गूंथ लेके
1: हाँ
0: आए,
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: फिर ओका बेल बेल के हल्का
1: अच्छा
0: से घी लगाए के बेल के
1: हाँ
0: परेठा तरीका सेक ला।
1: अब
0: तो
1: पराठा
0: ऐसा
1: बनाओ घी लगा के अपन।
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो ऐसे का हुई कि तेल कम घी जो ना है कम लागे तो स्वास्थ्य के बड़े नुकसानदेह कम हुई, काहे से जब
1: बिल्कुल।
0: टिक्की साबुदाना का बनाया जाता बहनी
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: तेल ढेर सोख
1: उमे हाँ
0: लेता
1: उमे तो हाँ माने उमे जो जैसे हम सब व्रत के लिए घी में बनाई थे तो उमें घी ज़्यादा चला
0: चला
1: जाता।
0: जाता बहनी। तो का जो ना है चाहे दही के साथ ही खा, दही में
1: अच्छा
0: खीरा घिस के, और चाहे तो व्रत वाली जो सब्जी बना था ओकरे साथ ही खा,
1: अच्छा
0: है कि नहीं।
1: हाँ तो देखा इतना जौन बटई तू मीठा भी बताई दूँ नमकीन भी बताई दूँ कि जैसे कभी कभी होता है ना कि मनई मीठा खाए ले था तो ओके नमकीन खाए के मन करे लगत है
0: बिल्कुल
1: तो
0: बहनी।
1: जब नमकीन खाए ले तेकरे बाद फिर कहे कि हमें चाय भी चाहत
0: और
1: है
0: बहनी
1: ना।
0: देखा इसमें ताम झाम ज्यादा नहीं बा, काहे से कि इतना काम होता
1: हाँ
0: पूजा पाठ के दिन खासतौर से जन्माष्टमी पे, कि जब मैंने व्रत रहा था बहुत कुछ होके हिम्मत पड़ते नहीं कि
1: जी जी
0: बनाए ले,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये सब ऐसी चीज़ है जेका खाए से पेटो भर जाए और जो ना है बहुत मेहनत भी ना करे कोई,
1: मेहनत भी ना
0: फटाफट
1: करे
0: बन जाए बहनी।
1: बिल्कुल। तो देखा तू हमें इतना नीक जोन बटे ये रसोई घर से व्रत के व्यंजन बताओ तो हम चला तो होके एक ठे लगान फिल्म से खूब अच्छा सा गाना जोन बस सुनाओ थे लता मंगेशकर जी और उदित नारायण जी की आवाज़ में। तुहू सुनो बहनी हरन भी सुने।

0: कमला
1: बहनी जमुना,
0: हम तो एकदम जमुना जैसे इस गाने में एकदम खोई गए।
1: हाँ बहनी, हम देखा थे तो का कि तुम्हार आँख नम हुई गई, देख सुना सुना आ देखा ये ऐसे है, ये है भगवान के याद करे लगा तो। अब देखा बहनी, पनघट्टे पे समय बाटे एक ठे संदेश के,
0: चलो सुना
1: ताकि बहनी हरे चिट्ठी पत्री लिख सकें, तो चला हम तो सुन लीन जाए बहनी हरे भी।
0: माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमार ईमेल एड्रेस है
1: panghatprogram@gmail.com, स्पेलिंग है PANGHATPROGRAME@gmail.com, panghatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
3: हमार व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
1: जमुना बहनी,
0: हाँ बहनी,
1: देखा अब बस यह कहा है क्या है कि जन्माष्टमी के छठा ऐस होती कि चारों तरफ अगर देखा तो एक ही चीज़ दिखा थी कि राधे कृष्ण की जो

0: Belgian counterpart commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence data centres and global capability centres. In Bihar, water level in Ganga River rises, increasing flood threat in new areas. And in badminton, Kidambi Srikanth beat Victor Lai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज भारत और बेल्जियम अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन ने संवाद उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अब समाचार विस्तार से भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है
2: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी
2: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे
1: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए वो तीन दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा

0: मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
2: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैस्डैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
4: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा

0: सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
4: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रॉन्कन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की ओर से उमंग।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की ओर से उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
3: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाए।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
3: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
2: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
3: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
3: और सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
2: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहां के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
3: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
2: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
2: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
3: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
2: जी।
3: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
2: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों

0: How would you identify water, flower, sugar? Direction of a clapping sound.
1: Note to the teacher. Sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीइंग विदाउट सीइंग।
3: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
4: आगे एक्सिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
3: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
5: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
2: और इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
1: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
6: साथियों नमस्कार।
7: नमस्कार साथियों,
6: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
7: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
6: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
7: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
6: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
8: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
9: ओ सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
8: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
9: यस।
7: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनविच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
6: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक

0: खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 14
3: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना,
4: 13, 12, 11। ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ। सू,
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4। ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4।
3: मेरी तरफ देखो।
4: सू, Only 4। ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ, हाँ।
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सू,
3: हाँ?
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओ जॉन्सी।
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
4: टू, ओ, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जोनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
4: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
4: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
4: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
4: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
4: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
4: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
4: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
4: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है?
3: हाँ, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने

0: दो दिन और बीत गए। वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
1: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
3: बेहतर।
2: ये लो, कॉफी पियो।
3: थैंक यू।
2: जॉन्सी, एक बुरी खबर भी है।
3: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
3: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
2: हाँ।
3: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ, वही।
3: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ, वही मिस्टर बेरमैन।
3: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
3: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
3: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
3: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है? सू
4: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
3: पेंटिंग?
2: हाँ।
3: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
3: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
3: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
3: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
3: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉन्सी,
3: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू,
2: हाँ, उन्होंने बना दिया।
3: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू, मास्टरपीस।
2: हाँ,
3: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
0: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
4: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे।

0: मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
1: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की ओर से उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे हैं। अब हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। शाम 4 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए हम आपको बता दें, विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो के घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर, जो कि हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नंदन वंदन अभिनंदन संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हर बार की तरह हमारा आज का ये कार्यक्रम आत्मिक होने वाला है, क्यों कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही एक मेहमान जिन्होंने 40 वर्षों तक सेनाओं के जरिए सेना में अपनी सर्विसेज देने के बाद आज सेवानिवृत्त होने पर भी अपना कार्य करना नहीं छोड़ा। अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्म से उन्होंने अपने लिए एक नए आयाम ढूंढे हैं। उनके नए आयाम क्या हैं ये बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये एक्स डायरेक्टर जनरल वर्क्स इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक ऐसे ऑफिसर हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारी सेना को सशक्त किया है। अक्सर हम यही कहते हैं कि सेना का अर्थ है हमारे तमाम वो फौजी जो मैदान

0: जंग में जाकर लड़ते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ये फौजी सेना को सशक्त करते हैं, अपने साथियों को सशक्त करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि हमारे आज के जो गेस्ट है, मेहमान है, ये एक सोल्जर होने के साथ साथ एक मिलिट्री इंजीनियर भी हैं और इन्होंने सेना में रहते हुए असीम योगदान दिए हैं। तो आइए सर्वप्रथम सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। अशोक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
0: जी, जब भी हमारे इस कार्यक्रम में आप जैसी हस्तियां शिरकत करती हैं, पहुंचती हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरी ओर से यही रहता है कि वो कौन सी कैसी बात थी, कौन सी कैसी चाह थी जो आपको भारतीय सेनाओं की तरफ ले गई? क्या वो बात थी जिसने आपको आकर्षित किया कि अगर जाना है तो बस सेना में ही जाना है और सेना के माध्यम से ही अपने देश प्रेम को स्थापित करना है?
1: सो गीतिका, वो दौर ऐसा था जब you know, हमारे पास विकल्प कुछ थे भी और कुछ नहीं भी थे, पर सब में जो परम विकल्प था वो फौज ज्वाइन करना था। और वह इसलिए भी था कि हमारे पिताजी स्वयं फौज में थे, वो इंडियन नेवी में थे और उनके साथ में हम कई वर्षों तक रहे, अलग अलग जगहों पर हमने गए और दिल में एक ऐसी उम्मीद थी कि हम भी उनके पद्म चिन्हों पर चलेंगे और फौज में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाब हुआ।
0: वाह, क्या बात है। अक्सर ये देखा जाता है जब वो बच्चे जिनकी परवरिश फौजी माहौल में होती है तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में ज़िंदगी जीते हैं, तो क्या वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था जो बचपन से ही आपको रास आया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी हमें बचपन से ही उन्होंने जो सिखलाई करी, वो चाहते थे कि जैसा वो अपने नियमित रूप में करते हैं वैसा ही हम सब करें। हमने कोशिश की कि हम उनके पदचिन्हों पर चल पड़ें और उनके जैसे काफ़ी चीज़ें सीखें। कुछ हमने सीखा, कुछ आज भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: क्या बात है, तो सीखने सिखाने का सिलसिला बरकरार है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि भले ही घर में माहौल स्ट्रिक्ट रहा हो, तो इसके बीच शैतानियां ना हुई हो ऐसा भी मुमकिन नहीं?
1: स्ट्रिक्ट माहौल, आई थिंक उन दिनों में जो तरीके थे काम करने के वो इस तरह के थे कि जब तक बच्चे को एक you know, एक खुराक ना मिल जाती तो वो you know, आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन आज का ज़माना शायद बदल चुका है, लेकिन हम उन चीज़ों से यूज़ टू हो चुके थे और हम अपने तरीके से, हम अपने दोस्तों के साथ में शैतानियाँ भी करते थे, खेलकूद भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे और अपने काम में कोशिश की कि हम वो अचीव कर पाएँ जो हम चाहते थे। और फौज का जो हमारा एक लक्ष्य था वो हमने उन सब चीज़ों में रहते हुए हासिल किया।
0: जी, ऐसा भी दौर आता होगा कि पिताजी लंबे समय तक कहीं बाहर रहते हों, टूर्स पे रहते हों, अपने मिशन्स पर रहते हों, तो उस बीच उनके साथ संपर्क ना हो पाता हो, तो ऐसे में किसको अपनी बात कहते और कैसे घर का सामंजस्य माताजी बनाती?
1: ये सब चीज़ें आई थिंक फौज में जब आप रहते हैं, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स, सो आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम ज़िंदगी का एक रूप जो है वो अपने आप में एक तरीके से ढलने लग जाता है। जब आपको मालूम होता है कि आपके पिताजी जब आपके साथ में नहीं हैं तो आपने क्या क्या कार्य करने हैं, मदर के साथ में कैसे डील करना है, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में कैसे करना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान कैसे रखना है। उन दिनों में मोबाइल्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन के ज़रिए चिट्ठियों के द्वारा हुए थे, तो उनका एक अलग खुशी थी उसमें, एक अलग तरीका था और हमें मालूम होता था कि कब पिताजी आएंगे और कब you know, हमारी खिंचाई होगी। लेकिन साथ ही साथ हम अपना काम करते रहते थे और वो सारी जिम्मेवारियां भी निभाते थे जो you know, आज कम देखने को मिलती हैं।
0: एक बच्चे के लिए उसके पिता उसके रोल मॉडल होते हैं, तो जब कभी आपने अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखा उस वक्त क्या फीलिंग आई, उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: सो यूनिफॉर्म में तो जब से हम पैदा हुए और हमारी you know, हम एक उस स्टेज में आए जब, तो हमने अपने पिताजी को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा और अच्छा लगता था। वो यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग की होती थी और वो नेवी में you know, कार्यरत थे, सो काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर उन्होंने पोस्टिंग करी, तो हमारा भी इरादा था कि हम भी फौज में जाएं। हम चाहते थे कि हम एयरफोर्स में जा पाएँ, लेकिन हम फाइनली आर्मी में गए और आज हमें कोई शक नहीं है कि जो भी हमने आर्मी से सीखा वो काबिले तारीफ़ है और हमारे जीवन की जो कार्यशैली है वो उससे हमने बहुत कुछ सीख कर आज हम एक सशक्त इंसान बने हैं। इसका मैं धन्यवाद अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पिताजी हैं, तो उन सबको देता हूँ जिनके वजह से आज हम

0: वहाँ तक पहुँचे हैं
1: जी निश्चित रूप से। वो पल कौन सा पल था, कैसा पल था और कब घटित हुआ जब आपने आर्मी का एग्जाम क्लियर किया? क्या थी वो पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आप एक ऑफिसर बने इंडियन आर्मी में?
0: उन दिनों में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और अमूमन फौजी बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही स्कूलों में पढ़ते थे और उनका काफ़ी नाम हुआ करता था और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। तो हमारी ये जिद्दोजहद थी कि हम पहला हमारा जो लक्ष्य होगा वो फौज का होगा। सो पहला जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उन दिनों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसको हम NDA कहते हैं उसके एग्ज़ाम हुआ करते थे। वो उन दिनों में 11वीं के बाद होते थे और मुझे याद है कि हम ग्रुप बना के सारे दोस्त एक साथ पढ़ा लिखा करते थे और कोशिश करते थे कि हम उसको निकल पाएँ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने अपना जो इम्तिहान था वो पहली दफ़ा में क्लियर कर लिया था, लेकिन NDA के दौरान में कुछ ऐसे इश्यूज आए कि हम ज्वाइन नहीं कर पाए। वो कसक जो है दिल में लगी रही और ये रहा कि हमें फ़ौज में ही जाना है। तो हमने 3 साल और मशक्क़त की, ग्रेजुएशन की, बम्बई यूनिवर्सिटी से BSc में उत्तीर्ण हुए और फिर दोबारा से हमने उसी सेंटर में उसी उम्मीद के साथ फिर एक बार जूझे और फिर पहली दफ़ा में हमने एग्ज़ाम क्लियर किया। और एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो थी लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से हम आर्मी में आ गए। सो एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई ऐसी शिकायत या गिला नहीं है, लेकिन जो सफ़र रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, हमने ज़िंदगी के कई दायरे कई पहलू ऐसे सीखे जो आज तक हमारे साथ हैं और उम्मीद है कि हम अपने बच्चों में भी ये चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं
1: जी। तो सन 1986 में आपने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया CDS एग्ज़ाम
0: जी हाँ।
1: और फिर 1987 में आप कमीशन्ड हुए इंडियन आर्मी में।
0: हाँ जी
1: जी। तो फिर पहली पोस्टिंग कहाँ मिली, कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन किया आपने?
0: जब हमने ट्रेनिंग के दौरान IMS से निकले तो कुछ दिनों के लिए हम रुड़की में एक छोटा ट्रेनिंग कैप्सूल होता है जिसको करने के बाद में हमारी पहली पोस्टिंग सिक्किम में आई, जो कि आपने सुना होगा नथुला पोस्ट है जो चाइना के अक्रॉस है। सो हमारी यूनिट की एक टुकड़ी वहां पर तैनात थी और हम जैसे ही यूनिट पहुँचे कुछ दिन कैलिमपोंग एक जगह है जहाँ पर रहने के बाद में तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमको वहाँ भेज दिया गया और ऑलमोस्ट 2 साल हम वहाँ पर रहे और जो कुछ वो सीखने को मिला उस दौरान में वो काफ़ी काबिल तारीफ था। हमने अपने आप भी काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन जो हमारे सरदार साहिबान और हमारे जवान और हमारे जो अफसरान थे उनके ज़रिए हमने काफ़ी कुछ सीख ली जो आज तक हमारे साथ में बरकरार है।
1: क्या बात है। एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे, वैसे तो भारतीय जो सेना है जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है टफेस्ट ट्रेनिंग्स कहा जाता है वर्ल्ड में, लेकिन ट्रेनिंग्स के बाद भी जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं आपकी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं, आप पर कार्यभार दिया जाता है, आपको डिसीजंस लेने होते हैं, कमांड सुनने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, तो वो मंजर कैसा था? क्या आपकी कल्पनाओं से एकदम अलग था या जो आप सोच के गए थे बिल्कुल वैसा था?
0: आपका जो सोचने का तरीका होता है वो आपकी एक अपनी तरतीब होती है कि आप सोचते हैं कि ज़िंदगी की चीज़ें इस तरह से चलेंगी, लेकिन जब आप ज़मीन पर हकीकत में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, कई चीज़ें उसके विपरीत भी होती हैं और आप देखते हैं कि ज़िंदगी के मायने कुछ और भी हैं और उसमें जो सीखने सिखाने वाले लोग हैं आपके जो सीनियर अफसरान हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो आपकी टुकड़ी के जवान हैं जो JCOs हैं जो तजुर्बेकार हैं उनके ज़रिए आप बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकली शायद नहीं सिखाया जाता है। वो जब आप ज़मीनी हकीकत के साथ जुड़ते हैं तो आप वो एक अलग ही सीख होती है और वो आपके साथ ज़िंदगी भर बरकरार रहती है। तो उसके लिए मैं अपने जवानों का और अपने जो सरदार थे उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और उनके साथ में मैं आज भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम उनसे मिलते हैं।
1: जी यही ख़ास बात है हमारी भारतीय सेना की कि वो हर मंजर के लिए हमेशा तैयार रहती है और अपने सैनिकों को सिपाहियों को ऑफिसर्स को इसी तरह से तैयार करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हालात कैसे भी क्यों ना हो तुम्हें डटे रहना है टिके रहना है और हर जंग में फतेह हासिल करनी है।
2: कांधे पे सूरज

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। हम कहते हैं ये कि हम में वो जज्बा है, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम हर जंग में फतेह हासिल कर सकते हैं, पर सच मानिए ये जज्बा भी हमें हमारे सिपाहियों, हमारे सोल्जर्स, हमारी भारतीय सेना से मिलता है और जिसकी जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मेजर जनरल अशोक कुमार। जी अशोक जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि जब हम सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, खासतौर पर जब आपने सर्विसेज ज्वाइन की, उससे पहले ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर नियुक्त किया गया, आपको पोस्टिंग दी गई, लेकिन इंजीनियरिंग, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियर आप रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ही इस विभाग को ही आपने चुना या फोर्सेज ने आपके लिए इस विभाग को चुना, किस तरह थी ये प्रक्रिया?
1: सो ट्रेनिंग के दौरान आपकी क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको मौका दिया जाता है कि आप किस संस्था में या इन्फेंट्री में, आर्टलरी में या इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप जो तकनीकी ब्रांचेस हैं जिसमें इंजीनियर्स, ईएमई, सिग्नल्स आते हैं, इनमें आप जा सकते हैं, बाकायदा कि आपने बीएससी बैकग्राउंड किया हो और आपके पास वो

0: डिग्री हासिल हो। सो हमारे पास में विकल्प था कि हम इंजीनियर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उन दिनों में इसमें काफ़ी कंपटीशन था, लोग काफ़ी जाना चाहते थे। तो हमारे कोर्स के दौरान हमारे 28 वैकेंसियां थीं और हम तकरीबन 200 लोग थे जिन्होंने इंजीनियर्स में ऑप्ट किया था। तो आपकी मेहनत के अलावा आपकी किस्मत भी थी, वो बैचेस में बनाते थे और हर बैच में 2 से 3 वैकेंसीज आती थी। सो आई वॉज़ लकी कि हमें जो मुझे ज़रूरत चाहिए था वो मिला, एंड खुशी का माहौल था जब आपने वॉर ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइन किया। ये एक ऐसा कोर है जिसमें आप लड़ाई के दौरान में सबसे पहले दुश्मन लड़ाई में जाते हैं और लड़ाई ख़त्म होने के बाद में सबसे आखिर में आप पूरा कार्य करके बाहर निकलते हैं।
1: जी
0: सो दिस इज़ एन एडवांटेज, एंड इसमें आपको पढ़ाई लिखाई काफ़ी करनी पड़ती है, जो कि एक आम धारणा है कि फ़ौज में जब बंदा जाता है तो इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बट एज इंजीनियर्स हमें ज़रूरत है कि हम इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करें, और अगर आपकी चेष्टा है तो आप आगे उसको फर्दर एग्ज़ाम दे के आप अपने मास्टर्स भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। सो कहना कि फ़ौज में जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई काफ़ी है, और आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनका उपयोग लड़ाई के दौरान भी आता है।
1: जी पढ़ाई का सिलसिला तो मुझे लगता है आपका बरकरार रहा। जैसे आपने खुद कहा, आपने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद एमटेक भी किया, एमफिल किया आपने मैनेजमेंट स्टडीज
0: जी
1: में।
0: हाँ,
1: ये सिलसिला जो था, ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा।
0: ये सिलसिला फ़ौज में रहते रहते बरकरार रहा। कई फ़ौज आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, कई सारे ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जिसमें आपने जद्दोजहद करके और अपने आप को उत्तीर्ण हासिल करना होता है। सबको मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। तो आई वॉज़ वन ऑफ दोज लकी वंस हु कुड मैनेज टू डू दीज कोर्सेज, एंड पढ़ाई भी कर पाए, और जिससे हमारे को अच्छी ख्याति हासिल हुई और हमारे प्रमोशंस में भी इसके काफ़ी काम आए।
1: बहुत खूब। अब बात की जाए मिलिट्री इंजीनियर की, मिलिट्री इंजीनियरिंग की, अक्सर हम यही सोचते हैं कि फौज का अर्थ है कि हमारे वो सेनानी, हमारे वीर, हमारे सैनिक जो मैदान जंग में जाते हैं, जंग लड़ते हैं और हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब भारतीय फौज की बात आती है और जब हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स हमारी सेनाओं को कैसे सशक्त करता है, क्या भूमिका रहती है इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर्स की?
0: आज का दौर आपने देखा होगा, जब प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी लड़ाइयाँ देश के बाहर में हो रही हैं और जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, तो तकनीकी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे फोर्सेस में भी इंजीनियरिंग का होना बहुत ही अहमियत रखता है, और कहते हैं कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का मायने हैं कि जब आप लड़ाई के दौरान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने फोर्सेस को मोबिलिटी प्रदान करते हैं और दुश्मन को मोबिलिटी डिनाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो अचीवेबल टारगेट है वो अचीव हो और दुश्मन को आपने टारगेट को अचीव करने में आप बाधा बने। सो आपने चाहे सुरंगें बिछानी हैं, चाहे आपने ब्रिजेस बनाने हैं, चाहे आपने नौका के ज़रिए नदी को पार करवाना है, उसमें बड़ा बड़ा जो असला है, सामान है, टैंक्स हैं, ये सब पार कराने और लाने और ले जाने की जिम्मेवारी कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी जाती है। साथ ही साथ जब दुश्मन दूसरी तरफ से हमला करता है तो उसमें माइने या सुरंग लगाने का कार्य भी इंजीनियर्स को दिया जाता है, जो कि हम अपनी सूझबूझ और हमारे सिखलाई के तरीके से करते हैं। इसी प्रकार जब दुश्मन की जो मोर्चा है उसको हम हासिल कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम रिकूप करके दोबारा से उसको इस्टेब्लिश करते हैं और जो हमारी टुकड़ियाँ हैं पीछे उनको सामने लाके फिर लड़ाई को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जब लड़ाई लगती है तो हम एयरफोर्स के साथ में भी मदद करते हैं, जब हमारे हवाई अड्डे होते हैं उनको बनाने में, या कोई नुकसान हो गया है उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने का काम भी हमारा है। सिमिलरली नेवी के जहाज़ों के लिए जो युद्ध पोत वगैरह हैं उसमें जो चीज़ें बनती हैं या कोई चीज़ बिगड़ गई है उसको भी ठीक करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार में लाने का और लड़ाई के लिए सशक्त बनाने का कार्य भी हम लोगों का होता है। सो काफ़ी काम होते हैं जो कि तभी हासिल हो सकते हैं जब आपने पीस दौरान में अच्छी पढ़ाई की हो, उसको अमल में लाए हों और देश के सुरक्षा कार्यों में उसकी आपने एक नीति बनाई है, जिसके कारण हम वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव।
1: जी, तो ना केवल भारतीय सेना को सशक्त करती है मिलिट्री इंजीनियर्स, बल्कि

0: आम जनमानस के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही सार्थक साबित होती है. यू आर हेल्पफुल टू द एंटायर नेशन इन डिफरेंट वेज. तो किन किन तरीकों से हमारे मिलिट्री इंजीनियर जो है देश के लिए
1: जब
0: कार्य
1: कहीं
0: करते हैं?
1: देश पर आपदा आती है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं लैंडस्लाइड्स आ गए, तो उसमें जब रेस्क्यू मिशंस होते हैं तो उसमें भी हमारे इंजीनियर्स का काफ़ी काम होता है। जब हमें दुर्गम इलाकों में हम जाते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल्स में उनको लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हम भारत की जनता के प्रति या बाहर के देशों में हम जो भी फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें वो टाइम से दें, ताकि इंसान को इंसान की जो ज़रूरत महसूस होनी चाहिए उसमें हम एक भागीदार बन सकें।
0: जी, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा हमारे ऑफिसर्स के लिए कि वो निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है इंजीनियर्स को इंजीनियर्स बनाने में. ऐसे में मिलिट्री इंजीनियर्स भी उनकी लगातार अपने सर्विसेज दौरान ट्रेनिंग चलती होंगी,
1: हाँ
0: ट्रेनिंग्स
1: जी
0: का हिस्सा बनकर वो अपने आप को सशक्त करते हैं कहीं ना कहीं कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ नया किया जा सकता है. तो आपके साथ भी लगातार ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी रहा
1: ये
0: होगा.
1: सिलसिला हमेशा जारी रहता है, बिकॉज देश में इतने विकल्प हैं कि आप सोचते हैं कि आप ही कर रहे हैं। आपने लड़ाई है अपने एक दुश्मन से जीतनी है, और वो भी अपने तरफ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी तकनीक के द्वारा कोशिश में रहता है कि आपसे अच्छा आ सके। जब तक आप उसकी सोच को विफल नहीं कर पाएंगे, और वो होगा जब तकनीक में आप बकाया आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और उससे बेटर हासिल करेंगे, तभी आप जंग को जीत पाएंगे। सो आने वाले समय का जो दौर है वो एक फिजिकल लड़ाई है और एक है जो तकनीक के द्वारा जीते वाली जाने वाली लड़ाई है। और हम देख रहे हैं कि आज बाहर के देशों में, चाहे वो ईरान की लड़ाई चल रही हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, उसमें छोटे छोटे देश भी अपनी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए कितनी बहादुरी से और दिमाग से लड़ने की कोशिश जारी है। तो वो शायद चीज़ें हमें भी हासिल करने की ज़रूरत है, हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं।
0: जी, तो 100 बातों की एक बात कि एक सोल्जर को मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ता
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: अगर उसे जीत हासिल करनी है, चाहे वो मैदान की जंग में हो या फिर हमारे सिविलियंस की जिंदगियों की बात क्यों ना हो. हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा मुस्तैद हैं हमारे लिए. एक बात और यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने खुद बताया था कि आप एफर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत खुश हैं कि आपने इंडियन आर्मी के जरिए अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त किया. आपने ये भी कहा कि किस तरीके से मिलिट्री इंजीनियरिंग की जब बात होती है तो आप एयरफोर्स, नेवी, सबके लिए काम करते हैं. आपने भी ऐसा किया है,
1: बिल्कुल
0: सभी फोर्सेस के लिए आपने काम किया. उस वक्त खुशी तो बहुत हुई होगी. कहते हैं कि जीवन ना एक चक्र की तरह है, कभी कभी जहाँ छूटता है वहीं जिंदगी को ले
1: भाई,
0: आता है.
1: बिल्कुल
0: तो जब
1: आप सही कह रहे हैं, बिकॉज यू नो एक व्हेन यू आर यंग आप कोशिश करते हैं कि आप वहीं जाना चाहें जहां पर आपकी यू you नो know, आप जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार भगवान के तरीके अलग होते हैं। तो शायद वो यू नो मुझे पायलट बनाने से किसी तरह से वंचित किया, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल के दौरान में एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ खूब जमकर काम किया, और एक ऐसी फीलिंग आई कि हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं। चाहे हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई कार्य हो या कहीं भी हो, तो एयरफोर्स की सुविधाएं हमें मिलती थी, और अच्छा लगता था जब हम उनके जहाज़ों में बैठकर दूर दराज के क्षेत्रों में देखते थे कि भाई कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है इंजीनियरिंग की, जिससे उनको सहूलियत मिलेगी और हमारे जो देश के सिपाही हैं उनके कार्यशैली में एक क्षमता बढ़ेगी, जिससे जिसका हमें काफ़ी गर्व है। तो हमने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े रनवे बनवाए, टैक्सी ट्रैक्स बनवाए, एयरपोर्ट्स हवाई जहाज की जो सुविधाएँ हैं वो काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाई, जिनकी वजह से आज हमारी सेनाएं वो सब हासिल कर पा रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है।
0: एक बात और, क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है? क्योंकि कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में किसी को भी पहले से नहीं पता होता है, लेकिन एक मिलिट्री पर्सन के लिए, एक इंजीनियर के लिए, खासतौर पर मिलिट्री इंजीनियर के लिए, क्योंकि वो सशक्त कर रहा है फोर्सेस को, उसके लिए अनफोर्सीन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कुछ नया इजाद करना कितना महत्वपूर्ण होता है?
1: बहुत दुरुस्त आपने सवाल किया, और ये चीज़ें बहुत ही कारगर हासिल होती हैं जब आप अपनी इंजीनियरिंग के यू नो ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ का एहतियात करते हैं जिससे हमारे पूरे फोर्सेस को एक अच्छा मौका मिलता है, और जो कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो कभी हमने सोचे नहीं थे, हमें जब ऐसे टास्क मिले तो क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग की नॉलेज और हमारे जो लोगों ने हमें सिखाया वो इतनी कामयाब हुई कि हमें खुद सोचकर अच्छा लगा कि हमने सही किया, जो चीज़ें हमने सीखी और हम अपने

0: देश के काम आ सके।
1: जी, सबसे बड़ा जज्बा तो एक फौजी के लिए यही होता है कि वो अपने देश के लिए काम कर रहा है, अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपने देश प्रेम से, और शायद इस सुख से बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जीवन के 40 वर्ष आपने भारतीय सेना को दिए हैं, तो जब पीछे अतीत के पन्ने पलट कर देखते होंगे, बहुत सारी बातों को याद करते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना एक सुखद सांस, उसको आप रोज भरते होंगे और अपने कार्यकाल को जो आपने जिया है उसे ज़रूर याद करते होंगे।
0: नहीं, अच्छा लगता है, बिकॉज़ जो आपकी बचपन की उम्मीदें थीं और आप अपने देश के

0: भाग्य मिला कि हम काफ़ी नज़दीकी से अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, काफ़ी कुछ कर पाए। काफ़ी वर्क इन प्रोग्रेस है जो आने वाली जनरेशन से वो करेंगी, बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारी सिखलाई है, जो हमें बताया जाता है कि देश के लिए तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो है नाम, नमक और निशान।
1: वाह, क्या बात
0: नाम
1: है।
0: है आपकी अपनी पलटन का, आपके अपने जिस यूनिट में आप काम करते हैं, रेजिमेंट हैं, और उसको आप कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। एक सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ता है कि उसके किसी भी कृत्य से उस गौरवशाली नाम पर कोई आँच ना आ जाए। फिर वो नमक की बात करता है, जब जहाँ पर वफादारी और कर्तव्य निष्ठता काम आती है, और जिस चीज़ जो नमक आप खाते हो उसका यह विश्वास का वह बंधन है जो सैनिक को वर्दी, कमान और अपने साथियों से कभी विश्वासघात ना करने की प्रेरणा देता है। निशान हमारे झंडे की बात होती है, यहाँ राष्ट्रीय तिरंगे रेजिमेंट के अपने झंडे और उसके इंसिग्निया का प्रतिनिधित्व करता है। निशान को हमेशा ऊंचा रखना देश के लिए एक संप्रभुता और रेजिमेंट के युद्ध समान, जो जिसको हम बैटल ऑनर्स बोलते हैं, कि रक्षा का एक संकल्प है जो कि हमारे रग रग में भर दिया जाता है। और यह एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके काम आती है, चाहे वो पीस स्टेशन हो चाहे युद्ध का क्षेत्र हो। तो तीन चीज़ें हमेशा याद करें, नाम, नमक और निशान।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई संदेश भेजना चाहते हैं संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम में, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 9868107070 इस नंबर पर। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से आपको नवाजा गया है आपके योगदान के लिए, और जिस तरह से आपने 40 वर्षों तक अपना योगदान दिया, आपके लिए सुखद पल बहुत सारे ने आपने अर्जित किए और आप भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार, AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से आप अलंकृत हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार, आपसे जानना चाहते हैं कि हम जीवन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमेशा चाहता है कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। आप भी सेना में रहते हुए अलग अलग पोजिशंस पर आगे बढ़ते गए, और कहते हैं कि जब आप ओहदे में आगे बढ़ते रहते हैं, आपको हाईएस्ट पोजीशंस मिलती हैं, तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे आपने कार्य किए, लेकिन इन सब पोजीशंस में काम करने के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज़ थी जो हमेशा एक जैसी रही और साथ चली 40 वर्षों, क्या वो एक ऐसी फीलिंग थी, क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा? भले ही ओहदा बढ़ता गया, जिम्मेदारी बढ़ती गई, लेकिन वो फीलिंग जब ज्वाइन किया था फोर्सेस तब भी वैसी थी, और जब फोर्सेस छोड़ी तो आज भी वो बात जिंदा है, आपके दिल में पेवस्ट है।
1: जब आप किसी भी महकमे में जाते हैं, करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एहसास है वो, खासकर जो फौज का महकमा है, वो एक आपको ऐसी उम्मीद देता है कि ये आप इसी को बिलोंग करते हो और इसी में आप बसते हो, और वो जो चीज़ है वो आज भी ऐसा लगता है कि आप आज भी फौज में हैं। भले ही वर्दी नहीं पहनी है, लेकिन एक एहसास होता है कि मैं इसी में जिया हूँ और मैं इसी में मरना चाहता हूँ। दूसरा जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें लगता है फौज से, एटलीस्ट मुझे सीखने को मिला है, कि आप जब से फौज में आते हैं और जाते हैं, हमेशा ये सीखने को मिला कि आप अपने जो, जिनकी वजह से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओहदे के अधिकारी हैं, बट जो जवान हैं, जो सबसे नीचे वाला तबका है, जो आपकी तरफ देखता है कि ये हमारा साहब है, और बिना कुछ कहे आपस में हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, वो एक ऐसी उम्मीद रखता है जिसमें आप बिना बताए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो चाहे अदरवाइज़ हो, आप उनकी उम्मीदों पे अगर खरे उतरेंगे तो आप वास्तविकता में आपने अपने जीवन को कुछ कर दिखाया है। और वो उम्मीद बिना बताए, बिना बोले हुए अगर आप कर पाते हैं और उसको साथ में लेकर चल सकते हैं, तो वो एक ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। कई बारी आपके जवान आपके लिए इतना कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो शायद आप उसे भूल ना पाएँ, एक ऐसा कुछ उसकी उम्मीदों पे खरे उतरें, तो वो आपको ज़िंदगी भर याद करता है। और आज भी हमारे जो सैनिक हैं, जो रिटायर हो गए, उनसे जब बातचीत होती है तो हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा और उन्होंने हमें क्या सीख दी। एक छोटा सा उदाहरण था, जब मैं फ़ौज में गया तो पहाड़ों के इलाके में थे, हमारी पास गाड़ियाँ थीं, तो हमने गाड़ी चलानी अपने एक सिपाही से सीखी। उसने हमें कोशिश की कि जो ट्रेनिंग है वो दे पाए, और गाड़ी चलते समय पहाड़ के स्लोप पर रुक गई, तो उसका नाम

0: मुझे याद है आज भी सिपाही ओम प्रकाश हुआ करता था, और वो गाड़ी रुकने के बाद में वो बाहर निकला, और उन दिनों में हैंडल मार के गाड़ी को स्टार्ट करते थे, वो गाड़ी इतनी ज़ोर से हैंडल लगा कि गाड़ी उछल के और नीचे रोल होनी शुरू हो गई। तो हमने एक नाले के साइड में गाड़ी उल्टी होके चारों पहिए ऊपर और गाड़ी पलट गई। तो ओम प्रकाश का पहला वाक्य था कि लेफ्टिनेंट साहब आप घबराइए ना, हम ये जिम्मा अपने सर पर लेंगे। हमने कहा ओम प्रकाश ऐसा नहीं होगा, ये गाड़ी हमारी वजह से गिरी है तो हम जिम्मेवार हैं, तुम बस ये करो कि वहाँ से जाके कोई हेल्प लेके आओ। तो वो हादसा एक ऐसा हादसा था जहाँ पर आपका सिपाही आपके लिए आपको आँच नहीं आने देता है और कोशिश करता है कि मेरा जो साहब है वो हमेशा सर्वोपरि रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आप सीखते हो कि यदि आपने ऐसे दौरान में आप उनके साथ में खड़े हो, ज़िंदगी भर उन चीज़ों को याद रखता है। और आज भी जब हम पुरानी चीज़ें बातें याद करते हैं तो बताते हैं कि साहब आपने हमारे लिए ऐसे किया था, भले ही वो कुछ अपना प्रमोशन नहीं मांगता है या अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांगता है, लेकिन जो उसकी सच्चाई है और उसका जो काम करने का तरीका है वो उसके साथ में आप ज़िंदगी के कुछ ऐसे उसूल सीखते हैं जो आपके दिल को हमेशा छू जाते हैं, और आप समझते हैं कि एक सबसे बड़ा जो आदर है वो एक इंसान का इंसान के प्रति प्यार और उसकी एक ऐसी गरिमा है जिसको अगर आप बरकरार रखें तो वो ज़िंदगी भर आपके शायद काम आती है, भले ही उस मोमेंट में आप शायद कुछ मिस कर जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें आपको सोच के अच्छा लगता है। एंड उन्हीं उम्मीदों के साथ में हम जीते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन्स को भी ऐसा ही कुछ सिखा पाएं।
1: जी पहुँच के एक ख़ास बात मुझे ये लगी कि जब जैसे जब जब भी हम इस प्रोग्राम में संदेश टू सोल्जर्स में आप जैसे ऑफिसर से बात करते हैं कि फौज में कोई अकेला नहीं है, हमेशा किसी हर किसी के साथ हर कोई है, ऐसा नहीं एक है, हर किसी के साथ हर कोई है। और ऐसे में जब अपने परिवार से दूर है तो आपको लगता है कि मेरा कौन सा ऐसा काम था जो मुझे पता नहीं लगा और वो हो भी गया, तो
0: बिल्कुल,
1: शायद एक
0: हाँ
1: बड़ी खूबसूरत बात
0: हाँ
1: है फौज
0: खूबसूरत
1: की।
0: चीज़ है। और आप जब आप आगे सरहद पर अकेले रहते हैं, अकेले मतलब आप अपने फैमिली से परिवार से दूर होते हैं, आपके जो जवान हैं वो आपको ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं जब आपको महसूस नहीं होते, और ऐसा महसूस होता है कि आपके परिवार के लोग आपके साथ में बकाया हैं, वो आपका उतना ध्यान रखता है, शायद आपका परिवार भी उस मंजर में शायद इतना ध्यान ना रखे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब बिन बनकर आप एक साथ सोचते हैं तो वाकई एक परिवार का एहसास होता है। और एक फ़ौज में जो सबसे अच्छी सिखलाई है कि आप लास्ट मैन, यू हैव टू टच ग्राउंड विद द लास्ट मैन ऑन ऑन ऑन द फील्ड, यू कांट लीव एनी वन बिहाइंड। लड़ाई के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, आपका जवान क्षतिग्रस्त होता है, जब तक हम उसको निकाल कर सुरक्षित जगह पर नहीं लाते हैं हम अपना कार्य का शैली को सफल नहीं समझते हैं। और कई हमारे ऐसे कोर्सेज और ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ हमने एक टुकड़ी के साथ में एक जीत हासिल करनी है, अगर उसमें आप समय से पहले आ गए लेकिन एक बंदा आपका अभी तक पीछे है, जब तक वो शामिल नहीं होगा आपकी जीत जीत नहीं मानी जाएगी। सो ये एक ऐसी मंजर है जिसको हम सीखते हैं। उसके अलावा जब कोई हमें कलेक्टिव टास्क मिलता है और हम में से कोई बंदा नहीं कर पाता है तो उसको भी जब तक हम साथ में लेकर उस जीत को हासिल ना करें वो जीत जीत नहीं मानी जाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ना केवल कृतज्ञता हम फौज से सीखते हैं, हम टीम स्पिरिट एकता भी हम फौज से ही सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे युवा ये कहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी माता पिता हैं वो गर्व से उनका सीना पहले ही चौड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि हमारा बच्चा फौज में जाना चाहता है। और यही फौज की खूबसूरत बात है कि वो सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और हर युवा यही चाहता है कि मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता अपना प्रेम सेनाओं को सेनाओं में भर्ती होकर दिखाऊं। तो ये जग आपके लिए है, सेनाएं आपके लिए हैं, अब आप उसे कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।

0: संदेश टू सोल्जर्स आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। एक सिपाही के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, लेकिन जब उसके कार्य को, उसकी जिम्मेदारियों को, उसकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया जाता है तो उसके लिए सबसे सुखद पल होता है। आपके लिए भी बहुत सुखद रहा होगा, ये भी कह सकते हैं कि आपने जिस चीज़ का इंतज़ार किया वो आपके आपके शोल्डर्स पर थी, आपकी ड्रेस पर थी, आपकी यूनिफॉर्म पर थी। अति विशिष्ट सेवा मेडल जिससे आपको नवाजा गया आपके सर्विसेज के लिए, आपके योगदान के लिए, तो उस वक्त वो जो पल होता है, वो पल आपको क्या क्या याद दिलाता है? क्या आप अतीत में चले जाते हैं या सिर्फ याद करते हैं कि आज ये जो पल है, ये पल इस वजह से आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आपने बस अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखा था, इसलिए हुआ।
1: इंसान की एक फितरत है कि वो जब भी कोई काम करता है तो वो एक अवार्ड और रिवॉर्ड सोचता है। कई बारी वो अवार्ड शायद उसे तब नहीं मिलता जब वो मोस्ट हम्बली उसको डिज़र्व करता है। कई बारी अवार्ड जो हैं वो ऐसे वक्त पर मिलते हैं जब आपके अंतिम चरण में आप इतना कुछ काम करके गवर्नमेंट आपको रिकग्नाइज़ करती है तो एक अच्छी फीलिंग आती है। इंसान इस दुनिया में जीता है कुछ कारणों से, जिनमें से वो उम्मीद करता है कि उसके काम किए गए कार्यों का एक एक उसको शाबाशी दी जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, लेकिन जब मिलती है तो एक अच्छा एहसास होता है। और मोर देन आपके अपने लिए, वो एक एहसास आपके बच्चे जो आपके साथ में आप

0: वहाँ तक पहुँचाने में जिनका गौरव रहा है, आपके पिताजी, आपके माता, जो जिन्होंने आपको बड़े होते हुए देखा, और उम्मीद करते हैं कि उनका उनके बेटे को कुछ ऐसा अवार्ड मिला जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, तो एक काफ़ी गौरव और गर्व की बात होती है। सो जैसे हम कहते हैं कि रिसीविंग द मेडल वॉज अ डीपली हम्बलिंग रिकॉग्निशन एंड ऑनर इज़ नेवर अ रेस्टिंग पॉइंट, इट इज़ अ रीअफर्मेशन ऑफ द ट्रस्ट दैट पीपल हैव इन यू, चाहे वो आपके जवान हों, चाहे आपके बच्चे हों, आपके माता पिता हों, आपके रिश्तेदार हों, सबको एक उम्मीद रहती है। और इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द डेडिकेटेड सोल्जर्स एंड द टीम्स हुज कलेक्टिव एफर्ट मेड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। तो सभी का इसमें एक विश्वास था, एक ऐसी कोशिश थी कि सब ने मिलकर आपको उस पैगाम तक पहुँचाया जिसका आप खुद जिम्मेवार तो थे, लेकिन आपके पीछे जो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। एंड द अवार्ड रीइंफोर्स्ड माय कमिटमेंट टू कंटिन्यूस ड्यूटी इंश्योरिंग दैट एवरी सब्सिक्वेंट डिसीजन प्लान एंड मेंटरशिप एफर्ट रिफ्लेक्टेड द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ द अवार्ड दैट आई गॉट। सो माय सिंसियर थैंक्स टू एवरीवन हु ओवर द इयर्स वाज देयर विद मी इन गेटिंग एंड अचीविंग व्हाट आई फाइनली अचीव्ड।
1: जी बहुत खूब, बहुत खूब। ग्रैटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी जीने का सलीका इस बात से पता लगता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं। और आपकी कृतज्ञता फोर्सेस की तरफ, अपने अवार्ड्स की तरफ, और आपने जितने भी कार्य किए हैं आज तक उनकी तरफ आज इस शो के माध्यम से हमें सुनाई दी, और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी प्रेरणा आपसे मिली। एक व्यक्ति जिसका जिक्र ना हमने अभी तक नहीं किया, या बेटर हाफ, शायद उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, क्योंकि कहते हैं कि एक ऑफिसर को ऑफिसर एक माता पिता बनाते हैं, उसके अंदर वो संस्कार उसमें जीवंत रखते हैं, हमेशा उनके साथ भी उनके बाद भी हमेशा रहते हैं, लेकिन स्पाउस उन्हीं संस्कारों को आगे लेकर चलती है। आपके पीछे बहुत बार उन्होंने घर को संभाला होगा, कंप्लेन भी नहीं की होगी, लेकिन इससे पहले ये मुझे बताइए कि आप उनसे मिले कैसे थे।
0: आपने एक अच्छा सवाल पूछा। Behind every successful man there is a woman, and undoubtedly it has been my wife whose name is Preeti. और जो good part है वो ये है कि हमारे जो दोनों के parents थे वो फौज में coastmates थे, जो navy में साथ में आए, और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, और भाग्यशाली रहे कि हम आपस में हमारी शादी हुई और हमने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जिया। और जो भी मैंने हासिल किया उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मेरी बेटर हाफ प्रीति का था, एंड शी इज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर वॉट एवर आई एम टुडे, एंड माय चिल्ड्रन हु निहारिका एंड आर्यन हु बीन वंडरफुल एंड दे स्टूड लाइक रॉक बिहाइंड मी इन एवरी गुड और बैड पैटर्न्स ऑफ लाइफ, एंड इन द एंड इट वॉज एन अचीवमेंट विच आई कांट थैंक लेस टू दीज पीपल। And Preeti is now remains my biggest critic, but the kind of lessons that she's given me is something which is which I won't have done on my own, and main shukrgizar hu ki mujhe bhagwan ne achhi bacche diye, achhi patni di, maa baap parents ne jo hausla diya jiski wajah se main yahan tak pahuncha, aur ye apne aap mein ek achievement hai जो हर माँ बाप अपने बच्चे में देखता है, हर वाइफ हर हस्बैंड अपनी वाइफ में देखता है, और अपने बच्चों को आँख में आँख मिलाकर उम्मीद करता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज यहाँ तक पहुँच पाए।
1: बहुत खूब। और एक ग्रैटिट्यूड हमारी तरफ से तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं और आपको सल्यूट कर रहे हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जय हिंद यहाँ पर लिखकर भेजा है। बीके दत्त कॉलोनी से शबनम ने, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से प्यार देते हैं हमारे फौजियों को काबिले तारीफ है। संदेश यहाँ पर भेजा है नुसरत अली ने, और संदेश हमें हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भी आया है जोया का, और ये आपके करेज को सलाम कर रही हैं, सलाम कर रहे हैं यहाँ पे आहिल अली बीकानेर से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। यश शिंदे ने हमें संदेश भेजा है मुंबई से, और संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं। ये हैं धारा शिव महाराष्ट्र से, यशवंत इनका नाम है, और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद इद्रिस ने संदेश भेजा है, और संदेश भेजने वाले बहुत से दोस्त हैं। कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम अलग सेशन आपके लिए ज़रूर आयोजित करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश से अजय का हमारे पास संदेश आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का, हम धन्यवाद।

0: देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। मैं बस एक बात कहूंगी, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, बट वंस अ मिलिट्री इंजीनियर इज ऑल्सो अ मिलिट्री इंजीनियर फॉर एवर। ये बात सच है ना?
1: बिल्कुल दुरुस्त है।
0: और इसीलिए इन्होंने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है और ये कहेंगे कि इनकी इंजीनियरिंग आज तक कायम है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कहाँ कैसे इन्होंने आपके लिए आपका कोई सपना साकार कर दिया। अगर मन में ये बात आए तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं हमारे ये जो फौजी हैं, फौज में रहकर भी और फौज के बाद भी आपके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। अब ये एक नगमा FM रेनबो की तरफ से, हम FM रेनबो का क्रेडिट ले रहे हैं, हम प्रीति मैम को ये डेडिकेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद,
0: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आवारापन फिल्म के गाने के साथ, जिसे गाया है सुजैन ने। गीत सईद कादरी का है और संगीत है प्रीतम का।

हेलो ब्रदर, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत सुधाकर शर्मा का है, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं कुर्बान फिल्म का गाना, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीत निरंजन अयंगर का है और संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: प्रस्तुत है

0: हेलो दोस्तों। तो भाई की हाल चाल?
1: उम्मीद है कि आपका आज का दिन अच्छा गया होगा। और जब दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम कर रहा है, तो सोचा क्यों ना कुछ पल आपके साथ बिताया जाए।
0: बिल्कुल। और वैसे भी आजकल मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है, कभी बादल, कभी हल्की धूप और कभी बारिश। और भैया ऐसे मौसम में अगर साथ में एक कप चाय मिल जाए तो फिर क्या ही कहने।
1: सही कहा तुमने सेजल। और इसी फ्रेश इवनिंग मूड के साथ आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है युवानी के एक नए एपिसोड में, जहां मैं आपके साथ पूजा।
0: और मैं हूँ सेजल। वैसे पूजा, आजकल मौसम को देखो तो एक बात समझ आती है, पूछो क्या
1: क्या चीज
0: ये कि नेचर कभी भी एक जैसा नहीं रहता है।
1: वैसे सेजल, अगर मैं नहीं पूछती तो तुम क्या नहीं बताती?
0: नहीं बताती फिर भी।
1: ठीक है। वैसे सेजल, तुमने कभी नोटिस किया है कि नेचर को देखते देखते हम अपनी लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ समझ लेते हैं, और शायद इसलिए नेचर और लाइफ में काफी कुछ कॉमन है।
0: यू आर राइट, बिकॉज फ्रेंड्स नेचर ऑल्सो टीचर्स द आर्ट ऑफ लिविंग। All we need to do is look a little closer, and every leaf, every breeze, and every changing season has something to teach us. और दोस्तों सच कहूँ तो नेचर हमारी सबसे पुरानी टीचर है। बस फर्क इतना है कि ये टीचर कोई बुक्स लेकर हमारे सामने नहीं आती, ये तो कभी हवा के झोंकों से समझाती है, कभी बारिश की बूंदों से, तो कभी बादलों के मौसम बदलते हुए मौसम से।
1: जरा हमें अगर एक पेड़ को देखें तो वो अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन मौसम के साथ वो खुद को बदलना जानता है। जब गर्मी आती है तो धूप सहता है, जब बारिश आती है तो वो बूंदों को अपनाता है, यहाँ तक कि जब पतझड़ भी आते हैं तो पुरानी पत्तियों को छोड़कर फिर कुछ समय बाद नई पत्तियों के साथ वो खुद को दोबारा खेल उठता है कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जैसा भी है।
0: एग्जैक्टली। हमारी लाइफ में भी तो अलग अलग सीजन्स आते हैं, कभी सब कुछ परफेक्ट लगता है तो कभी चीजें बदल जाती हैं, कभी रास्ता आसान लगता है और कभी छोटी सी चीज भी चैलेंज बन जाती है। लेकिन नेचर हमें एक बहुत सिंपल लेसन देती है कि नथिंग स्टेज द सेम फॉर एवर, यानी हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, एवरीथिंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
1: और सेजल, अगर हम रिवर्स को देखें तो रास्ते में अगर पत्थर भी आते हैं तो वो मोड़ वो रुकता नहीं है कभी भी, वो बदल जाता है। तो
0: बिल्कुल।
1: रास्ता कितना भी मुश्किल हो हमें रुकना नहीं चाहिए। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं नेचर और लाइफ, तो डेफिनेटली इट्स सो कनेक्टेड विद ईच अदर, तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे हमने धूप पर बात की, अब रिवर्स पर बात कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है।
0: हाँ, और बात तुमने धूप की तो भाई सूरज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। भाई शाम को डूब जाता है लेकिन अगली सुबह वो फिर लौट आता है, तो इट मींस कि लाइफ में भी बैड फेज आते जाते रहते हैं, बट हमें रुकना नहीं चाहिए। और वैसे भी पूजा, एक खराब दिन मुझे नहीं लगता है लाइफ खराब कर सकता है।
1: बिल्कुल। और नेचर की खूबसूरती के साथ साथ उसके जो चैलेंजिंग फेजेस हैं, जो चेंजिंग फेजेस हैं, हमें उसे भी समझना चाहिए, वो उतना ही जरूरी है। हाल ही में नेपाल में आई बाढ़ ने हमें नेचर की एनर्जी और उसको लेकर हमें किस तरह से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, हमें सीखने को मिलता है।
0: बिल्कुल। और क्योंकि नेचर को हम पूरी तरह कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये तो तय कर सकते हैं ना कि हम उसका यूज़ कैसे करें, उसके रिसोर्सेज को हम कितनी समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वेस्ट भी ना हो, है ना। और क्योंकि नेचर ने हमें तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग में लाइट ऑन करने से लेकर मोबाइल चार्जिंग तक हो, पढ़ाई करना हो, ट्रैवल करने तक, या हमारे डेली लाइफ में हर जगह एनर्जी की तो नीड होती है।
1: बिल्कुल। और हमारी नीड के अकॉर्डिंग एनर्जी को डिमांड भी कहीं ना कहीं उसकी बढ़ रही है।
0: बिल्कुल।
1: अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए, बल्कि इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम किस एनर्जी का यूज किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हम कई सारी एनर्जी रिसोर्सेज को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो आई थिंक हमें वो नहीं लेना चाहिए।
0: और इसके साथ ही हम उसके साथ कैसे उस पे ऊपर, मतलब उसको हम कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। क्योंकि नेचर सिर्फ नेचर डजंट शो अस हाउ ब्यूटीफुल लाइफ कैन बी, ये हमें ये नहीं दिखाता है कि लाइफ कितनी अच्छी है, ये भी बताता है कि हम उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों

0: सो वेलकम बैक दोस्तों। आई होप इस यू-टर्न ने आपके मूड को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया होगा।
1: लेकिन सेजल, अब बढ़ते हैं अपनी चर्चा के विषय पर, और आज का हमारा चर्चा का विषय है ऊर्जा के अन्य विकल्पों को अपनाएं, यानी अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
0: और मुझे लगता है अल्टरनेटिव एनर्जी की बात आज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में एनर्जी का यूज तो खूब करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये एनर्जी आखिर आती कहाँ से है?
1: सही कहा, लंबे समय से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स हमारी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा पूरा करते आए, लेकिन ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं हैं। इनके इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी होता है जो क्लाइमेट चेंज की समस्या को बढ़ाने में भी योगदान देता है। इसलिए हमें ऐसी एनर्जी सोर्सेज की नीड है जो रिन्यूएबल हो, यानी जो हम फिर से जनरेट कर सकें।
0: और अब सबसे पहले बात करते हैं उस एनर्जी की जो हमें डेली मिलता है, यानी कि सनलाइट। और आज हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से उससे इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया, इसलिए सोलर एनर्जी आज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज में से सबसे इम्पॉर्टेंट है। घरों की छत पर लगे सोलर पैनल्स सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि सनलाइट एक रिन्यूएबल सोर्स है। और ये भी अच्छा है कि इफ़ वेदर क्लाउडी है या रात में सनलाइट तो अवेलेबल नहीं है, तब आप सोलर पैनल में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और फिर इन फ्यूचर उसका यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन उसकी पावर से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, और हम इस हवा की काइनेटिक एनर्जी का यूज करके विंड टर्बाइंस के जरिए बिजली पैदा कर सकते हैं।
0: और बड़े बड़े विंड टर्बाइंस को तो आपने पिक्चर में देखा ही होगा। और जब हवा टर्बाइन के ब्लेड्स को घुमाती है तो जनरेटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी हवा सिर्फ मौसम नहीं एनर्जी भी डेवलप कर सकती है।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
3: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
4: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
5: अनक्लेम डिपॉजिट मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
4: RBI कहता है जानकार बनिए,
5: सतर्क रहिए।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर
6: तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। वैसे पूजा, हमारी जिंदगी में पानी की इम्पोर्टेंस तो हम जानते ही हैं, लेकिन पानी क्या सिर्फ खेती और हमारी डेली लाइफ के लिए ही जरूरी नहीं है। बहते हुए पानी को एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। इसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए पानी की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है दोस्तों कि हर रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल प्लानिंग के साथ होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या का

0: इन्वायरमेंट और लोकल कम्युनिटीज पर भी असर हो सकता है। इसलिए सिर्फ एनर्जी पैदा करना ही हमारा गोल नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी को यूज करना भी उतना ही जरूरी है।
1: और अब आते हैं एक ऐसे ऑप्शन पर जो थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, वो है बायोमास एनर्जी। खेती से निकलने वाले कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लांट मटेरियल या अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी किया जा सकता है। यानी एग्रीकल्चर वेस्ट जैसी चीज़ों का सही तरीके से उपयोग करके एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। जिस चीज़ को हम वेस्ट समझ कर कभी कभी हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उसकी भी अपनी एक पोटेंशियल होती है। बस जरूरत है कि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। और अब समझते हैं कि धरती के अंदर भी हार्ट होता है। जी हाँ, धरती के भीतर मौजूद थर्मल एनर्जी का उपयोग कुछ जगहों पर बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, जियो थर्मल एनर्जी कहा जाता है। हालांकि इसका उपयोग हर जगह आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशंस पर काफी डिपेंड करता है ये।
0: हाँ, और पूजा, अब अगर हम अपनी अर्थ पर देखें तो लगभग 70% हिस्सा जो है वो कवर है ओशंस की। और अगर ओशंस की बात करें तो वहां भी एनर्जी की पॉसिबिलिटीज मौजूद है। समुद्र की वेव्स और टाइड से एनर्जी जनरेट करने की टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। इन्हें वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी कहा जाता है। मतलब हमारे नेचर के पास एनर्जी के ऑप्शंस की कमी नहीं है, शायद कमी हमारी अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने की है। तो दोस्तों, अब यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि अल्टरनेटिव एनर्जी अपनाने का मतलब ये नहीं है कि कल सुबह उठकर हर चीज बदल जाएगी।
1: बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर हम आज से सोचना शुरू करें तो आने वाले समय में बहुत बड़ा डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सीमित हैं। इनके इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज में काफी योगदान देते हैं।
0: हाँ, और पूजा, इसलिए रिन्यूएबल और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ना एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, सोलर पैनल तो मैं अभी खरीदने नहीं जा रहा, फिर मैं करूं क्या? तो भाई, शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। जब कमरे में कोई ना हो तो लाइट और फैन बंद कर दीजिए, दिन में नेचुरल लाइट का यूज कीजिए, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को प्रेफरेंस देना, जहां पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग या साइकिलिंग जैसे ऑप्शंस चुनना। अननेसेसरी चार्जिंग और स्टैंड बाय पावर कंजम्पशन को अवॉइड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट,
1: अवेयरनेस, एनर्जी को लेकर अवेयरनेस फैलाना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बदलाव सिर्फ बड़े पावर प्लांट्स या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से नहीं आएगा, बल्कि हमारी जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, अगर हम उनमें भी चेंजेस लाएं तो बहुत बड़ा चेंज हम देख सकते हैं।
0: और अब सवाल यहाँ ये आता है पूजा, कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी इतनी अच्छी है तो हम फिर पूरी तरह उस पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते हैं? तो भाई दोस्तों, क्योंकि ट्रांजिशन इतना सिंपल नहीं है। हर एनर्जी सोर्स की अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस है। सोलर और विंड वेदर पर डिपेंड कर सकते हैं। हाइड्रो पावर के लिए सुटेबल वाटर रिसोर्सेज चाहिए, बायोमास के लिए प्रॉपर कलेक्शन और प्रोसेसिंग सिस्टम चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जी को बड़े स्केल पर यूज करने के लिए स्टोरेज, ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। इसलिए सॉल्यूशन किसी एक सोर्स में नहीं है, हमें अलग अलग एनर्जी सोर्सेज का सही कॉम्बिनेशन और बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए।

17th सेंचुरी यूरोपियन रेनेसांस के टाइम जब इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन की वेव आगे बढ़ रही थी तब फ्रेंच फिलोसोफर मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट रेने डिकार्ट ने आइडिया की दुनिया में एक ऐसी रेवोल्यूशन की फाउंडेशन रखी जिसने नॉलेज पाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी और फाउंडर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है।

0: उन्होंने ह्यूमन माइंड को सुपरस्टिशन और अनक्वेश्चन डोगमा से फ्री करार के लॉजिक, डाउट और मैथमेटिकल कहीं ना कहीं उन्होंने ये रास्ता दिखाया।
1: उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें
0: तो उनका जन्म 31 मार्च 1596 को फ्रेंच में हुआ था और उन्होंने ज्यूइस कॉलेज से लॉ और फिलोसफी की स्टडी की। प्राइमरी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी वो क्लासिकल नॉलेज से अग्री नहीं करते थे क्योंकि ज़्यादातर बातें सिर्फ अजम्पशंस पर आधारित थी। उन्होंने सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ को लेकर बहुत इंकरेज किया।
1: इस डिसकंटेंटमेंट ने उन्हें ट्रुथ की रियल डिस्कवरी के लिए इंस्पायर किया। डेकार्ट का फिलोसफिकल थॉट इंडिस्प्यूटेबल ट्रुथ की डिस्कवरी पर फोकस था। उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी यानी कि थ्योरी ऑफ नॉलेज में ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट दिया,
0: जैसे कि मेथड ऑफ डाउट। अनडिनाइबल ट्रुथ तक पहुंचने के लिए उन्होंने साइंटिफिक डाउट का तरीका अपनाया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि अगर किसी भी बिलीफ में थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसे तब तक फॉल्स मानना चाहिए जब तक वो लॉजिक के स्केल पर फुली प्रूफ ना हो जाए। इवन वो सेंस को भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करते थे क्योंकि सेंस भी कभी कभी धोखा दे सकती है, जैसे कि ड्रीम्स में रियलिटी का फील होना।
1: एंड सेकेंड इज कोजीटो एर्गो सम। राइगरस डाउट करते करते डेकार्ट एक ऐसे एब्सोल्यूट टर्म पर पहुंचे जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। यानी अगर वो दुनिया की हर चीज पर डाउट कर सकते हैं तब भी वो इस फैक्ट पर डाउट नहीं कर सकते थे कि वो डाउट ही सही है। डाउट करना भी थिंकिंग का एक पार्ट है।
0: बिल्कुल सेजे, और थिंकिंग के लिए एक थिंकर का होना कंपलसरी है। और इसी रियलाइजेशन से उनका फेमस स्टेटमेंट निकला, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये थॉट, ये प्रिंसिपल मॉडर्न फिलोसफी का बेस बना जिसने एस्टैब्लिश किया ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड सेल्फ एग्जिस्टेंस को, कि नॉलेज का पहला रियल प्रूफ है।
1: और थर्ड बात करें माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म की। उन्होंने रियलिटी को दो मेन एलिमेंट में डिवाइड किया, एक माइंड कॉन्शियसनेस थिंकिंग एंटिटी जिसका कोई फिजिकल शेप या स्पेस नहीं होता, एंड सेकेंड इज मैटर और बॉडी यानी फिजिकल एंटिटी जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, फिजिकल लॉ से चलती है लेकिन सोच नहीं सकती। इस थ्योरी ने साइकोलॉजिकल फिलोसफी और न्यूरोसाइंस में एक बड़ी डिबेट को स्टार्ट किया। एंड लास्ट इज सबसे बड़ी मैथमेटिकल डिस्कवरी, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को यूनिफाई करनी थी। एक्स और वाई एक्सिस का यूज करके उन्होंने प्लेन पर किसी भी पॉइंट को न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करने का मेथड डेवलप किया जिसे एनालिटिकल ज्योमेट्री कहा गया।
0: 11 फरवरी 1650 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके आइडियाज आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितना अपने टाइम पे हुआ करते थे।
1: तो ये थे हमारे आज के प्रेरणापुंज के प्रेरणापुंज रेने डेकार्ट। तो करेंगे आपसे अभी है वैसे पूजा हमारे पास एक क्यूरियोसिटी वाला सेगमेंट, तो उससे पहले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब वक्त है उस सेगमेंट का जहां कल के सवाल का जवाब मिलता है और आज का सवाल आपके सामने आता है। तो सबसे पहले सेजल प्लीज मेंशन कल का सवाल क्या था।
4: विच पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्स? और दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रिटिश पार्लियामेंट।
3: और आज का प्रश्न है कि कौन सी नदी रोहतांग पास के निकट से निकलती है? आप इसका सही जवाब हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है
4: 8004926250 और आप अपना जवाब हमें अपनी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvniald@gmail.com। वैसे पूजा तुम्हें तो लगता नहीं है कि अब सितंबर आ गया, अब तो सारे एग्जाम्स का भी अपना मोड चालू हो गया होगा कि सारे एग्जाम्स अब होने वाले हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि लास्ट टाइम अगर हमारे पास कुछ दिन है तो हमें रिवीजन करना चाहिए या कुछ नया पढ़ना चाहिए?
3: ऑफ कोर्स रिवीजन करना चाहिए हमें, और सबसे जरूरी जो हम शायद भूल जाते हैं वो है राइटिंग की प्रैक्टिस। तो सबसे जरूरी है कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करिए।
4: हाँ, और ये राइटिंग की प्रैक्टिस से एक चीज ये भी रहता है ना कि हमें चीजें रिकॉल हो जाती हैं, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमें याद रहता है। और फिर अच्छा ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि तुमने कुछ चीजें पढ़ा हो और जब वो क्वेश्चन हो तो तुम्हारे दिमाग में वो पेज नंबर याद आ जाता है या वो क्या वो चीज हमने कल पढ़ा था, ऐसा जनरली होता है ना। तो दोस्तों वैसे भी अब तो एग्जाम्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आप रिवीजन कीजिए। लास्ट मिनट्स में हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो न्यू चैप्टर से हमें शायद अपना पुराना हम भूल जाएंगे। तो बेसिकली सिर्फ कहना है क्या मोटिव इतना है कि जो भी है सिर्फ अपना रिवीजन कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज आप रिवीजन वो आज आप करेंगे तो वो चीज़ कल भी आपके दिमाग में रहेगा, परसों भी। तो मौसम का मूड तो चाहे जैसे ही बदले, लेकिन आपके प्रिपरेशन का मूड यही होना चाहिए कि भाई आई एम गेटिंग रेडी।
3: So true. और सेजल, that's very great कि रिवीजन हमें जरूर करना चाहिए।
4: तो पूजा,

0: अब गड़ी भी कह रही है कि मेरा और तुम्हारा विदा लेने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी सेजल
1: और मुझे यानी पूजा को
0: दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे
1: मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। महिला 2020 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समय

0: अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे किसान चर्चा में किसान रामनाथ द्विवेदी से अरविंद कुमार की बातचीत। 6:50 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:31 पर भारत और हांगकांग के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और अब डालते हैं एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर। कल रात्रि 11:10 से आप सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का श्री द्वारिकाधीश मंदिर और श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा से सजीव प्रसारण, इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 6:20 पर सुनिएगा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा। कृषि जगत कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर दशरथ यादव से अनिल कुमार यादव की बातचीत, विषय होगा मृदा अपरदन का कृषि पर दुष्प्रभाव। सुबह 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता सुनिएगा बच्चों में निमोनिया कारण लक्षण और उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आपको सुनवाएंगे श्री संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन। दिन में 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे रमा शंकर का गायन और शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर होगा रेशमा श्रीवास्तव का सितार वादन। सुबह 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। 10:05 पर वॉयस ऑफ प्रयागराज के अंतर्गत कल आप सुनेंगे डॉक्टर मुकेश खरे से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का दूसरा भाग, विषय होगा नेत्रदान भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी। 10:30 पर सुनिएगा लोकगीत गायक कलाकार राम सुमेर यादव और साथी प्रतिमा मिश्रा और रजवंत सिंह पटेल और साथी। शाम 5 बजे नन्हे मुन्नू का कार्यक्रम होगा नन्ही दुनिया। युवाणी कार्यक्रम होता है शाम 5:15 पर। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर डॉक्टर विजय कुमार पांडे की वार्ता होगी कृष्णम वंदे जगद्गुरम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर सुनिएगा भूपेंद्र कुमार के स्वर में भजन और गीत। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा का समय होगा रात 9:30 और 10 बजे सुनिएगा नाटक मैं मर चुका हूँ, इसके लेखक हैं विपुल कृष्ण नागर। ये थी जानकारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ खास खास कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

अभी आपने सुना देश का आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयतां प्रवाचिका निधिः झाः आदौ मुख्याः वार्ताः भारत बेल्जियम देशयोः व्यापारो द्विगुणी भविष्यति प्रधानमन्त्रिणा मोदिना बेल्जियम मन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यनेन सह नवदेहल्यां विहिता शिखरवार्ता रक्षाक्षेत्रे नवीकरणीय ऊर्जायां च हस्ताक्षरंगताः प्रमुखाः सन्धयः रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन बेल्जियम मन्त्रिणा थियो फ्रेडकिन इत्यनेन सह क्षमता निर्माणाय कृता मन्त्रणा न्यूयॉर्क नगरे समायोजितायां गोष्ठ्यां वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितम् तया कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रे सूचना संग्रह केन्द्रेषु च भारते विद्यमानानां संभावनानां विवरणं प्रस्तुतम्

0: अपि च किदाम्बी श्रीकान्तः चीन मास्टर्स बैडमिंटन स्पर्धायाः अन्तिमाष्ट चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत बेल्जियम देशाभ्याम् अद्य रक्षा सहयोग विषयकेण आशयपत्रेण साकं नवीकरणीय ऊर्जा अन्ताराष्ट्रिय अपराध दमनम् राजनैतिक प्रशिक्षणं चेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहमति पत्राणि हस्ताक्षरितानि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यमुना सह द्वैपाक्षिकीं मंत्रणाम् अकरोत्। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक संबंधानां समग्र पक्षैः सह परस्पर हित संबद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयानां विशदतया समीक्षां विहितवन्तौ। स्वकीये वक्तव्ये प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् सम्पूर्णं विश्वं महतः विप्लवस्य संघर्षस्थितेश्च कालखण्डेन गच्छदस्ति। खाद्य इंधन आपूर्ति श्रृंखलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु अनिश्चिततायाः प्रभावो दृश्यते। किन्तु एतादृशे काठिन्यमये वातावरणे अपि भारतस्य अर्थव्यवस्था स्वकीयां गतिशीलतां रक्षयति। विगत त्रैमासिके भारतेन 7.8% आर्थिक वृद्धिः समंकिता। सः न्यागादीत् यत् भारतस्य विकास यात्रा अद्य विश्वस्य कृते विश्वासस्य नूतनावसराणां च स्रोतभूतो विद्यते।
1: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
0: सेमीकंडक्टर क्षेत्रे बेल्जियम देशस्य विशेषज्ञता अथ च भारतस्य विपुल विस्तारः परस्परं पूरकौ स्तः। अस्मिन् सन्दर्भे बेल्जियम देशस्य आईमेक संस्थानं भारतस्य सेमीकंडक्टर परिवेशेन सह संयोजयितुं कार्यं करिष्यति। अपरत्र बेल्जियम प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर भारतं विश्वस्य बृहत्तम लोकतांत्रिक देशत्वेन तीव्रतम प्रवर्धमान अर्थव्यवस्था रूपेण च श्लाघमानः प्रमुख वैश्विक महाशक्तित्वेन च अभिहितवान्। इतः प्राग् अद्यैव रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः स्वसमकक्षेन बेल्जियम रक्षामंत्रिणा थियो फ्रेडकेन इत्यमुना सह शिष्टमण्डलस्तरीय वार्ताम् अकरोत्। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः न्यूयॉर्क नगरे वैश्विकानां उद्योगपतीनां गोष्ठ्यां भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितवती। सा अवोचत् यत् प्रथमे त्रैमासे 7.8% विकासेन भारतमद्य अपि विश्वस्य द्रुततम वर्धमाना अर्थव्यवस्था अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मार्गदर्शने कृताः आर्थिक परिष्काराः व्यापार सुगमतां वर्धितवन्तः। वित्तमन्त्रिणा वैश्विक अनिश्चिततासु अपि भारतः अद्य हिमालयीय राज्यानाम् अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनं कृतवान्। तेन हिमसरोवराणां विस्फोटेन सम्भाव्यमान जलाप्लावनस्य हिमस्खलनस्य च विपद सम्मुखीकरणाय सतत सतर्कता पालनाय निर्देशो दत्तः। सचिवेन संसूचितं यत् आपद प्रबंधन दलैः संकटग्रस्त क्षेत्रेषु 24 होराः तीव्र दृष्टिः स्थापनीया। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः श्वः नवदेहल्यां ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंचस्य आयोजनं विधास्यति। अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स देशानां तथा सहयोगी राष्ट्र

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर।

अपनाए सकी और ताकि अपन उन्नति और आगे बढ़ा सकी। तो भैया देखा इस समय सरकार जो ना है अपन एक बहुत बढ़िया योजना जो ना है अपने किसान भैया रन के लिए जो ना है लियाए बटे और बहुत दिन से आए, लेकिन देखा बहुत पंच भैया लोग शायद होकर ना जानत हों, तो हम कहे कि आज देखा पंच भैया रन के बताई दी कि एक योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो एक देखा पूरा नाम कहा भी है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। भैया देखा बहुत ही बढ़िया जो ना है सरकार अपन जो ना है चाहते किसान भैया इनके आमदनी बढ़ी हो और एक लाभ मिले। तो हमारे किसान भैया जौन भी अगर यह योजना के बारे में नहीं जानत हैं एक अपने जन सेवा केंद्र पर जाएँ और अधिक जानकारी लेके एक लाभ लें। और यह योजना में क्या है भैया देखा ना

पंचों राम राम। देखा हो पंच भैया, हमका पता है कि आप सबे समय खेती किसानी के काम से फुर्सत होई के पंचायती में आए यहाँ कि आज देखा का का नई जानकारी मिली और खेती किसानी से जुड़ा ऐसी कौन बात हमका सुने के मिली जेका अपने खेती किसानी में हम लोग

जो ना है सरकार अपन जो ना है चाहत है किसान भैया इनके आमदनी बढ़ी हो और एक लाभ मिले, तो हमारे किसान भैया जौन भी अगर यह योजना के बारे में नहीं जानत हैं, एक अपने जन सेवा केंद्र पे जाएं और अधिक जानकारी लेके एक लाभ लें। और यह योजना में का है भैया, देखा ना कि आप जो ना है सौर ऊर्जा के जो ना है लगवाए के बिजली जो ना है आप पैदा कर सका था, बिजली अपने उपयोग में लेके जौन आपके बिजली के बिल आवत है ओके बोझ कम कर सका था। साथ ही साथ भैया देखा, अगर ज़्यादा बिजली पैदा कर देता है तो ओका आप सरकार के सीधे बेच भी सका था। तो कहा कि मतलब भैया है कि ये योजना से आप जुड़ गया तो खेती किसानी के जितना भी काम ऐसे आहाँ घरे के काम आहाँ सब वो बिजली से आप उपयोग कर सका थे और साथे साथे अपन आमदनी बढ़ावे के लिए बेच भी सका थे। और एकरे लिए भैया देखा का है ना कि अगर जो किसान भैया अरे सोलर पंप लगावत हैं जो सौर ऊर्जा से चलने वाला, तो उसमें का है कि 60% तक के सब्सिडी भी जो ना है छूट भी जो ना है सरकार दे थे। तो यह योजना के भैया जो ना है आप देखा और इसमें कई तरह के जो ना है विशेषता बाटे। एक है कि जैसे पुराना बिजली जैसे पंप होए ओका भी आप सोलर बना के जो ना है यह योजना से जोड़ के आप ओके लाभ ले सकते हैं। तो पंच भैया अरे देखा एक काम के तनको देरी ना करा, कहा गया है ना कि जब जागा तब ही सवेरा। तो हम कहे अगर ये योजना से आप जो ना है जुड़ जाबा तो आपके आमदनी बढ़ी और आपके जितना बिजली पे जो उन खर्च आवाता है वो तो कम होवे करी और अपने खेती किसानी में भी देखा बहुत सहयोग मिली। और साथे साथे भैया देखा इस समय बरसात के भी मौसम आए, तो किसान भैया रन से यही कहा कि भैया देखा खेते के अपन ध्यान रखा, कहूँ भी अगर पानी लगाता है ज़्यादा लगाता है तो उसका निकासी की व्यवस्था करा ताकि फसल ख़राब ना हो। इसलिए कि देखा हमार सबके खेती किसानी हमरे सबके मौसम पे ही आधारित है कि अगर मौसम अच्छा हुआ तो खेती अच्छी है, मौसम गड़बड़ हुआ तो खेती खराब ही है। तो तमाम इस तरह के समस्या देखा हम लोग के देखे सुने के मिला थे, तो बहुत सजग हुई कि भैया अपन खेती किसानी काम देखत रहा। और हम कहे देखा पंच भैया इंतजार करते हो भैया कि सुबेरे से काम धाम कहीं के थका हा तनिक कुछ जो उन्हें गीत गुना ही सुन लीन जाए, तो हम वो सोचते कि साथे साथे सुनी और आपो सब सुना। तो देखा अपने बीच में जो उन्हें त्रिभुवन नाथ गौड़ भैया हैं और साथी यहाँ उनके उनके गावा एक विकास गीत है, आवाज़ सुन लीन जाए तो फिर बात बत कही कीन जाए।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: पंच भैया देखा लोकगीत रहा त्रिभुवन नाथ गौरव साथी के, और साथे साथे देखा संदेश भी हो गया। और पंच भैया देखा एक बात और कहा कि देखा इस समय राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनावा जाता है और 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ए पे जो है जोर शोर से कार्यक्रम होता है, जिसका उद्देश्य यह बटे कि हमारे देश के जनता जागरूक होए और पौष्टिक

0: आहार के बारे में जानें ताकि वो स्वस्थ रहें और देश से कुपोषण भगावा जा सके। तो आप लोग अपने खाना पीना के भी ध्यान रखें, मोटा अनाज के प्रयोग करें, प्रोटीन युक्त जो ना है भोजन लें, दूध और दही जैसे ओके उपयोग करें ताकि जो ना है आप सब स्वस्थ रहा। तो भैया देखा आज अपने पंचायती में जो ना है एक प्रगतिशील किसान भैया आए हैं जो ना है अपन खेती किसानी की चर्चा करे खातिर, ताकि हम सब उनके अनुभव से कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और अपने ओका खेती किसानी में जोड़ सके। तो आओ भैया देखा आज किसान चर्चा में यहाँ रामनाथ द्विवेदी भैया से अरविंद कुमार भैया बातचीत कर रहे हैं। तो आवा हम लोग सुना जाए फिर बात बत कही हो।
1: किसान भैया समय समय पर अपने पंचायती में प्रगतिशील किसान भैया हरे, अनुभवी किसान भैया हरे आवत हैं और उनसे हमारे सभी खेती किसानी का अनुभव लीन जात है। उनके खेती किसानी के अनुभव से ही हमारे सभी अपने खेती किसानी में उतारा जाता है उनका अनुभव, और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त की जाते हैं। यही तरह का एक अनुभवी प्रगतिशील किसान अपने पंचायती में आए बाटे, श्री रामनाथ द्विवेदी जी। आप ग्राम जगदीशपुर करछना जिला इलाहाबाद से आए बाटे, अपने पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेती किसानी के अनुभव में आपसे हम किसान भाई ये जानना चाहिए कि आपके कुल कितना खेती बाड़ी बाटे?
2: 20 बीघे जमीन पूरी है।
1: अच्छा।
2: उसमें 18 बीघे जमीन जोतने बोने के लिए है।
1: अच्छा।
2: 2 बीघे उसमें बाग बगीचा है।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। तो 18 बीघा का आप काश्तकार हैं, 18 बीघा तो बढ़िया खेतिहर माना जाता है, 18 बीघा का खेती जी चलत है। आप बतावें कि आप कौन कौन फसल का उपज लेते हैं?
2: मुख्य फसल खरीफ के उसमें धान है
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: उसमें 12 बीघे धान बोया जाता है। 6 बीघा जो बचा रहता है उसमें ज्वार, बाजरा, अरहर
1: जी,
2: और
1: जी,
2: सब्जी
1: जी।
2: की खेती।
1: बहुत बढ़िया भैया, धान चूंकि मुख्य फसल बाटे, आपसे हम किसान भाई जाना चाहे कि धान के खेत का तैयारी आप कैसे करते हैं, फसल का इस समय स्तर का है, कौन ढंग से चल रही बाटे, एक बारे में थोड़ा विस्तार से।
2: धान का खेती करे के पहले ओकर गर्मी में जोताई, जोताई के बाद फिर उसकी बियार तैयार की जाती है, बेहन जिसको कहते हैं
1: जी।
2: फिर बेहन जब उसमें लगाने के पहले उसकी जुताई और फिर उसमें पानी, DAP खाद डाल करके फिर उसकी रोपाई, फिर रोपाई के 15 दिन के बाद यूरिया और सल्फर की टॉप ड्रेसिंग किया जाता है।
1: अच्छा, तो ये हिसाब से आप खेत का तैयारी करते हैं और आपके धान का फसल बढ़िया होता है इस समय। धान के फसल में चूँकि एक बात हम आपसे और जानना चाहिए, धान का फसल मुख्य रूप से पानी की फसल कही जात बाटे, सिंचाई का प्रबंधन ये फसल में बहुत ज़्यादा मांगा जाता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी होता है धान के फसल के पानी के प्रबंधन का। आप बतावें कि एक बड़ा खेतिहर हैं आप, बहुत बढ़िया काश्तकार हैं, आप बतावें कि अपने धान के फसल के खातिर आप सिंचाई व्यवस्था कैसे किन गए हैं, इसके बारे में बताएं।
2: इस समय तो इस वर्ष भगवान खूब बरस रहे हैं, उसके बाद नहर की सिंचाई है, सरकारी ट्यूबवेल हैं, जब ज़रूरत पड़ती है सरकारी ट्यूबवेल सींचा जाता है, नहर रहती है तो नहर से सींचा जाता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से आप बड़ा खेतिहर हैं तो डीजल पंप का भी व्यवस्था की है हुई है, कहाँ से कि 18 बीघा का आप काश्तकार हैं। और हर प्रगतिशील किसान भाई भी बतावत हैं कि अपने धान के खेत के खातिर मेड़बंदी बहुत आवश्यक है। किसान भैया मेड़बंदी तो कमोबेश हर फसल में आवश्यक है, हर किसान के खातिर आवश्यक है, कहाँ से कि जो उर्वरा माटी है पानी के बहाव में वो दूसरे जगह न बह जाए, और विशेषकर धान के फसल में तो और आवश्यक है कि उनमें जो दवाई हैं, जो पानी की मात्रा है वो बह न जाए, एक खातिर बहुत मजबूत मेड़बंदी आवश्यक है। ये समय भैया रामनाथ द्विवेदी जी, ये समय पर आपके धान की फसल कैसे चल रही बाटे?
2: धान की फसल यह समय बहुत बढ़िया चलत बा, बुआई के पहले सब ओकर मेड़बंदी की हग रहा, फिर टॉप ड्रेसिंग के बाद दोबारा जैविक खाद प्रयोग की हगवा, जैविक खाद से जो है उस कीड़ा उड़ा नहीं लगते हैं
1: जी,
2: कोई रोक दोख नहीं लगता है,
1: बहुत बढ़िया भैया।

0: खाद इस समय कम प्रयोग किया जा रहा है, यूरिया डीएपी और जैविक खाद की विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। उसके बाद उसमें जिंक और वो सल्फर का प्रयोग किया जाता है, इससे पत्ती उत्ती में कीड़े न लगें और फसल एकदम हरी भरी रहे।
1: जी, आप बतावें कि आप बताएं कि धान धान की फसल इस समय आपका अच्छी चल रही
0: बहुत
1: बेटा,
0: अच्छी।
1: कह मतलब आप बतावें कि आप बागवानी कुल कितना की है बेटा?
0: 2 बीघे बाग है।
1: अरे बहुत बढ़िया
0: हाँ,
1: भैया, और कौन कौन चीज़ का बाग है?
0: उसमें नींबू है, आम है, अमरूद है, करौंदा है, यही सब है।
1: अच्छा
2: हाँ भैया, देखा ये किसान चर्चा में रहा रामनाथ द्विवेदी से अरविंद कुमार भैया के बातचीत। देखा हो पंच भैया, अब आप सबसे विदा ले के समय होत बटे, और मौसम के ध्यान रखत भाई, अपन ध्यान रखा, अपने पशुअन के ध्यान रखा, तो पंचों राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जो कि आप सुनेंगे कुछ ही देर बाद हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आसानी से पहुंचाए सकी था और बिना कौनो झंझट के। काहे के बदे जेकरे लगे पैसों कमो है ना, तो यही मा अनुदान मिलत है जैसे हम पंच वही के व्यवस्था कर सकी थे। और यही मा सबसे बढ़िया बात ई है कि हम पंच कम से कम पानी से अधिक फसल उपजाए सकी थे।
1: बिल्कुल सही कहो रामजीत भैया, काहे कहिया ई योजना के उद्देश्य ही यह है कि प्रति बूंद अधिक फसल अपने खेतन में जोन एक एक बूंद जाए उससे अपनी फसलन कहिया लाभ पहुंचे। और भैया जोन सूक्ष्म विधियां हैं उनका अपनावा जाती है, जैसे कि टपक विधि हो गए, बौछार विधि हो गए। ई विधियन का अपनाए के पानी की एक एक बूंद के इस्तेमाल की जाते है। और जोन ई विधियन में यहाँ यंत्र लागत है अपनावे खातिर, वो यंत्रन पर यहाँ जो है सरकार की तरफ से अनुदान भी दिन जात है।
0: बिल्कुल बहनी, और ई सब बातन का अगर हम पंच का जानकारी राखक है तो वही की ताए हम पंच अपने आसपास जौन चीजें हो रही हैं वन पर ध्यान दिए परी। अब वो का जानकारी हम पंच पाई थे आज की खबरें में।
2: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, खरीफ 2026 फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 सितम्बर 2026 कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार

ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और चयनित जिलों में संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसानों की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर कर दी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी पात्र किसानों से समय रहते फसल बीमा कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि फसल बीमा से प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। प्रदेश सरकार के अनुसार वर्ष 2017-18 से वर्ष 2025-26 तक प्रदेश के करीब 69 लाख किसानों को लगभग 6,120 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है। कृषि विभाग ने पात्र ऋणी किसानों से अपील की है कि 10 सितंबर 2026 तक अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर फसल बीमा अवश्य कराएं।

0: सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: रेनू बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो अपने खेती पाती में एक चीज तो हम पंच बहुत आसानी से देखी थे कि अगर कौनो फसल समय पर तैयार हो गए और वही का शुरुआत में अगर बाजारे हम सब पहुँचाए ले गए तो वही का दाम जौन है बहुत नीक मिलत है।
3: बिल्कुल भैया, कहे कहीं जो चीज समय पर आ जाते है और उकी मांग भी ज्यादा होते है तो जो है उके दाम तो बढ़िया मिले इनका है। लेकिन ऐसी कौनो फसल अगर हमका उगावक है जो कि हमका और लोगन से पहले लेके अपने बाजार तक आवक है तो भैया उकी जानकारी भी हमका अच्छी तरह से होक चाहिए।
2: बिल्कुल, और यही बदे आज की बातें में हम पंच लायन है सब्जी मटर के अगेती खेती जह पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा भैया।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां इस समय आपका खेत खाली हो रहा है और सब्जी मटर की अगेती खेती करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट जमुनाबाद गोला लखीमपुर खीरी से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां सब्जी मटर की अगेती खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन तो क्या कुछ संभावना है?
5: किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। सब्जी मटर की खेती की इस समय बहुत ही अच्छी संभावना है क्योंकि समय हमारा बहुत अनुकूल इस समय चलने वाला है क्योंकि जो 15 सितंबर से समय है इस समय हम इसकी बुआई जो है टेम्परेचर को देखते हुए कर सकते हैं।
4: तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो विशेष ध्यान में रखनी है?
5: इसमें सबसे पहले आता है प्रजातियों का चयन क्योंकि अगर अच्छी प्रजात है और प्रमाणित प्रजात है अच्छे संस्थान से खरीदी गई है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छा उत्पादन देगी।
4: खेत का चुनाव भी महत्वपूर्ण?
5: हाँ, और खेत का चुनाव भी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा लो लैंड नहीं हो, निचली जमीन नहीं होनी चाहिए जिससे कि जल भराव जहाँ पे होता हो कि जो कि सितंबर के लास्ट तक बारिश हो जाती है तो उससे जो है किसानों को नुकसान हो सकता है।
4: यानी जल निकास का मुकम्मल प्रबंध हो और बलुई दोमट हो तो ज्यादा अच्छा।
5: हाँ, बलुई दोमट हो बहुत अच्छा है जिससे कि तुरंत जो है उसमें पानी निकल जाता है और पौधे को अच्छा ग्रोथ करने की मिलती है।
4: खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है डॉक्टर साहब?
5: खेत की जुताई करके खेत को बढ़िया भुरभुरा बना लें और खेत का जो है शोधन जरूर करें क्योंकि इसमें उकठा एक बीमारी आती है। अगर आप 2-3 साल से लगातार खेती कर रहे हैं तो ये समस्या आ जाती है तो इसलिए इसको जो है हम शोधन कर लेते हैं। इसके लिए जो है 2 किलोग्राम जो है ट्राइकोडर्मा बिरडी होता है, जैविक फफूदी नाशक है जिसका कि हम 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में जो है अच्छा तरीके से मिलाते हैं और फिर उसको खेत में बिखेर कर अंतिम जुताई में अच्छी तरह से खेत में मिला देते हैं।
4: यानी भूमि शोधन कर लें ट्राइकोडर्मा से?
5: जी।
4: और बीज शोधन भी?
5: हाँ, और बीज शोधन भी कर लें। बीज शोधन के लिए एक आपने बहुत पहले सुना होगा FIR, यानी कि सबसे पहले हम फफूदी नाशक से शोधित करेंगे। इसके लिए हम कार्बेंडाजिम ले लेते हैं, उसके बाद इंसेक्टिसाइड यानी

0: की कीटनाशी, उससे हम शोधित करते हैं। और फिर उसके बाद है राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम बहुत महत्वपूर्ण है। उससे शोधन करने से खेत में नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है, वो नोड्यूल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं।
1: और वो भी मटर का राइजोबियम कल्चर प्रयोग
0: हाँ,
1: करें
0: राइजोबियम कल्चर,
1: और फास्फेटिका कल्चर भी?
0: हाँ पीएसबी कल्चर भी जो है 200 ग्राम जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो है उसका भी प्रभाव, यानी कि डीएपी की जो अघुलनशील अवस्था पड़ी हुई है उसको हम घुलनशील अवस्था में लाने का प्रयास उससे हम करते हैं।
1: और 200 ग्राम जो पीएसबी और राइजोबियम कल्चर है,
0: ये बीज के लिए है।
1: डॉक्टर साहब उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी
0: हाँ
1: हैं?
0: उन्नत प्रजातियां में देखिए हमारे पास बहुत अच्छी प्रजातियां हैं, जैसे सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है बनारस में है, वहां से आप काशी नंदनी है, काशी अगेती है, और आजाद मटर 3 है, ये कानपुर विश्वविद्यालय से विकसित है।
1: जहां
0: तो
1: सितंबर में बुआई
0: हाँ,
1: करें,
0: जो हम अगेती यानी 15 सितंबर के बाद जो हम बुआई कर सकते हैं
1: 15 अक्टूबर तक।
0: 15 अक्टूबर तक आजाद मटर 3। अर्किल भी हम लगा सकते हैं, ये पुरानी वैरायटी है, अगर आपको बढ़िया मिल जाए प्रमाणित जगह से तो आप इसको भी लगा सकते हैं।
1: इसकी पैदावार एकड़ में कितना मिल
0: हाँ
1: जाएगी?
0: जब इसकी बुआई करते हैं तो ये इसकी तुड़ाई 50 से 55 दिन पे शुरू हो जाती है, और इसकी जो उपज है ये 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ प्राप्त होती है।
1: और कुछ प्रजातियां जैसे काशी नंदिनी है, उसकी और ज्यादा?
0: हाँ उसकी ज्यादा हो जाती है, ये प्रजाति के अनुसार जो है बैरी करता है।
1: डॉक्टर साहब जहां मध्यम बुआई की जो प्रजातियां, जहां अक्टूबर में बुआई करनी,
0: हाँ उसके लिए भी हमारे पास काशी मुक्ति है, काशी शक्ति है, काशी तृप्ति है, ये 60 से 65 दिन पे जो है इनकी हम तुड़ाई करते हैं, और इनका जो उत्पादन है 55 से लेके 60 कुंटल तक प्रति एकड़ हमें प्राप्त हो जाता है।
1: कुछ और प्रजातियां भी काफी लोकप्रिय हैं।
0: हाँ बहुत सारी और भी हैं, जिसे एक तो हमारे पास प्रजाति है जिसको कि हम छिलके सहित भी खाते हैं, वो हमारे पास है काशी असीम है, वो प्रजाति भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका हम
1: यानी
0: सब्जी
1: मिठास के कारण।
0: मिठास के कारण जो है।
1: डॉक्टर साहब बुआई में क्या कुछ खास है?
0: चूंकि ये बारिश का सीजन होता है तो हम उठी हुई क्यारी पे अगर इसकी हम बुआई करते हैं, यानी कि जल निकास हम उसमें बनाएं खेत में, जिससे पानी अगर बरसात हो तो वो पानी जो है अधिक जो पानी है वो निकल जाए खेत से।
1: तो लाइन से लाइन की दूरी?
0: हाँ लाइन से लाइन की दूरी जो 30 सेंटीमीटर हम लाइन से लाइन रखते हैं, और 7 से 10 जो है हम पौधे से पौधा की दूरी रखते हैं, जिससे कि जो है चूंकि इस समय बढ़वार कम हो तो और बीज की मात्रा भी अधिक लगती है, तो हम जो है उसको हम ये 50 किलो से लेके 55 किलो तक जो है हम बीज का प्रयोग करते हैं।
1: डॉक्टर साहब फसल की भूख मिटाने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कब, कितना और कैसे करना है?
0: देखिए किसान भाई एक मोटा मोटा देख लें कि 1 एकड़ में जो है हम 1 बोरी डीएपी का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत ही जो है पूर्ण है। और दूसरा जो इसमें कुछ सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे कि हमारे पास बोरान है और सल्फर है, इनका भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो है फसल में चमक और मिठास और ये सब जो कम फल आने की जो समस्या होती है उससे भी हम इसको सुधार सकते हैं।
1: तो जिप्सम की कितनी मात्रा?
0: जिप्सम का प्रयोग जो है हम 1.5 से 2 कुंटल तक जो है प्रति एकड़ हम कर सकते हैं अगर उपलब्ध है, और नहीं उपलब्ध है तो हम सल्फर का प्रयोग करते हैं 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से।
1: डॉक्टर साहब खड़ी फसल में फसल की भूख मिटाने के लिए क्या जल विलेय उर्वरक का प्रयोग हो सकता है?
0: हाँ बहुत ही अच्छा ये आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब हम पढ़वार होती है फसल की तो उस समय ये जरूरत पड़ती है, और हम 19-19-19 NPK का जो कॉम्बिनेशन है ये 1 किलोग्राम हम ले लेते हैं, और इसको 150 लीटर पानी में घोल बनाकर, और उसमें प्लस बोरान भी 200 ग्राम हम घोल के छिड़काव कर देते हैं
1: प्रति एकड़।
0: प्रति एकड़
1: फूल आने के ठीक पहले?
0: फूल आने के ठीक पहले, और दूसरा जो है फली आने के समय भी 0050 ये जो है NPK आता है, इसका अगर हम छिड़काव कर दें तो जो उसके फल हैं वो तंदुरुस्त यानी बढ़िया और अच्छा चमकदार होते हैं।
1: यानी पोटेशियम सल्फेट के चलते पोटास भी मिलेगा और सल्फर भी मिलेगा।
0: जी जी
1: तो दाने मजबूत होंगे
0: दाने
1: और
0: मजबूत
1: इम्यूनिटी मजबूत होगी, रोग दोख और कीड़ा मकोड़ा भी नहीं
0: भी कम, हाँ कम लगेंगे फसल जब तंदुरुस्त रहेगी तो।
1: डॉक्टर साहब जब सब्जी मटर की अगेती खेती की बात हो रही है तो कुछ समस्याएं आती हैं हानिकारक कीट और बीमारियों की?
0: जी जी इसमें जो है तना मक्खी है, फली छेदक है, इसमें अच्छे तरीके से हम कोई कीटनाशी का अगर प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो रोग लगता है उकठा, जो उसकी मैंने पहले चर्चा की थी, तो उसका शोधन बहुत जरूरी है, और उकठा के लिए जो है ट्राइकोडर्मा का भूम शोधन अवश्य करें और बीज शोधन भी करें, और अगर लग जाए तो हम थायोफिनेट मिथाइल है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका भी हम जड़ के पास छिड़काव करें, पूरे पौधे पे नहीं छोड़ करके।
1: कुछ जैविक उपाय भी होंगे?
0: हाँ जैविक उपाय में जो है हम फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं, कौन कौन से कीट आपके उस समय आ रहे हैं उनको हम पकड़ सकते हैं, और उनका जो है उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सब्जी मटर की अगेती खेती के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे

0: पर करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट जमुनाबाद गोला लखीमपुर खीरी आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: हाँ, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9415665454 9415716654।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का सब्जी मटर की अगेती खेती के बारे में? डॉक्टर साहब
1: देखिए, सबसे अच्छा यही है कि हम सटीक और प्रमाणित संस्था से बीज खरीदें। दूसरा जो है उनका भूमि शोधन और बीज शोधन करें। स्प्रिंकलर से या ड्रिप से हम सिंचाई करें जिससे कि हल्की सिंचाई हो, और जहां तक हो गूठी क्यारी का प्रयोग करें, बोरान और सल्फर का अवश्य प्रयोग करें। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर आपका 15 सितंबर से शुरू होता है, अगर अनुकूल है तो आप बुआई कर सकते हैं।
0: डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और सब्जी मटर की अगेती खेती कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखो, अपने पंच का हम पंच जानकारी तो देवे करी थे, मूल कुछ गीत गौनाई से उनके आनंदो बढ़ाई थे, तो आज के बैठक में कुछ गीत गौनाई सुनवाई दो।
3: बिल्कुल भैया, हम तुम्हें मन की बात समझ गए, और जब गीत गौनाई में यहाँ मनुहार होए ना, तो जो है वो और बढ़िया लागे लागत है। तो आज ऐसे एक मनुहार गीत हम लेके आए हैं, अकरम अंजाना भैया के स्वर में, यहाँ पटना से पाजेब मंगाए दा।
2: तो चलो मंगाए दिया।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रेनु बहनी।
4: हाँ रामजीत भैया।
3: देखो हम पंच अपने खेती पाती में तमाम तरह के काम तो करबे करी थे और हम अपन फसल उगाई थे। मूल बहुत से किसान आईस है जे बीज बनावत है।
4: तो भैया देखो आज यही तिना के एक किसान हैं जो कि बता रहे हैं बासमती धान बीज उत्पादन के बारे में। यहाँ इनके नाम है सुधीर अग्रवाल भैया, तो इनकी बात कही सुनी जाए।
3: बिल्कुल बहनी।
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं मथुरा जनपद के नौझील ब्लॉक के भुरेका गाँव, जहाँ बासमती धान के बीज उत्पादक सुधीर अग्रवाल साहब टेलीफोन लाइन पर है। सुधीर अग्रवाल साहब नमस्कार।
6: नमस्कार डॉक्टर साहब।
5: अग्रवाल साहब, आप बासमती धान के बीज उत्पादक के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, ये बताएं कि कौन कौन सी वैरायटी इस समय आपके खेत पर है बासमती की?
6: बासमती की 12 प्रजाति जो पूछा संस्थान द्वारा निर्गित की गई है, वो सब 12 प्रजाति हमारे बीज उत्पादन के लिए मौजूद है। और नवीन प्रजाति पंजाब बासमती 7 और नवीन प्रजाति हिसार चौधरी विश्वविद्यालय की 22 नंबर जो है ये हमारे पास बीज उत्पादन के लिए लगी हुई है।
5: तो जो पूसा संस्थान की वैरायटी है उनका भी जिक्र कर दें।
6: जी, पूसा संस्थान की 15, 16, 18, 17, 17, 18, 19, 85, 19, 89 और क्या कहते हैं 18, 85, 18, 86 PV1 ये प्रजातियां पूसा संस्थान की लगी हुई हैं।
5: तो इन प्रजातियों की खासियत क्या महसूस कर रहे हैं आपकी इनको चुनते हैं फसल उत्पादन और बीज उत्पादन के लिए?
6: इसमें तीन तरह का वर्ग है पूसा संस्थान की प्रजातियों में। एक तो अर्ली प्रजातियां हैं जिसमें 15, 09, 16, 92 आती है
5: जी।
6: मध्यकालीन प्रजाति 18, 47 है और लीड प्रजाति में 17, 18, 18, 85, 18, 86 और क्या कहते हैं आपका 11, 21 ये लीड प्रजातियां जो है दिसंबर तक पकती है। 16, 92 ऐसी प्रजातियां 110 दिन में 120 दिन में पक जाती हैं। इसके बाद दूसरी फसल आलू सरसों लोनी के लिए किसान जो है लाभान्वित होता है।
5: तो जो भी बासमती की प्रजातियां आप लगाते हैं तो बासमती धान की रोपाई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
6: सबसे पहले हम जो है गर्मी के मौसम में पूरे खेतों की जुताई कर देते हैं या भैंसा कंपोस्ट के लिए बो देते हैं या मूंग बो देते हैं और उसके बाद मिट्टी की टेस्ट कराने के लिए रिपोर्ट व्यक्ति भेज देते हैं। जब तक हमारी मिट्टी की टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद नर्सरी डाल देंगे। नर्सरी डालने के बाद हम जो है धान की रोपाई के लिए जब हमारी फसल 21 दिन की तैयार हो जाती है तो रोपाई के लिए तैयार हो जाती है।
5: तो फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा देते हैं एकड़ पीछे?
6: पहली तो जो संतुलित मात्रा जमीन का जांच करा ली मिट्टी की, जो पोषण तत्वों की कमी है वो पोषक तत्व दे देते हैं। जितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की जरूरत होती है उतना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश दे देते हैं।

0: मिट्टी की जांच जरा कराना सबसे बड़ा पहलू है धान की फसल के लिए।
1: चूंकि आप बासमती धान का बीज उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें एरोमा आए, सुगंध आए, तो इसके लिए रोपाई का कुछ अलग तरह का समय चुनते होंगे।
0: उसके लिए आवश्यक ये है कि हम जो है अपनी रोपाई 10 जुलाई से शुरू करके जुलाई के एंड तक करें, अपनी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में तैयार हो। कालीन समय में एरोमा आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है जिससे कि हमारी फसल में पूरा एरोमा आता है।
1: चूंकि बासमती धान का बीज उत्पादन आप कर रहे हैं तो जो हानिकारक कीट और बीमारियां लगती हैं उनका प्रबंधन कैसे करते हैं अपने खेत पर?
0: उनके प्रबंधन के लिए हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि जैसे ट्राइकोडर्मा है, बाइबेरिया बेस्टेना है
1: जी,
0: और फिलोमोनास है, और फेरोमोन ट्रैप सबसे पहले हम रोपाई करने के बाद फेरोमोन ट्रैप लगा देते हैं जिससे आभास हो जाता है कि तितली आ रही है या नहीं आ रही है, स्टेम बोरर ये भी कीट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और गर्मी फ्लेवर के कीट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अगर उससे हमें जैसे मान लीजिए फेरोमोन ट्रैप में हमको 10 पौधे पेड़ मिल गए, 10 कीड़े मिल गए, तो हम उसके बाद स्प्रे करने के लिए क्या करते हैं संबंधित कृषि रक्षा विभाग से या पूछा संस्थान से संपर्क करते हैं कि बताइए हमको कौन सा केमिकल और छिड़कना होगा,
1: तो उसके हिसाब से आप सुरक्षित रसायनों का प्रयोग करते होंगे।
0: हम केवल सुरक्षित रसायनों का जिसमें मॉलिक्यूल नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनका प्रयोग करते हैं, और वैसे तो हम जो है ज्यादातर जो है फिलोमोनास और क्या कहते हैं बाइबेरिया बेस्टियाना और ट्राइकोडर्मा और क्या कहते हैं ट्राइकोकार्ड स्टेम बोरर की कीट आती है तो उनको ट्राइकोकार्ड अपना भी खा जाता है।
1: चूंकि पिछले कई सालों से लगातार आप बासमती धान का बीज उत्पादन कर रहे हैं तो एकड़ में लागत कितना गिरती है, उत्पादन एकड़ में कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: हम एक एकड़ में करीब करीब 20 क्विंटल से लेके 25 क्विंटल तक धान का बीज पैदा करते हैं
1: जी।
0: ये स्थिति रहती है समय अनुकूल जो है किस तरह का मौसम रहा है, तो उसमें हमारा उत्पादन जो है 20 क्विंटल से 25 क्विंटल के बीच में आता है और हमारी लागत का खर्चा जो है 10,000 रुपए एकड़ का आता है।
1: और मुनाफा होता कितना है?
0: अब वो तो बीज के ऊपर डिपेंड करता है, 100 रुपया किलो बीज बिक जाता है जिसमें हमारा क्या कहते हैं खर्चा आप ये लगा लीजिए कि जो हमारा बीज का उत्पादन है उसमें हमको जो है करीब करीब जो है 40 रुपए किलो का मुनाफा हो जाता है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है बासमती धान उत्पादन का उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हम तो ये किसान भाइयों को कहना चाहेंगे बासमती से अच्छा कोई चीज नहीं है क्योंकि ये 120 दिन तक पक जाती है और इसको बोने के बाद हम दूसरी फसल ले लेते हैं, और हमारे यहाँ किसानों को हमने ये सिखाया जिनको कॉमर्शियल बासमती पैदा करना है हमें अपना समय से लगाएं और चेन वाली कंबाइन से उसको कटवा दें और उसका जो पुआली है वो जमीन में मिल जाएगी, फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है, जमीन बहुत मजबूत हो जाती है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 9412 78153 94-122-78-153।
1: चलते चलते और कुछ कहना चाहते हैं?
0: मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा कि GI के प्रति सतर्क रहें और GI बासमती को मिला हुआ है इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में और दाम बढ़ेंगे और GI को समझते हुए कम जहरीला धान पैदा करें जिससे कि डिस्ट्रिक्ट में हमारी पताका लहरती रहे।
1: सुधीर अग्रवाल साहब, आज के किसान क्रम में आपसे इतनी अच्छी बात हुई और आप बासमती धान का उत्पादन कर रहे हैं, बासमती धान का बीज उत्पादन भी कर रहे हैं, आज इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रीनू बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो अपने पंचन के मौसम के जानकारी दे दी जाए तो भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार अगले 7 दिन के जो मौसम की जानकारी है 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक वो है गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, साथ ही कहूं कहूं पर भारी बारिश के चेतावनी है।

0: या ये तो रही मौसम की जानकारी। अब हमार कार्यक्रम कस लागत है इके खातिर अपने पंच भैया बहनिन के यहाँ जो है अपन कार्यक्रम के पता बता दिन जाए। तो जल्दी से कलम कागज ले लें पंच भैया बहनी और कार्यक्रम के पता नोट कर लें। कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड है 226001।
1: और साथे जे पंच भाई मेल करे चाहे वह लिखे हमार मेल farmandhomeairlko@gmail.com।
0: रामजीत भैया देखो अपने कार्यक्रम के अब समय हो रहा है समाप्त, तो अपने पंच भैया बहनिन से लीन जाए आज्ञा।
1: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी मीडियम वेव
2: आकाशवाणी का। ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल, जिलाधिकारी को प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ित परिवारों को प्रदान की राहत सामग्री और भूमि आवंटन प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री ने आज मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ ने आज बैठक में लिया हिस्सा, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों की ली जानकारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति का हाल जाना। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने काशी में नदियों के जलस्तर और राहत शिविरों में किए जा रहे इंतजामों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी से भी फोन पर बाढ़ की स्थिति का फीडबैक लिया। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि बाढ़ राहत कार्यों की निरंतर निगरानी की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जाए।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जो यहाँ की बाढ़ की स्थिति है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है और यह निर्देश दिया गया है कि जो बाढ़ राहत बचाव का कार्य है वो युद्ध स्तर पर चलाया जाए, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए ये सुनिश्चित करें। जो वर्तमान में वाराणसी में गंगा जी का जलस्तर है वो 70.6 मीटर पे चल रहा है, जो वार्निंग लेवल होता है, चेतावनी बिंदु है हमारा, उससे करीब 30 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है। इसमें करीब 17 बाढ़ राहत शिविर हमारे संचालित किए जा रहे हैं और उसमें करीब 1800 लोग हैं जो आज की डेट में वर्तमान में बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। श्री योगी ने बाढ़ से प्रभावित लगभग 1000 परिवारों को राहत सामग्री

0: त्रिपाठी। इस दौरान उन्होंने बाढ़ में आश्रयहीन हुए परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार बाढ़ की आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे की रिपोर्ट आते ही अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर जरूरत का ध्यान रखते हुए सरकार उन तक हर संभव मदद और राहत पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।
1: बाढ़ राहत कार्य के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियां, राहत शिविर और जिन गांवों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस चुका है वहां पर उन सभी प्रभावित परिवारों के लिए शासन ने जो सुविधा उपलब्ध करवाई है उनके रहने के लिए, भोजन के लिए और जो लोग अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घर पे उन तक राहत सामग्री की किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ का स्थायी समाधान निकालना चाहती है, इसके लिए ड्रेजिंग के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। इसमें जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उन्हें उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी। भारी बारिश के कारण आज जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में स्कूलों में छुट्टी रही। उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर और बढ़ने के बाद प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। लखीमपुर खीरी में शारदा, अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा और बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि और प्रमाण पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार मथुरा समेत सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ आर्थिकी पर भी सरकार ध्यान दे रही है।
2: विरासत केवल किसी भौतिक वस्तु में नहीं होती और इसीलिए डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया आयाम जोड़ा है कि विरासत भी और विकास भी, आस्था भी और आर्थिकी भी, यानी अर्थव्यवस्था भी, परंपरा भी और परंपरा के साथ साथ परिवर्तन भी।
0: मुख्यमंत्री कल सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पूजन भी करेंगे। वहीं कल शाम गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के आयोजन में शामिल होंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर ब्रजनगरी मथुरा पूरी तरह सजकर तैयार है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि जन्मोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मथुरा में कल जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर पूरे मथुरा शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा के जन्म स्थान की सुरक्षा में कमांडो के साथ साथ सिविल पुलिस, पीएसी, एलआईयू, सीआईएसएफ, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की तैनाती की गई है। शहर की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार मंदिर परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि यातायात, भीड़ नियंत्रण और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। शहर के सभी होटलों और गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में निरंतर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नौ

0: नियुक्त सीईओ एयर मार्शल रिटायर्ड जितेंद्र मिश्रा ने आज अयोध्या पहुंचकर ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने भरोसा जताया कि अपने अनुभव और कार्यशैली के साथ वो इस पद की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। श्री मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझने के बाद ही वो औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे।
1: पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जहां पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना है। अब अगले 2-3-4-5 दिन जहां तक ट्रस्ट चाहेगा मैं उनके साथ बैठ के करूंगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूंगा। जब मैं इसको भली भांति से समझ लूंगा तब मैं सीईओ के रूप में टेक ओवर करूंगा।
0: भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के विधिक माप विज्ञान विभाग ने आज लखनऊ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में हुए रिफॉर्म्स को सभी हितधारकों तक पहुँचाना है।
2: जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में डीक्रिमिनलाइजेशन के माध्यम से जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनको हम अपने लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स तक पहुंचाएं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बताएं, हमारे जो ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशंस हैं उनको बताएं, ताकि हम इसका सरलीकृत कर सकें, ताकि न केवल उपभोक्ताओं का हितों के संरक्षण की भी बात हो बल्कि हमारे देश में जो ट्रेड और कॉमर्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल, जिलाधिकारी को प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ित परिवारों को प्रदान की राहत सामग्री और भूमि आवंटन प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री ने आज मथुरा में करीब 1,051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ ने आज ट्रस्ट की बैठक में लिया हिस्सा, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों की ली जानकारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे भारत और हांगकांग के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
4: Been about 120. They're obviously a very accomplished side. So you know, looking at 140, 150, we've had a couple of chases like that this year. So if we can keep them to 140, 150,
5: well, good to see you. Thank you. Back in the starting 11. Any other changes?
4: We have 2 changes. I'm coming in for Dorothea, and Ikra Sahar is coming in.
5: And talk us through the immensity of this occasion. You're facing India, and the last time these two teams contested at the Asia Cup was way back in 2012.
4: It's obviously a very exciting occasion. You know, we're playing one of the top teams in the world. They're an incredible side. Obviously, everyone's very excited to see how we can compete against such an incredible side. And I mean, taking in the occasion and enjoying ourselves, and hopefully we come back to the Asia Cup in the future.
5: Finally, 100th T20I for Alison Siu, big asset to your side.
4: Yeah, for sure. She's been a spearhead for our attack for many years now. Always making 100 appearances for your country is an incredible achievement. So congrats to Alison, and we're happy to have her in the side always, and hope she has a great game.
5: Have a good crack at this one.
4: Thanks so much.
5: In comes Harmanpreet Kaur, captain of India. Harman, had you won the toss, what would you have done?
6: Well, we also thought of batting first, because I personally feel we need to get used to these conditions as soon as possible.
5: Any particular total you're aiming for on this surface?
6: Well, we are not keeping anything in mind. I think let's just go there and exude ourselves in the positive way, and let's see how, what we achieve end of the day.
5: Chamari Athapattu picked up a 7.

0: Are we going with the same 11?
1: And finally, facing Hong Kong, China, your expectations?
0: Well, I think they have been, you know, playing really good cricket. We have seen they've been very, very positive in this competition, and we just want to, you know, keep doing what we have been doing. And I think it's a great opportunity for us to, you know, play another positive game.
1: All the very best.
0: Thank you.
1: Well, the toss is done and dusted, and the news from the center is Hong Kong, China have won the toss and decided to bowl first.
2: जब जमीन छोटी हो तो आसमां छूने का जुनून और बड़ा हो जाता है। एक तरफ है नीले समंदर की गर्जना, सात बार की एशिया कप चैंपियन भारतीय टीम, जिनके हर शॉट में एक लय का एहसास है और हर गेंद पर जीत की गूंज सुनाई देती है। दूसरी तरफ है हांगकांग का वो दस्ता, जहां कोई कोर्ट की वकालत छोड़कर मैदान में उतरी है तो कोई दिन भर की नौकरी के बाद रातों में पसीना बहाकर इतिहास रचने आई है। हांगकांग की ये खिलाड़ी नाम से अनजान सही, लेकिन इरादों में तूफान लिए खड़ी है। भारत और हांगकांग का आज मुकाबला सिर्फ रन और विकेट से कहीं ज्यादा उस अनुभव का है जो एक तरफ आसमान छू रहा है, बनाम उस संघर्ष का जो आज पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाना चाहता है। फर्स्ट बॉल 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरी को होस्ट आस्था तिवारी। दो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पूर्व महिला क्रिकेटर वैशाली माथुर और वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आनंद। देखिए, जिस तरीके से अब जो ये मुकाबला होने वाला है हांगकांग के खिलाफ, भारत उतरेगी आज मैदान पर। पिछला जो मुकाबला था, कुछ खामियां रही थी, हमने देखा था। पहला सवाल मैं वैशाली माथुर से करना चाहूंगी कि आज जो हांगकांग ने हमें चुनौती दी है, दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाया है, तो कहीं ना कहीं कितना क्रूशियल होने वाला है ये क्लैश, क्योंकि पिछले मुकाबले में कहीं ना कहीं जो हमारा बल्लेबाजी का खेमा था थोड़ा सा डावाडोल दिखा था।
4: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसमें आज के मैच में एक चीज़ बहुत खास है कि लास्ट हांगकांग थाईलैंड से हार कर आ रही है और वहीं इंडिया टीम थाईलैंड से जीत के आ रही है, तो ये एक बेनिफिट हमारे लिए। लेकिन जैसा हमारी हरमन ने बोला कि हमारे बैट्समैन को इस पिच के लिए यूज़ टू होना बहुत ज़रूरी है, और वो सही बोला है, क्योंकि अगर शेफाली वर्मा ही सिर्फ बैटिंग करेगी तो आने वाली आगे चुनौतियों में बहुत ही मुश्किल आने वाली है इंडियन टीम के लिए। और आज प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा के साथ साथ उनको भी चलना बहुत ज़रूरी है, स्मृति मंदना को भी चलना ज़रूरी है, और 200 प्लस स्कोर कर जिन्होंने मैचेस खेले हैं हमारी हरमनप्रीत ने, वो लास्ट मैच में 5 पर ही आउट हो गई थी, और उस तरीके से मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग का बल्ला चलना चाहिए, वो बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है आज। उतना ही इम्पोर्टेंट उनके नेक्स्ट मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्रूशियल मैच होने वाला है आने वाला। एंड उसके साथ अगर मैं बात करूँ कि हांगकांग के अगर बॉलर्स की, तो दोनों टीमों में एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों टीमों में जो अभी तक विकेट मिली है वो स्पिनर्स को मिली है। 11-11 विकेट दोनों टीम्स को स्पिनर्स के फ़ायदा उनको मिला है, लेकिन आज टक्कर ये है कि क्या हांगकांग के जो स्पिनर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या उन स्पिनर्स के सामने हमारे बैटर खेल पाएंगे।
2: साल 2026 के आंकड़ों की बात करें तो भारत ने इस साल 17 मुकाबले खेले हैं, टीम ने 8 में जीत दर्ज की है जबकि 9 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ हांगकांग ने इस साल 26 मैच खेले हैं, 16 में जीते हैं और 10 में उसे हार मिली है। मनोज जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इस बार का जो एशिया कप है बहुत ज़्यादा टोटल हमने किसी भी मैच में नहीं देखा। पिछली बार लगा कि भारत 200 के आसपास जाएगा, लेकिन फिर वो बैटिंग कोलैप्स जिस पर हमने चर्चा की, क्या अप्रोच होगा पावर प्ले में? चूंकि हरमन ने टॉस टाइम पे कहा है कि ट्रिकी विकेट है और जल्दी से जल्दी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे वो।
5: एक अच्छा सवाल है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यहाँ पावर प्ले में रन बने, पावर प्ले में रन बन भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इस एशिया कप में ज़रूर रनों का थोड़ा सूखा है और गेंद थोड़ी सी रुक कर आ रही है, यहाँ बल्लेबाजों का बड़ा इम्तिहान है। अब आप ये देखिए कि अब तक 150 के आसपास ही हम रन बना पाए, जो कि हाईएस्ट स्कोर है हमारा पिछले मैच में, और उसमें भी एक कोलैप्स देखने को मिला। बाकी मैचों में आप देखेंगे तो 125 से ऊपर रन ही नहीं बने हैं, उससे नीचे ही रन बने हैं। तो ये बात कुल मिलाकर ये है कि आपको पिच की परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने जो कोलैप्स हुआ था, अब उससे सीखना होगा, ग्रे एरियाज पर काम करना होगा। हरमनप्रीत को देखें आप, जो स्वीप खेलने जिस तरह से गई थी वो पिछले मैच में, और बड़ा आसान सा कैच, एक एज लगा था। शेफाली को देखें, एक फ्लाइट पर वो गच्चा खा गई थी। इसी तरीके से अगर आप अन्य खिलाड़ियों को देखें।

0: हैं, तो वो भी प्रेमा रावत हो, भारती हो, ये सब जो है फ्लाइट या कहीं ना कहीं उस पर सामंजस्य नहीं बिठा पाई थी परिस्थितियों के हिसाब से। तो मुझे लगता है यहाँ पर इनको यहाँ ज़्यादा एकजुट होने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों पर काम करना होगा। और यहाँ पर जीत हार कोई बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि हर कोई जानता है मैच का परिणाम क्या होने जा रहा है। वैसे ठीक है, आप कितना भी कहते रहें क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जो हमारे ग्रे एरियाज़ हैं उस पर आप काम कीजिए, जो हमारे ओपनर्स पर बहुत ज़्यादा हमारी निर्भरता है उस पर उसको थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि मिडिल ओवर्स जो हैं वो हमारे परेशानी का सबब बने हैं। 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक जो हम रन नहीं बना पाए उतने ज़्यादा ओवरसीज़ कंडीशन में, खासकर ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, क्योंकि यहाँ हमें हार मिली है इस साल। जैसे आपने शुरू में एक आंकड़ा दिया, वो इंटरेस्टिंग आंकड़ा है और मैं समझता हूँ भारतीय क्रिकेट की पूरी स्थिति को बताने के लिए वो काफ़ी है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, श्रीलंका को अपने यहाँ हराया, उसके बाद हमारा पतन शुरू हो गया और T20 क्रिकेट में हम हारते चले गए लगातार सीरीज।
1: जिस तरीके से मनोज जी अभी आपने बोला कि कोलैप्स देखने को मिला, कहीं ना कहीं जो दारो मदार है बहुत ज़्यादा स्मृति मानधना, और हमें देखा है शफाली वर्मा पे, तो थोड़ा सा हम इसमें जाना चाहेंगे वैशाली कि कहीं ना कहीं जो ये पिच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स पे डिपेंडेंट है, बैट्समैन के लिए बहुत कम चीज़ें रह गई क्योंकि बहुत मैसिव टोटल नहीं आ पा रहा है, बहुत मैसिव टोटल सिर्फ हमने ही दिया और जो बाकी टीम्स हैं वो इतना नहीं कर पा रही है, तो इस बार जो पिचेस की डिपेंडेंसी है कम्प्लीटली ऑन बॉलर्स है कि वो जितने पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे बहुत ज़्यादा बैट्समैन के लिए नहीं है यहाँ पर।
2: जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी अभी लास्ट मैच में इंडिया की टीम की शेफाली वर्मा ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन चीज़ यह है कि आप बॉल के ऊपर कितना चढ़ के बॉल खेलते हैं, उस शॉट को खेलते हैं, और बॉलर को कितना जल्दी आप समझते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द मैच। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जब आप एक कोई शॉट खेल रहे तो उसको अकॉर्डिंग टू बॉल खेले। जब आप नए नए आए हैं तो आप क्रॉस द बॉल खेलेंगे तो डेफिनेटली वो कैचेज होंगे, जैसे हमने हरमनप्रीत कौर का लास्ट टाइम देखा था, वो फ्लिक कर रही थी और फ्लिक करने की वजह से उन्होंने पॉइंट पे कैच दे दिया था, तो उस तरह की गलतियां हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि हांगकांग और इंडिया टीम अगर आमने सामने खड़ी है तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स इंडिया भारत टीम के सामने हैं। और उसके साथ साथ हम अगर बात करें उनके हांगकांग के प्लेयर्स के बारे में, तो वो प्लेयर्स इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, क्योंकि जितने मैचेस हमारे बैटर्स ने खेले हैं वो बहुत ज़रूरी है, उनको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है और वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आज के मैच में वो नहीं खेलेंगे तो आने वाले मैच में उनका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, और वो कॉन्फिडेंस इसी मैच से बिल्ड हो सकता है आज।
3: जी हाँ बिल्कुल, जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी पर, हम उनको बता दें कि अगर फर्स्ट बॉल 20 पर आप भी जुड़ना चाहते हैं और हमारे विशेषज्ञों से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, दिल्ली से बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो 0112342108 3, एक और नंबर है 2342108 5 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। जैसा कि वैशाली बता रही हैं कि शेफाली ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, तो इस साल 17 पारियों में 150.14 की स्ट्राइक रेट से 503 रन उन्होंने बनाए हैं, जिनमें 5 अर्धशतक भी शामिल हैं। गेंदबाजी की बात करें तो श्री चरणी भारत की सबसे सफल बॉलर रही हैं, 16 मुकाबलों में 29 विकेट चटकाए हैं उन्होंने, 6.71 की इकोनॉमी से रन दिए हैं और 19 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट है इस साल। मनोज, दो खिलाड़ियों पर थोड़ी चर्चा करते हैं, प्रतिका रावल हैं और एक भारती फूलमाली हैं। भारती फूलमाली बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2019 में ही उन्होंने डेब्यू किया था भारत के लिए, उसके बाद ज़्यादा मौके नहीं मिले। इस साल जमीमा चोटिल हो गई तब मौके उनको दिए जा रहे हैं और टीम प्रबंधन चाहता है कि लंबा खेलें, पहला मैच उनका भी बढ़िया नहीं रहा। प्रतिका रावल हम सब ने देखा ODI वर्ल्ड कप में बहुत प्रॉमिस दिखाया, चोट लगी, अब T20I डेब्यू किया है, इन दोनों के पास कितना बड़ा अवसर है।
0: देखिए भारती ने जिस तरह से WPL में परफॉर्मेंस किया, बहुत उम्मीदें उनसे जगी, लेकिन उसके बाद वो अपना ख्याति के अनुकूल या अपना जो है नेचुरल परफॉर्मेंस दे नहीं पाई। अगर आप 7 पारियां देखेंगे, आप उनका एक बार, जहां तक मुझे ध्यान है, अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए, कि मेरे का 20 प्लस का स्कोर उनका या 20. एक ही बार है, एक ही बार है, बाकी जो 5-6 पारियां उनकी बहुत ख़राब पारियां गई हैं, और जिस तरीके से आउट होने का जो तरीका है अगर आप देखें तो उस पर भी उनको काम करने की ज़रूरत है। रही बात प्रतिका, आपने प्रतिका का जिक्र किया, उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मुझे लगता है ये फेज़ आता है और वो निकल जाता है और आपको जो है बहुत ही अपनी गलतियों पर काम करके आप उसको

0: हार कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हम ये दो खिलाड़ी आपने नाम लिए हैं, इनको इनका चुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे स्मृति शेफाली या फिर दीप्ति को आप लें या श्री चरणी का आपने जिक्र किया, ये हमारे स्टार प्लेयर हैं और ये मैं समझता हूँ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय अन्य भारतीय खिलाड़ी करती हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम की बल्ले बल्ले होगी। फिर ये तो खैर एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ आपके सामने एसोसिएट टीमें हैं और हमें अच्छा लगेगा कि हम तैयार हों और जो हमारी कमियां रही हैं, जो चैलेंजेस हैं, नंबर तीन की पोजीशन है जैसे कि जेमिमा को नीचे खिलाना चाहते थे, जेमिमा अब यहाँ नहीं है, जसिका आई, कई प्लेयर इंजर्ड हो गई, फिर उसके बाद जो है फिनिशर कौन होगा हमारा क्योंकि ऋचा घोष पर आप अति निर्भरता ठीक नहीं है, आपके पास कम से कम दो या तीन अच्छे फिनिशर होने चाहिए, तो फिर बीच के ओवर्स, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है ये टूर्नामेंट उसके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा और अपनी कमियों पर गलतियों पर काम करने का एक अवसर प्रदान करेगा।
1: जी हाँ, फर्स्ट बॉल 20 में पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका।
2: आपको गुड इवनिंग, मैं वाई वेंकट रेड्डी, गांव लकवारों, जिला सूर्यापेट, तेलंगाना से बोल रहा हूँ।
1: जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या

0: इनसे मिलिए। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक तांबे से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि सहायक पुलिस निरीक्षक साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे। बहुत बहुत स्वागत विवेक जी।
2: थैंक यू सर। थैंक यू
1: विवेक जी। आपका जो पूरा काम है साइबर क्राइम के बारे में, हम उस पर बहुत तफसील से बात करेंगे, लेकिन किस तरह से आप विजिलेंस का काम भी करते हैं?
2: सर, विजिलेंस का काम ऐसा है जो हमारा रेगुलर पुलिसिंग है, रेगुलर पेट्रोलिंग हमारा होता है, पेट्रोलिंग व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, स्नैचिंग होता है, थेफ्ट होता है, तो स्ट्रीट पेट्रोलिंग हम बढ़ाते हैं, हमारे जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है वो सारे जगह जगह पे जाके चेकिंग्स करती है, जिससे स्ट्रीट क्राइम रोकने का हमारा ज़्यादा फोकस होता है। फिक्स पॉइंट्स होते हैं हमारे, हमारी व्हीकल्स घूमती है एंड हमारा कोशिश रहता है कि स्ट्रीट क्राइम कोई भी ना हो और पब्लिक में एक ऐसी फीलिंग रहे कि हम सेफ एंड सिक्योर है।
1: सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल साइबर क्राइम का निशाना लोग किस तरह से बनते हैं, उस बारे में आखिर वो कौन सी चीज है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए?
2: इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइबर क्राइम के विक्टिम कोई भी होता है, उसको या तो कोई कॉल आता है साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल का, या तो कोई मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक हो या कोई मैसेज हो, तो पहले तो हमें यह वेरीफाई करना जरूरी है कि हमें जो भी कॉल या जो भी मैसेज आया है वो जेन्युइन है क्या। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, उनके पास आधी अधूरी जानकारी आपकी हो सकती है। कोई आपको बोल रहा है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, कोई आपको बोल रहा है कि आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, कोई आपको बोल रहा है कि आपका मोबाइल का KYC अपडेट कर दो नहीं तो आपका मोबाइल नंबर आज के आज बंद हो जाएगा, कोई कह रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं आप पैसे भरो नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा,
1: कॉल कुरियर वाला
2: आपको कॉल करके बोल रहा है कि आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। तो आने वाला कॉल या आने वाला मैसेज ये जेन्युइन है या नहीं, ये वेरीफाई करना सबसे पहला जरूरी है।
1: ये चलते हुए फोन कॉल के बीच इसको कैसे वेरीफाई करें या इससे कैसे बचें?
2: देखिए, कोई कॉल करना ये उस सामने वाले के हाथ में, कॉल रिसीव करना उस पर कितनी

0: बात कर रहे हैं हमारे हाथ में। अगर कोई भी बैंक का एम्प्लॉई बोल के आपको कॉल कर रहा है तो आप डिस्कनेक्ट कीजिए। आपके पास मोबाइल में बैंकिंग ऐप है, आपके पास बैंक का वेबसाइट है, आप जिस बैंक में अकाउंट खोले उसके बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर का आपके पास नंबर होता है, आप उनको कॉल करके ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। आजकल ये जो कंसेप्ट है ना डिजिटल अरेस्ट टाइप का, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स जो इंडिया के बाहर बैठे हुए हैं, वो किसी तरीके से बाहर इंडियंस जो जॉब के लिए गए हुए हैं उनको रिक्रूट कर लेते हैं, बाय प्रेशर बाय हुक और क्रूक कर लेते हैं, एंड उसके थ्रू उनको इस साइबर क्राइम में डाल देते हैं। अब साइबर क्राइम करने वाले लोग क्या करेंगे कि जो भी विक्टिम है उसको कॉल करने के बाद कोशिश ये उनकी रहेगी कि वो किसी और से कनेक्ट नहीं हो, वो किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से कोई भी ओपिनियन ना ले, इस वजह से उसको डिजिटली अरेस्ट कर दे कि नहीं आपको अभी इमीडिएटली ये वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे क्रिमिनल जो ऐसे वो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के भी बैठते हैं एंड सिर्फ एक ग्लिम्स देते हैं आपको कि हाँ नहीं हम जेन्यून है, वो बस यही प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा कॉल हमारा SMS और ये जो चल रहा है वो जेन्यून है, ये फेक नहीं है। आदमी डर जाता है और वो उनके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। उनको ऐसा बोला जाता है कि आपने जो कुरियर किया हुआ है उसके अंदर ड्रग्स है, तो आपको इमीडिएटली नार्कोटिक डिपार्टमेंट से हम बात करें और आपको इतना इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा। लोग डर के मारे वो जो अकाउंट देंगे उसमें पैसे दे देते हैं। उस वक्त उस आदमी को ये लगता है कि कैसे भी करके मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। बट ये जिस टाइप का फ्रॉड है अगर इसको काउंटर करना है तो लोगों को ये भी तो समझना चाहिए कि अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमारे ऊपर ही एलिगेशन क्यों लग रहे। अगर हमने कोई कुरियर भेजा ही नहीं है तो हमारे ऊपर इस तरीके, आपको पहले तो वो कॉल डिस्कनेक्ट करके आपके लोकल पुलिस स्टेशन के नंबर पे कॉल करना चाहिए। जैसे अगर आप मुंबई में है तो आप 100 नंबर है, आप अदर कमिश्नरेट्स में 112 है कहीं पे, तो आप जो टोल फ्री नंबर्स है हेल्पलाइन नंबर्स है उन पे कॉन्टैक्ट करके वेरीफाई कीजिए कि ये जेन्युइन है या नहीं है।
1: मान लीजिए किसी का कॉल आया, हमको संशय हुआ, हमने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, या मान लीजिए साइबर क्राइम हो गया है और तब हमने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, क्या सचमुच वहां मदद मिलती है और किस तरह की ये मदद होती है?
0: सर पर्टिकुलरली साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो है 1930।
1: जी,
0: कोई भी विक्टिम जिसके साथ किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसको सबसे पहली चीज करनी चाहिए उसने 1930 पे कॉल करना चाहिए
1: और रिपोर्ट 1930
0: ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है ऑल ओवर इंडिया में। और अगर वो नंबर बिजी आ रहा है तो आप cybercrime.gov.in इस पोर्टल पे भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। द मोमेंट आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है और उसके ऊपर काम इंस्टेंट शुरू हो जाता है,
1: तुरंत
0: शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा रेगुलर हेल्पलाइन नंबर होता है हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटी में, जैसे मुंबई में मुंबई पुलिस का 100 नंबर है, वैसे हमारे नेबरिंग सिटी जो है मीरा भाईंदर कमिश्नरेट उसमें 112 है, काफी जगहों पे 112 या 100 ही है। तो जैसे आप उस पर कॉन्टैक्ट करते हो वहां से भी आपको हेल्प मिलता है, आप ये चीज के लिए श्योर हो जाते हो कि ये जेन्युइन है या फेक है। तो वो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपके साथ सच में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, जो इंडिविजुअल आपसे बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर बन के वो सच में है या फेक है, ये वेरीफाई करना जरूरी है और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलता है इन दो हेल्पलाइन नंबर्स के ऊपर।
1: अच्छा, आजकल एक चीज और बहुत देखी जा रही है विवेक जी के सब लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और अमूमन हम जानते हैं कि +91 से शुरू होने वाले कॉल तो हमारे देश के भीतर से आ रहे हैं लेकिन बहुत अनजान कोड से नंबर आते हैं, जैसे पड़ोसी देश का नंबर है +92 जो कंट्री कोड है, उसके अलावा भी बहुत अनजान कंट्री कोड से आते हैं और जब हम गूगल करके देखते हैं तो कोई अफ्रीकन कंट्री मिलती है, कोई यूरोपियन कंट्री, अमेरिका भी मिलता है कई बार। ऐसे कॉल से क्या नुकसान हो सकता है? हमने उठा लिया या मैसेजेस से या व्हाट्सएप कॉल से या व्हाट्सएप मैसेजेस से हमारा क्या बिगड़ सकता है?
0: जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो प्रिकॉशन लेते हैं कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सके, वो ट्रेस ना किया जा सके इसके लिए VOIP कॉल का सहारा लेते हैं। अब ये VOIP कॉल्स करने के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो ये फैसिलिटीज देती है कि आप बस उनको एक नॉमिनल अमाउंट पे करो, वो आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर से आप व्हाट्सएप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉल्स 100% कॉल्स बाहर कंट्री से ही आ रही, वो इंडिया से भी ओरिजिनेट होती है काफ़ी कॉल्स एंड काफ़ी कॉल्स राउट होके इंडिया में आती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका नुकसान ये, नुकसान तो कुछ होना नहीं है, वो आपके ऊपर साइबर क्राइम करने के लिए ट्रैप सेट करने का कोशिश करेगा उस कॉल को करके या उस मैसेज को करके। वो बस इसके लिए प्रिकॉशन ले रहा है कि उस तक पहुंचना आसान नहीं हो, इस वजह से वो इस तरीके के नंबर्स यूज कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि +92 यूज कर रहे, +44 यूज कर रहे, ये कर रहे वो। अब यहां तक ऐसा है कि आपको VOIP कॉल नॉर्मल नंबर से भी आ सकता है, नॉट नेसेसरी आपको +92 +44 या अदर नंबर से आना है। वो जब आपको कॉल आ रहे

0: है, यही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको वेरीफाई करें कि ये कॉल जो इंडिविजुअल कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। अब ये फ्रॉडस्टर ये अलग अलग नंबर से जो कॉल कर, उठाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपको उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करने। आपको वो नंबर भी आप जो 1930 पे रिपोर्ट कर सकते कि इस तरीके मुझे मैसेज आ रहे हैं, ताकि उनके ऊपर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है हमारा I4C करके सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सेंटर है दिल्ली में जो इसके ऊपर काम करता है, जो ये डेटा कलेक्ट करता है और उसके ऊपर गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स सबमिट करते कि किस तरीके के मैटर्स जो है हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं।
1: अगर हमारे पास किसी इस तरह के नंबर से कॉल आता है तो क्या हम मैसेज करके ये सूचना दे सकते हैं किसी एजेंसी को कि भाई हमारे पास यहां से कॉल आ रहे हैं?
0: जैसे मैंने कहा कि 1930 पे कॉल करके आप पोर्टल पे वो आए हुए जो मैसेजेस है उनके स्क्रीनशॉट तक अपलोड कर सकते हैं। उसी पे हमारा चक्षु करके एक पोर्टल है जहां पे स्पेसिफिकली आप नंबर्स को भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये नंबर से हमें कॉल आई है।
1: जिससे पोर्टल का एड्रेस दीजिए,
0: वही सेम जो हमारा cybercrime.gov.in पोर्टल है उसी से वो लिंक्ड है, उसके ऊपर एक पेज है जहां पे आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट डालिए। एंड काफी ट्राई ने अब जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें स्ट्रिक्ट कर दिए है, जिस वजह से जो ये स्पैम मैसेजेस भेजे जाते थे उसके ऊपर भी काफी हद तक रोक लगी है अभी।
1: जी विवेक जी, मुझे ये बताइए कि और क्या क्या रूप हैं साइबर क्राइम के? जैसे हमने ये देखा कि एक कुरियर फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल, वो क्या है?
0: सर, कुरियर फ्रॉड ऐसा है कि जैसे आजकल हर किसी का कोई ना कोई पार्सल कोई तो भेजता है या कोई तो आना ही होता है। तो मान लीजिए आपको कॉल आ गया कि हम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं एंड आपके जो भी पार्सल है कुरियर आपने जो भेजा उसमें ड्रग्स मिले, तो आदमी डर जाता है एंड वो आपको बोलते हैं कि इमीडिएटली आप जो है हमें लाइव वीडियो कॉल पे आइए, आपको इतना इतना अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इमीडिएटली अकाउंट में भरना पड़ेगा। लोग एक्चुअल में यूनिफॉर्म में भी बैठते हैं डराने के लिए, और अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई किया जाएगा, आपको अरेस्ट हो सकता है। देन वो इमीडिएटली कुछ ऐसे फॉर्म आप बना देंगे, ड्राफ्ट कर देंगे, आपका नाम डाल के सेट फॉर्मेट होते हैं, फिर आपको व्हाट्सएप करना शुरू करते हैं कि आपके अगेंस्ट ये केस रजिस्टर हो चुका है, आपके अगेंस्ट ये वारंट है। तो डरा के लोगों से पैसा निकालना ये ऑब्जेक्टिव है। ये इस तरीके से भी करते हैं कि आपका ये जो नंबर है आपके नाम से कुछ सिम कार्ड मिले हैं, ऐसी ऐसी कोई बड़ी केस हुई है जिसमें आपके नाम से जो सिम कार्ड यूज हुए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉलिंग के लिए यूज किए गए हैं, जिसमें साइफनिंग ऑफ मनी हुआ है इसमें बहुत सी, और वो कुछ एक्चुअल जो केसेस होते हैं उनके न्यूज उनको भेज देते हैं रेफरेंस के लिए, और डरा के उनसे भी इस तरीके से पैसे निकाला जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्कैम ऑलरेडी चल रहा है जिसको हम लोन ऐप स्कैम कहते हैं, कि लोग मोबाइल पे लोन ऐप्स जो रहते हैं उनके एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं एंड लोन लेते हैं छोटे मोटे अमाउंट के। अब जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं तो उसके अंदर स्पाई ऐप्स होते हैं जिससे आपका कॉन्टैक्ट्स, फोटोग्राफ, सारी चीजें सामने वाले के पास चली जाती है, फिर वही चीजें वायरल करेंगे ये डरा के आपसे और पैसे निकाले जाते हैं। अगर आपने 5,000 का लोन लिया तो आपसे 10,000 मांगे जाते हैं, और ये तब तक चलता है जब तक आपसे जितना पैसा निकाला जा सकता है निकाले, एंड बाद में आपको वो ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा और एक फ्रॉड ऐसा चल रहा है जिसको हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बोलते हैं, कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आपको कुछ रिव्यूज देने हैं, आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा अमाउंट, जैसे शेयर मार्केट की तरीके ऐसे इस तरीके से आपको मैसेज करते हैं, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाइवर्ट किया जाता है जहां पे आपको एक्चुअल में कोई ऐप इंस्टॉल करवाते हैं जिसमें आपको दिखता है कि आपने 5,000 इन्वेस्ट किए, आपको प्रॉफिट हो रहा है। इनिशियली वो आपको थोड़ा पैसा रिक्वेस्ट देके निकालने को भी देते हैं, जैसे 5,000 इन्वेस्ट किए तो 10,000 आपने निकाले आप खुश हो जाते हो, फिर वो अमाउंट 2,00,000, 5,00,000, 10,000 तक लेके जाते हैं, फिर सडनली वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो लोगों के साथ ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी हो रहा है, 5-5, 10-10 लोगों ने 50-50 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे डाले हुए, तो लोग थोड़ा सा ग्रीड के चक्कर में विक्टिम बन जाते हैं। तो ये ग्रीड जो है वो मेन फोकस होता है साइबर क्रिमिनल्स का, कि थोड़ा सा कोई ल्यूक्रेटिव ऐसा ऑफर दो कि सामने वाले को लगे कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, यहां पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस वजह से साइबर फ्रॉड ज्यादा होता है। तो ये ग्रीड को कहीं पे रोकना जरूरी है।
1: जी, बहुत जरूरी बातें आप बता रहे हैं विवेक जी, और यहां एक गाने की जगह बनती है, तो बताइए कि अब आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं अपने सुनने वालों के लिए?
0: अभी लेटेस्ट जो आया है ओ सजनी रे, लापता लेडीज का सॉन्ग है।
1: जरूर सुनते हैं लापता लेडीज फिल्म का ये गाना।

ये था साइबर क्राइम विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक तांबे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: हवा महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका शराफत, निर्देशिका अचला नागर।
1: ये क्या हो रहा है?
2: क्यों
1: बे, बोलता क्यों नहीं? चल खड़ा हो जा।
2: पैंट फट गई है।
1: टांग तो नहीं टूटी? चल खड़ा हो। अरे ये क्या, खून निकल रहा है नाक से।
2: बहुत मारा पब्लिक लोग ने।
1: मारते नहीं तो क्या पूजा करते तेरी? किधर है पाकिट, निकाल। ये रहा। किसका है भाई ये बटुआ?
2: मेरा है साहब, मेरा है साहब।
1: आपका? क्यों भाई छोकरे, इन्हीं साहब का पाकिट मारा था?
2: साहब पहली बार ही किया ऐसा धंधा।
1: बस बंद लीजिए साहब, बटुआ लीजिए अपना।
2: सही बोलता हूँ साहब, सच्ची बोलता
1: हूँ। चुप, एकदम चुप। हाँ मिस्टर, बटुआ खोल कर देख लीजिए, सब ठीक है ना?
3: ठीक ही होगा साहब, इसको बाहर निकालने का मौका ही कहाँ दिया लोगों ने?
4: अजी वो तो मैंने देख लिया और वही पकड़ लिया कमीने को रंगे हाथों।
3: ससुरा भागने लगा था हाथ छुड़ा के, वो तो मैंने एक दिया घुमा के।
1: ओके ओके ओके मिस्टर, आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा।
3: पुलिस स्टेशन जाने दो साहब, मेरे को मेरा बटुआ मिल गया, अब बेकार लफड़ा करने से क्या फायदा?
1: क्यों, रिपोर्ट नहीं लिखवानी तुम्हें?
3: नहीं बाबा, अपने को पुलिस के चक्कर में पड़ना ही नहीं, काम धंधे को पहले ही बहुत कोड़ी हो गया।
1: चलो चलो जाओ, हटो, चलो जाओ।
5: मैं भी जाऊं साहब।
1: ए तू किधर जाता है? चल थाने।
5: माफ कर दो साहब, पहले ही बहुत मार लिया पब्लिक ने, ये देखो सारी कमीज में खून ही खून है साहब।
1: खून तो बेटा मैं नहीं छोड़ूंगा तेरा, लोगों की जेबों को अपना बैंक समझ रखा है।
5: साहब साहब पहली बार ही किसी की जेब को हाथ लगाया था साहब।
1: पहली बार किसी की जेब को हाथ लगाया कि पहली बार पकड़ा गया?
5: सच्ची बोलता हूँ साहब, बाप कसम पहले कभी ऐसा धंधा नहीं किया साहब।
1: बाप की झूठी कसम खाता है। नाम क्या तेरा?
5: रतन।
1: बाप का नाम?
5: जी रामचरण दास।
1: रहता किधर है?
5: वो रेलवे लाइन के बाजू में जो नाला है उधर।
1: वो मजदूर बस्ती में?
5: हाँ साहब।
1: मजदूर बस्ती में? क्या नाम बताया बाप का?
5: जी रामचरण दास।
1: ये वो तो नहीं जिनका एक पैर कटा हुआ है?
5: हाँ साहब, 2 साल पहले मिल की मशीन में आके कट गया था।
1: मालूम है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे बाप को। वही ना जो बस्ती में भजन गाते हैं भगत जी?
5: हाँ साहब, कोई कोई

0: भगत जी भी बोलते हैं उनको।
1: कोई कोई नहीं, सारे लोग भगत जी कहते हैं। और तू भगत जी जैसे शरीफ आदमी का बेटा और जेब कतरा, चल मेरे साथ।
0: किधर को साहब?
1: अबे चल। चल बैठ जाओ उधर।
0: साहब ये तो
1: ले पानी पी।
0: जी साहब।
1: हाँ हाँ पानी पी और मुंह भी धो ले साथ में।
0: साहब ये तो किसी का घर है क्या?
1: किसी का नहीं, मेरा घर है। तू भगत जी का बेटा है इसलिए तुझे थाने नहीं ले गया। हाथ मुंह धोकर पानी पी और इधर बैठ जा। अच्छा, मैं अभी आता हूँ।
0: अच्छा सर।
1: ये ले।
0: ये क्या सर?
1: कमीज है और क्या, तेरी कमीज फट गई है ना, चल इसे पहन ले।
0: फटी तो पैंट भी है सर।
1: हाँ हाँ लेकिन तेरे नाप की कोई पैंट तो है नहीं मेरे पास। अच्छा ठहर, क्या क्या पजामा लेके आता हूँ।
0: आप बहुत अच्छे हैं साहब।
1: अच्छा अच्छा कुछ नहीं बे, ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि तू भगत जी का बेटा है और मैं भगत जी की बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हारी बस्ती में सबसे शरीफ आदमी है वो। ये ले पजामा पहन ले, चाय पिएगा?
0: जाने दो साहब।
1: हाँ हाँ जाने तो दूंगा, पहले तुझसे जरा बातें तो कर लूं। तू सबसे बड़ा लड़का भगत जी का?
0: नहीं साहब, मेरे से बड़ा एक और था।
1: था मतलब?
0: वो भाग गया साहब, जब बाप का पैर कटा और घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो एक दिन वो चुपके से भाग गया।
1: वाह क्या कलयुग का श्रवण कुमार था। उसके बाद तू है?
0: जी नहीं, एक बहन है मेरे से बड़ी।
1: शादी हो गई उसकी?
0: हो गई थी, मगर उसका आदमी दारू का धंधा करता था साहब, इसलिए पकड़ा गया। साल भर की हो गई।
1: वाह वाह वाह शाबाश, ये सारे नमूने भगत जी के भाग में बदे थे। आजकल बहन कहाँ है?
0: हमारे घर में है साहब, वो छोटे छोटे दो बच्चे लेकर कहाँ जाती अकेली।
1: तीसरा नंबर तेरा है
0: जी।
1: और तेरे बाद?
0: मेरे बाद एक भाई है, उसके पीछे तीन बहने हैं।
1: भाई क्या करता है?
0: कुछ नहीं साहब।
1: कुछ नहीं तो मतलब सब लोग भगत जी की छाती पर बैठकर खाते हो। माँ, तुम्हारी माँ कुछ काम करती है?
0: बर्तन भांडे मांजने जाती है साहब, दो तीन घरों में।
1: भगत जी को मिल से मुआवजा भी तो मिला होगा पैर कटने का?
0: हाँ साहब, उसमें से थोड़ा सा बहनोई के मुकदमे में खर्च हो गया और बाकी मंदिर को चढ़ावे में दे दिया
1: भगत जी ने।
0: हाँ साहब।
1: वाह वाह वाह क्या श्रद्धा है, क्या देवता आदमी है। जिनकी तिजोरियां भरी होती है उनकी जेब से तो चवन्नी तक नहीं निकलती मंदिर के नाम पर। अरे भगत जी है सो, मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे देवता के घर राक्षस कहां से आ गए। एक वो हैं जिनका मुंह खुलता है तो जबान से राम राम निकलता है, और एक तुम हो जो चोरी के इल्जाम में सड़कों पर जूते खाते फिरते हो। शर्म आनी चाहिए, अब सिर झुकाकर क्या बैठा है? उधर देख, उधर देख, वो दीवार पर तस्वीर देखता है, जानता किसकी है? मेरे पिताजी की है। मैं 3 बरस का था तभी चल बसे थे, उनकी सूरत बस इस तस्वीर में ही देखी है मैंने, सिवाय इस तस्वीर को माला लगाने के और कोई सेवा नहीं कर सका मैं अपने जन्मदाता की। इतना तरसा हूं जिंदगी भर बाप की परछाई को, और बाप ही क्या, भाई बहन भी नहीं, बस माँ ने किसी तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। लेकिन तुम माँ बाप भाई बहनों की कदर क्या जानो, सब दिया है ना राम जी ने, इसीलिए आज बेखटके बाप की इज्जत को बाजार में उछालता है। सोचता हूं भगत जी को पता चलेगा तो उनकी आत्मा को कितना दुख होगा। कैसे तू इतने भले आदमी के मन को चोट पहुंचा सकता है?
0: साहब एक बात बोलूं?
1: क्या बात है?
0: आप मेरे बाप को इतना शरीफ आदमी मालूम है क्यों बोलते हो?
1: क्यों?
0: क्योंकि वो आपका बाप नहीं है।
1: क्या मतलब?
0: हाँ साहब, क्योंकि वो मेरा बाप है।
1: क्या बकवास है
0: साहब, काले आदमी के नजदीक सांवले आदमी को बैठाओ तो वो गोरा ही दिखेगा।
1: तू कहना क्या चाहता है?
0: मैं आपकी नजर में चोर बदमाश हूँ साहब, पाकेट मार हूँ, इसीलिए आपको मेरा बाप बहुत शरीफ दिखाई देता है। मेरे कसूर के लिए तो पुलिस है, थाना है, जेल है, और ये नहीं तो सड़क पर जूते मारने के लिए पब्लिक है, मगर मेरे बाप के कसूर के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है।
1: दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? उस संत आदमी के खिलाफ क्या बकवास कर रहा है? खिला पिला कर इसलिए जवान किया तुझे?
0: जवान किया? कैसा जवान किया, वो तो आपको दिखता ही है साहब, बदन पर फटे हुए कपड़े हैं, न खाने का ठिकाना न रहने का, जिधर जाता हूँ लोग दुत्कारते हैं, नौकरी मांगता हूँ तो गाली मिलती है साहब, जेब काटता हूँ तो जूते मिलते हैं, किसी को जवानी बोलते हैं आप?
1: What nonsense! करतूतें तेरी और दोष भगत जी का। जब माँ बाप ने जन्म दिया है तो क्या जिंदगी के ऊपर खिलाने का ठेका भी ले लिया?
0: लेकिन साहब मैं पूछता हूँ काहे को दिया जन्म, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो।
1: Shut up! शर्म नहीं आती इस तरह की बकवास करते? माँ बाप की इज्जत करना तो दूर, उनके खिलाफ जो मुंह में आगे बकेगा।
0: माफ करना साहब, माफ करना साहब, मैं अनपढ़ गंवार आदमी।

0: साहब, बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल। जो दिल में आता है बिना सोचे बोल देता हूँ साहब,
1: लेकिन तेरे
0: माफ।
1: दिल में इतना मैला भर कहां से गया?
0: धीरे धीरे करके जमा हो गया है साहब, जब से हो संभाला तब से बराबर जमा हो रहा है साहब। और गरीब आदमी हूं ना, इसलिए होश जल्दी ही संभाल लिया था। जब मैं 8-10 बरस का था साहब, तब एक रात अचानक बड़ा हो गया था मैं। मैंने अपने माँ बाप की बातचीत सुनी थी। उस रात अंधेरे में जो कुछ सुना था साहब, वो आज भी याद है मुझे, क्योंकि उसी की वजह से जिंदगी में आज तक अंधेरा है साहब।
2: अरे सुनती है रतन की अम्मा, आज वो मोटर वाले सेठ लोग फिर आए थे। अरे वही बिना संतान वाले।
3: कब?
2: संजय को मैंने गली के नुक्कड़ पर ही रोक लेना।
3: फिर वही बात कह रहे होंगे।
2: और क्या, साथ में वो समाज सेवक भी था।
3: लेकिन जब हमने एक बार कह दिया कि हम अपने बेटे को देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बेर बेर आने की जरूरत क्या है? अरे कहीं दूध पूध भी बेचे जावे हैं।
2: अरे कलयुग है ये कलयुग, दूध का बिकना तो तू देख ही रही है रोजाना, पूत का बिकना मैं देखा है आज।
3: क्या मतलब?
2: अरे वो गिरधरलाल नहीं है? अरे वो जो मिल के बॉयलर में काम कर रहे है।
3: हाँ हाँ, वही जो राशन की दुकान के ऊपर रह हुए है।
2: हाँ हाँ वही।
3: अच्छा, क्या हुआ उसको?
2: अरे मती भ्रष्ट हो गई है उसकी, और का बेटे को बेच दिया है उसने।
3: मतलब वो मोटर वाले सेठ उसका लड़का ले गए?
2: और का, इतने दिनों तक अपने रतन के पीछे पड़ रहे, अब कोई पूछे भाई तुम्हारे बाल बच्चा नहीं हुआ तो हम क्या करें? पर हमारे ना करने से कहा समाज सुधारक ने गिरधर लाल का लड़का दिलवा दिया उनको। श्री राम श्री राम।
3: कौन सा वाला लड़का दिया है?
2: अरे वही जो अपने रतन के बराबर है, 8-9 वर्ष का।
3: हाय हाय, कैसा कलेजा है माँ बाप का, पैदा करके संतान और लोगों को सौंप दी।
2: जब ही तो कहता हूँ कलयुग है ये कलयुग, माँ बाप लड़का औरों को सौंप कर कह रहे हैं इसी में लड़के की भलाई है, सुख चैन से रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहरेगा, खूब पढ़ेगा और जिंदगानी बन जाएगी उसकी।
3: मतलब लड़के की जिंदगानी ही सब कुछ हो गई, माँ बाप का फर्ज तो कुछ हुआ ही नहीं।
2: अरे उनसे पूछो तो यही फर्ज है जो उन्होंने किया है।
3: और तो और, जो कल को लड़का वापस असली माँ बाप के पास लौट आया तो?
2: ऐसा थोड़े ही होता है, पक्की कानूनी कार्रवाई हुई है, अब तो लड़का गया सेठ का वंश बढ़ाने।
0: सेठ का वंश बढ़ाने मैं भी जा सकता था साहब, मगर कोई पूछे आज 12-15 बरस बाद मैं क्या हूं? एक चोर। मैं क्यों हूं? क्यों? आधा भूखा हूं, आधा नंगा हूं, अनपढ़ हूं। और जब ये सवाल अपने पाप से करता हूं कि क्यों पैदा किया मुझे, तो बताओ कौन सा पाप करता हूं साहब? साहब आप तो बहुत भारी पढ़े लिखे समझदार सरकारी अफसर हैं, आप ही बताइए किसका बाप शरीफ है, मेरा या उस लड़के का जो आज सेठ का लड़का बनकर ठाट से मोटर में घूमता है? उसके बाप ने उसे जिंदगी दी, अब मेरे बाप ने क्या दिया मुझे? कहां धकेला मुझे? सड़क पर लोगों के जूते खाने के लिए। मेरा बड़ा भाई घर से भागता नहीं तो और क्या करता? अभी तो देखना साहब, मुझको एक दिन जेल हो जाएगी, छोटी बहनें बड़ी होकर इस उसके साथ भाग जाएंगी। अभी तो बाप की सिर्फ टांग ही कटी है साहब, एक दिन नाक भी कटेगी। अब शायद उस दिन भी मेरे बाप को शरीफ आदमी कहेंगे साहब, मगर मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि शराफत बच्चे पैदा करने में नहीं है साहब, बच्चों की परवरिश करने में है। परवरिश करने में।

अभी आपने लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका सुनी शराफत। निर्देशिका थी अचला नागर। ये नाटिका विविध भारती की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों को। नमस्कार, सविता सिंह का।

जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया और पूजा की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। जब तक है जान फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

जब तक है जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राघव माथुर, शिल्पा रॉय की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, ए आर रहमान के तर्ज थे। बार बार देखो फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं अमर आरशी, बादशाह और नेहा कक्कर की आवाजों में।

बार बार देखो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारा अर्शी नेहा कक्कर बादशाह की आवाजें थी। गीतकार थे अमरीक सिंह और कुमार, संगीतकार जैसलिन रॉयल। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर से सुनवाएंगे गाने।

0: उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
5: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
6: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
6: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
6: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वाज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर।

0: फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया की आवाज में। समीर के बोल थे हिमेश रेशमिया का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
2: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
2: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
3: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने

0: सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
2: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
3: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
2: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी

0: दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में MSME के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

आपके लिए कार्यक्रम में आपने अभी सुना नया रास्ता फिल्म का ये गाना, जिसे आशा भोसले ने गाया था, साहिल लुधियानवी ने लिखा था और एन दत्ता ने तर्ज बनाई।

साथी लीजिए अब सुनिए कन्यादान फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हसरत जयपुरी के हैं, धुन शंकर जयकिशन की।

कन्यादान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की धुन थी। आपके लिए कार्यक्रम में आपको अब सुनवा रहे हैं लीडर फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

शकील बदायनी की ये रचना है नौशाद की तर्ज।

समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।

घराना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी के बोलते रवि का संगीत था। नाइट इन लंदन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर महेंद्र कपूर के आवाज़ों में लीजिए।

0: लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में नाइट इन लंदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था ये गीत अभी आपने सुना।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
6: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
1: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
6: स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
1: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
6: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
7: इतना

मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश के आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे खयाम। लीजिए अब सुनिए ब्लफ मास्टर फिल्म का गीत। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है।

यार हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। प्यार की

0: प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया।
1: इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सविता सिंह को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन एक उत्तम अभिनेता को
1: रात भर दाढ़ पेलते पेलते हर मास टूटने लगा। ये भी कोई धंधा है?
2: पहले जब तुम लोग महिम घसल का काला धंधा करते थे तब तुम्हारा हार नहीं टूटता था हा? और अब हमारे साथ मछली मारने का ये इज्जत का धंधा चालू किया तो तुम्हारा हार टूटने लगा। चालो
1: धंधा सब धंधा है, चाहे मछली मारो चाहे चोरी करो।
2: मारे बट्टा वाह, बहुत होशियार हो गया।
3: उस्ताद ये नया पंछी कौन है?
2: प्रति नहीं देखता, नया इंस्पेक्टर आने वाला था वही होगा शायद।
1: अच्छा आदमी दबंग लगता है।
2: अबे बहुत देखे दबंग, हाथी घोड़े बहे गए गधाइया पूछे कितना पानी। ला मछली ला। ए पदा, ये मछली सीधा कालीगंज के महाजन की गद्दी पर पहुंचा दे और कहना कि हिसाब साफ कर दे। हाँ
3: अच्छी बात है उस्ताद।
0: जी हाँ, आज जिक्र है बंगला सुपरस्टार उत्तम कुमार का, जो हिंदी की कुछ गिनी चुनी फिल्मों में नजर आए थे। एक उत्तम अभिनेता का हिंदी फिल्मों में इतना कम नजर आना हमारा दिल तोड़ देता है, और उन्हें देखने के लिए रुख करना पड़ता है बंगला सिनेमा का।

की कुछ गिनी चुनी फिल्मों में नजर आए थे। एक उत्तम अभिनेता का हिंदी फिल्मों में इतना कम नजर आना हमारा दिल तोड़ देता है और उन्हें देखने के लिए रुख करना पड़ता है बंगला सिनेमा का।

दोस्तों, आपकी ये रेडियो सखी उत्तम कुमार की बंगला फिल्मों का जिक्र ज्यादा करेगी, लेकिन गीत सुनवाएगी उनकी गिनी चुनी हिंदी फिल्मों की।

उत्तम कुमार का जन्म सन 1926 में हुआ था। उनका असली नाम था अरुण कुमार चटर्जी। अपने शुरुआती दौर में उत्तम कुमार ने कलकत्ता में बंदरगाह कमिश्नर के दफ्तर में क्लर्क की नौकरी भी की थी। बाद में वो स्टार थिएटर समूह में अभिनेता बन गए। सन 1949 में माया दूरे नामक एक फिल्म से बतौर एक्स्ट्रा शुरू हुई उत्तम कुमार की अभिनय यात्रा, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी।

कुमार का बंगला सिनेमा में सबसे बड़ा योगदान था थिएटर की नाटकीय अदाओं से सिनेमा को मुक्त करना। सहज अभिनय ने उत्तम कुमार को शीर्ष पर पहुंचा दिया। उन्हें जिस फिल्म ने एक चमकता हुआ सितारा बनाया उसका नाम है 75.5। निर्मल डे की इस फिल्म से उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी बनी।

सन 1949 में नवेंद्र सुंदर बनर्जी के निर्देशन में बनी उत्तम कुमार की पहली फिल्म रिलीज हुई थी और बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के टाइटल्स में उत्तम कुमार का नाम अरुण कुमार दिया गया था। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि अरुण कुमार नाम शुभ नहीं है, इसलिए दूसरी फिल्म मर्यादा में उन्होंने अपना नाम अरुण कुमार रख लिया। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई और उत्तम कुमार एमपी प्रोडक्शंस में नौकरी करने लगे। दरअसल नई नौकरी में पुरानी असफलताओं को भुलाने के लिए एक बार फिर उन्होंने एक नया नाम रखा, उत्तम कुमार। ये नाम उनके लिए उत्तम सफलता लेकर आया। एमपी प्रोडक्शंस कंपनी से प्रदर्शित उनकी ये फिल्म बोशु परिवार सुपरहिट रही।

1967 में आलो सरकार की फिल्म छोटी सी मुलाकात के जरिए उत्तम कुमार आए हिंदी सिनेमा में।

वैजयंती माला और उत्तम कुमार की जोड़ी वाली ये फिल्म बहुत सफल नहीं रही थी और इसके बाद उत्तम कुमार दोबारा बांग्ला फिल्मों में लौट गए थे।

0: अभिनेता उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का दिलीप कुमार कहा जाता है। वे बड़े ही मेहनती अभिनेता थे और पर्दे पर इतने सहज, सरल और प्रभावशाली नजर आते थे कि पूछिए मत।
1: अरे महिम प्रधान, इस गंदी नीच औरतों की बुस्ती में तुम
2: कायदे से मधु, इज्जत आबरू सबकी है
1: और इन लोगों की तो इज्जत आबरू है ही नहीं।
2: मैं
1: साले, सब कुछ तो छीन लिया तूने। इसे औरत को तो छोड़ दिया होता मेरे लिए, यहाँ भी नजर टिका दिया।
2: भाग जाएंगे, भाग साले।

0: कुमार सही मायनों में असाधारण अभिनेता थे।
1: काहे अपनी जिंदगी खराब करते हो बाबू, ये शराब जानवर बना देती है।
2: अरे जानवर न बनूं तो ये कुत्ते साले कच्चा खा जाएंगे। ला ला बैठी ला। और देख कल होली है, जबरदस्त हंगामा होना चाहिए। ये ले, ये पैसा ले और बस्ती में जाके बांट दे।
0: हरा नौशूर और शब्दपति आदि बांग्ला फिल्मों में वो एक रूमानी नायक बने, तो दूसरी तरफ विचारक, नेकलेस, चिड़ियाखाना, अपरिचित, नायक, शिल्पी, बड़ी दीदी, श्याम मोचन, साहब बीबी गुलाम, सोनार हारिन आदि फिल्मों में उनकी प्रतिभा खूब खूब चमकी।
3: सलाम मधु बाबू।
2: अरे आओ आओ नसरुद्दीन। सुनाओ बेटे की तबीयत कैसी है?
3: क्या बताएं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सदर ले जाओ, लेकिन कैसे ले जाएं? थोड़ा सा धान था वो भी पीतू आकर उठा ले गया। कुछ पैसे बाकी थे माहिम बाबू, उसी के बदले में ले गया।
2: बोलो सर। 20 रुपए दे दे नसरुद्दीन को।
3: अब आपसे और लूं?
2: अरे रखो रखो नसरुद्दीन, मेरे पास रहे तो दारू शराब में ही जाएंगे, 10-20 रुपए अच्छे कम में लग जाएं तो बुरा क्या है। रखो रखो।
3: कैसे शुक्रिया अदा करूं मधु बाबू। ए बता भैया, जरा नाव पर नजर रखना, मैं दवाई लेकर अभी आया।
2: ए बेटू, अरे नाव क्यों खोल रहा है?
4: मालिक का हुक्म है, पता है कितना पैसा बकाया है नसरुद्दीन पर?
2: अबे तो उसका धान नहीं उठा ले गया?
4: 4 बोरी धान में क्या सारा कर्जा चुकता हो गया? मालिक ने कहा है जहाँ भी नसरुद्दीन का नाम मिले फौरन कब्जा कर लो।
3: ए बिदु भैया, ऐसा जुलूम मत करो, मैं धीरे धीरे सब पैसा चुका।
2: इसके नाव छोड़ दे, बाकी पैसा भी ये दे देगा। मैं इनसे कह देना मेरी जमानत है।
4: तेरी जमानत कौन देगा, तेरा बाप?
2: बाप तक पहुँचते हैं।

0: सत्यजीत रे की फिल्म नायक और चिड़िया खाना और सुनील बंद्योपाध्याय की एंटनी फिरंगी उत्तम कुमार की सर्वोत्तम फिल्में मानी जाती हैं। उत्तम कुमार ने कुछ ज्यादा हिंदी फिल्में नहीं की, फिर भी उनकी कुछ प्रमुख हिंदी फिल्में हैं। सन 1974 में आई शक्ति सामंत की फिल्म अमानुष, जिसमें नायक उत्तम कुमार थे, नायिका थी शर्मिला टैगोर और संगीतकार थे श्यामल मित्रा।
1: ये सब क्या हो रहा है? चलो चलो चलो अपनी जगह में, चलो चलो।
2: बच्चों को क्यों डांटती हो? इन्हें मैंने बुलाया है।
1: तुम कौन होते हो इन्हें बुलाने वाले? क्या लगते हैं तुम्हारे?
2: ये तुम मेरे गांव के बच्चे हैं ना।
1: शराबी और आवारा लोगों के सिवा इस गांव में तुम्हारा कोई नहीं है।
2: रेखा,
1: तुम जैसे जानवर, तुम जैसे गिरे हुए आदमी का असर इन बच्चों पर क्या होगा, ये भी कभी सोचा है?
2: मैं जानवर हूँ, हाँ, गिरा हुआ आदमी हूँ, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इस घृणा और नफरत ने मुझे क्या बना दिया है?
1: तुम्हारे बारे में सोचने की ना मुझे जरूरत है ना ही फुर्सत। आइंदा या ना हो तो अच्छा होगा।

सन 1977 में शक्ति सामंत की ही फिल्म आनंद आश्रम में नजर आए उत्तम कुमार। इस बार भी नायिका थी शर्मिला टैगोर, संगीतकार भी श्यामल मित्रा।

सन 1979 में भीमसेन की फिल्म दूरियां में सुदर्शन चेहरे वाले नायक उत्तम कुमार बंगला सौंदर्य की प्रतिमूर्ति शर्मिला टैगोर से ये बात कहते नजर आए।

कुमार की आखिरी हिंदी फिल्म थी मेरा करम मेरा धर्म। इस फिल्म में उत्तम कुमार के साथ थे नायक धर्मेंद्र। ये फिल्म काफी समय से बन रही थी और उत्तम कुमार के मौत के बाद रिलीज हुई।

दोस्तों, उत्तम कुमार की स्मृति को नमन करते हुए आपकी ये रेडियो सखी कहना चाहती है कि भारत में सिनेमा का मतलब सिर्फ हिंदी सिनेमा और हिंदी कलाकार नहीं है। क्षेत्रीय सिनेमा में भी कुछ ऐसे कलाकार सक्रिय हैं या सक्रिय रहे हैं जिनकी अभिनय प्रतिभा असाधारण रही है। उत्तम कुमार सर्वोत्तम कोटि के ऐसे ही अभिनेता थे।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

छाया गीत सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मोहब्बत घर आंखों से छलक जाए तो लफ्जों की जरूरत है क्या? आंखें बंद कर लेने से ये जज्बात थम जाएंगे क्या? ये तो मोहब्बत है, अपनी जिद पर अड़ी रहेगी जनाब। लाख कोशिशें कीजिएगा मगर छिपाने से ये छिप जाएंगी क्या?

मोहब्बत का इजहार तो कर दूं, मगर डर लगता है कहीं तुम खफा तो ना हो जाओगे। चलो इकरार कर भी दिया अगर, तो डर लगता है कहीं नखरे तो ना दिखाओगे। नखरों को तुम्हारे मैं सह भी जाऊं, पर डर लगता है दिल चुरा के मेरा कहीं तुम बदल तो ना जाओगे।

ना जाने उन्हें हमारी सूरत पसंद आई या सीरत, ना जाने हमारे बोलने का अंदाज पसंद आया या लफ्ज, बेवजह तारीफ करना आदत सी लगती है उनकी। कहते हैं हर धड़कन पर नाम है तुम्हारा, चाहो तो पढ़ लो हर नफ्स।

अंतराल के बाद छाया गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यार जब परवान चढ़ जाए तो फिर क्या सुबह क्या शाम, दिल गुनगुनाता है सिर्फ अपनी दिलबर का ही नाम। निकाले चाहे कोई लाख बुराई, करे कितना ही बदनाम, हंसते हंसते सह जाते हैं आशिक हर खुशी हर गम का जाम।

0: अचानक जब तुम यूं मेरी नजर के सामने आ जाते हो, दिल की धड़कन कुछ इस कदर बढ़ जाती है मानो सारी जिंदगी एक पल में सिमट गई हो। तुम्हारे साथ बिताए चंद पलों को याद करती हूं तो लगता है मानो ये जिंदगी उन चंद पलों में ही थम गई हो।
1: हसीना से यूं मुलाकात।

तुमसे मिलने की कसक ने इस कदर बेताब किया कि भीगी भीगी रातों में भी जलने लगा मेरा जिया। अब अगर तुम आ जाओ तो चैन आ जाए, मेरा दिलदार आ जाए तो करार आ जाए।

सुना रही हूं प्यार की कहानी, प्यार से सुन लो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी मुझे चुन लो। ना सुनने की हालत में अब नहीं रहा ये दिल मेरा, मैंने राह चुन ली है तुम्हारी, तुम भी मेरी राह चुन लो।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में सलमा की ओर से नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाई से तर के मुलाकात बताते भी नहीं। उस्ताद शायर दाग दहलवी का कलाम समाप्त कीजिए बेगम अख्तर की आवाज में। मौसिकी है खयाम की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, उषा मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार।

0: संगीतकार उत्तम सिंह एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
2: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीत संगीत है ललित का। एल्बम का नाम है मैंने पायल है छनकाई।